0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: क्या बात है, एकदम सही बात है कि बस आने वाला पल आकर ही रहेगा और जाने वाला पल जाकर ही रहेगा। हाँ, भले ही ये लाइन गीत के अंदर नहीं था, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि एक गीत को सुनने के बाद वी कैन रिलेट टू अनदर सॉन्ग, या फिर हम डायरेक्टली ज़िंदगी के साथ रिलेट कर पाते हैं। इसको कहते हैं द मैजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूज़िक, जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड मैजिक ऑल अराउंड। सुबह के 5:08 हो चुके हैं। विशिंग यू ऑल अ लवली लवली गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और वैसे सुबह से फिट एंड फाइन फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहते हैं ना कि जिस तरीके का मूड आप सुबह सवेरे रखते हैं, दिन भर का बस ऐसे ही मूड होने वाला है। एंड यू जस्ट नीड टू बी हैप्पी अर्ली मॉर्निंग। आप उठे ना तो ऑलवेज वेक अप विद अ ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट, ये तो हमेशा हम कहते हैं। वो थैंकफुल, वो ग्रेटफुलनेस, ये हमेशा आपके मन के अंदर होना चाहिए। और जो पॉजिटिविटी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप लोगों से मुलाकात करते हैं ना, ट्रस्ट मी, दे कैन फील योर वाइब्स। भले ही वो आपसे कुछ बोले या ना बोले, लेकिन बाद में ज़रूर ये बस बोल ही देते हैं कि ये आदमी का वाइब्स तो थोड़ा हद से ज़्यादा पॉजिटिव है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब भी आप किसी से मिलो, मुस्कुरा कर मिलो, एंड हमेशा एक बहुत ही प्यारी हंसी के साथ मिलो। एंड हम उतने ही प्यार से और उतने ही खूबसूरत गीतों के साथ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, बस ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर हमारा और आपका साथ रहने वाला है टिल 7 AM। और चलिए, इस आवर में हम लेकर आएंगे आपके डेली हॉरोस्कोप एज वेल, सो स्टे वाइड कनेक्टेड। और हमें ज़रूर बताइएगा कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड दिस अर्ली मॉर्निंग, और किस तरीके से आप इस मॉर्निंग को किक स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे ऑन 5499-1294।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वल 5:26 हो चुके हैं। दिल उसे दो जो जान दे दे, प्यार में सौदेबाजी नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी हम दिल देते हैं ना, तो थोड़ा बहुत प्यार को एक्सपेक्ट करना, इट्स सो ह्यूमन। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार आपको मिले और प्यार की कमी आपको कभी महसूस ना हो। एंड चलिए, हम तो बेशुमार बेमतहा प्यार लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और आपकी तरफ से भी खाली हाथ नहीं आए हैं। बहुत खूबसूरत लवली मैसेजेस आपने भेजे हैं नजराने के तौर पर अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ पर जयशन जी का साथ, शुभ बुधवार आपको भी, राम राम। एंड अगला गाना आप कहते हैं, गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती टीम, प्लीज नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट फॉर अब्दुल सराबानू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, सेम टू यू। वी हैव ललिता जीतन कनेक्टेड टू विद अस, शो को एंजॉय करती हुई साथ में जॉगिंग कर रही है। नेक्स्ट गाना गोज आउट टू ऑल योर फैमिली। वी हैव सरोज, सेनी, कुमारी, रतन, वीना, गीता, ज्ञानती, दो भाई हैं संजय, विजय, ललिता एंड जीतन, फैमिली ऑफ लावांचे के लिए अगला गाना। और साथ में प्यारी सी टीना जी जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, उनका मैसेज आया हुआ है, कहती है कि आज मेरा बर्थडे है। हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू टीना जी, एंड गॉड ब्लेस यू विद मच हैप्पीनेस इन योर लाइफ। हमेशा आप अपनों के साथ रहे। और वैसे कहते हैं ना कि माँ और पत्नी, दे आर द हार्ट ऑफ द हाउस। और हम यही उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाला आपको हमेशा सेफ एंड साउंड रखे, हेल्दी रखे, ताकि आप अपने परिवार को संभाल सके एंड आप अपने परिवार का देखभाल कर सके। सो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू प्यारी टीना जी, एंड उम्मीद करते हैं कि यू विल हैव अ ग्रेट ग्रेट वन एंड अ स्पेशल डे ऑल थ्रू द डे। एंड वंस अगेन आपको हम विश करेंगे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वेल आई नो आप लोग अपने डेली होरोस्कोप का इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी ओर हम बढ़ेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए कुछ और आपके मैसेजेस की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं अर्ली मॉर्निंग। थैंक यू सो मच दिव्या का साथ देने के लिए। टिल 7 AM हमारा और आपका साथ रहने वाला है। किसी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग RM2 रेडियो मस्ती टीम, नाम क्या है आपका, आपने बताया नहीं। जब भी आपके मैसेजेस आते हैं ना, तो वी बिकम्स वेरी हैप्पी जब आप अपने नाम भेजते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही खुशी होती है आपका नाम जोड़ने के लिए इन ईच सॉन्ग। हेलो डियर, प्लीज़ प्ले द नेक्स्ट गाना फॉर बेटी स्वीटी। दामाद है कमलेश और आपकी पोती है शेषना, पोता योहान, एंड ऑल्सो वी हैव रोहान फ्रॉम रागिनी ऑफ मोसलमो सॉसुसी। एंड यहाँ पर किसी ने कहा है गुड मॉर्निंग, कैसे हैं नीतू नहीं बल्कि दिव्या का साथ है, एंड गुड मॉर्निंग आपको। एंड नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर सरोज, राज एंड उमेश। वी ऑल्सो हैव अर्शी, अम्बल, अशिता, विशाल, सभी फैमिली ऑफ काट्रबोन। एंड आपने बहुत ही पसंद किया वो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है वाला गाना। एंड चलिए नेक्स्ट गाना गुजाओ स्पेशली आप लोगों के नाम। एंड साथ में यहाँ पर नेक्स्ट ट्रैक गुजाओ फॉर बदवक विदेशी जी, एनी सॉन्ग गुजाओ फॉर अनुषा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, आज आपकी चाचा राज का बर्थडे है, 61st बर्थडे, एंड उनको बहुत ही प्यार से हैप्पीएस्ट बर्थडे फ्रॉम आवर टीम एज वेल, एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम भाई सुरेश, भाभी चंद्रा, नेफ्यू है मंगल, आकाश, आदर्श, आशिका और बहू है सरिता। सभी सजना फैमिली ऑफ मोसलमो सैंत औंद्रे की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार। ओम श्री गणेशाय नमः, होप ऑल इज़ वेल। नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर योर फैमिली एंड ऑल्सो फॉर वंश, जो आज पिकनिक पर जा रहे हैं अपनी दादी सुया बिहारी के साथ ऑफ कुंगुमा। हे दैट्स रियली नाइस, दादी आपको थोड़ा घुमाने लेके जा रहे हैं आज, और उम्मीद करते हैं कि दादी के साथ यू विल बी हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम। सो चलिए अगला गाना साथ में हम डेडिकेट करेंगे अरमान के लिए। आपने कहा है दिव्या, जिसकी आवाज़ इतनी सुरीली हो, जिसकी विचार इतनी सुंदर हो, जिसका सोच इतना स्वच्छ हो, हाउ स्वीट, दैट्स रियली नाइस। सो चलिए अरमान जी साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू एंड टू ईच एंड एवरी वन कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती राइट नाउ। चलिए इस गाने के बाद हम लेकर आ रहे हैं आपके डेली होरोस्कोप।
1: वेक अप

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए बढ़ते हैं आपके डेली होरोस्कोप की ओर। शुरुआत करेंगे रीस के साथ। मेष राशि, बड़ों के आशीर्वाद से सभी बाधाएं दूर होंगी। छात्रों को उच्च शिक्षा को लेकर स्पष्टता मिलेगी। आध्यात्मिक शांति के लिए धार्मिक यात्रा कर सकती हैं। टॉरस वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलेगा और आप संतुलन बनाने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नकारात्मकता से दूर रहें ताकि दिन उत्पादक रहें। जेमिनी मिथुन राशि, चंद्रमा की कृपा से आपका मूड अच्छा रहेगा और कार्यस्थल पर आपकी उत्पादकता में शानदार सुधार देखने को मिल सकता है। कैंसर कर्क राशि, आपके आसपास जो भी हो रहा है या फिर जो भी हो रहा होगा उस पर आप एक नियंत्रण और अधिकार ज़रूर महसूस करेंगे और ये नियंत्रण और अधिकार आपके लिए एकदम अद्भुत रहेगा। लियो सिंह राशि, आप अपने करियर और व्यापार में सहयोग से लाभ कमाएंगे लेकिन अपनी फिजूली खर्ची पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिए। वर्गो कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। किसी भी काम में हड़बड़ी ना दिखाएं और धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करें। लिब्रा तुला राशि, रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके प्रेम संबंधों और कार्यक्षेत्र दोनों के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा। आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लें और अपनी योजनाओं पर टिके रहें। सजिटेरियस धनुराशि, रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज आप अपनी मेहनत से बिगड़े हुए कार्यों को भी सही दिशा में ले जाने में सफल रहेंगे। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और दिन अच्छा बीतेगा। एक्वेरियस कुंभ राशि, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आपके नए विचार सफल होंगे और लव लाइफ में मजबूती और समझ बनी रहेगी। आखिर में वी हैव पाइसेस, मीन राशि, आपकी अंतर्दृष्टि मजबूत रहेगी। अपने पिछले अनुभवों से लाभ उठाएं और परिवार तथा प्रियजनों के साथ बेहतरीन समय बिताएं। सो ये था आपका डेली होरोस्कोप। हैव अ गुड गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.

0: on to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: घर मिलाते चलिए, सुबह के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमहरा से। नमस्कार और आदाब।
7: नमस्कार रादा। मुल्क में बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट नोट की जा रही है। सन 2015 में ये आंकड़ा 7.9% था और पिछले साल 5.7% दर्ज हुआ। कल स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने एक रिपोर्ट आम की। आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक के इस 17वें संस्करण में ये जाहिर हुआ कि एक तरफ 16 से 24 साल की उम्र वाले नौजवान बेरोजगारी से ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक साल में मॉरिशस में अतिरिक्त 6,700 मॉरिशनों को काम मिला है। कल राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस के संदर्भ में कुछ जानकारियां दी। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमज़ोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरे तथ्यों की वजह से इतनी बढ़ी। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश किए गए, जो 48 बिलियन रुपए थे। कई हफ्तों से मॉरिशस के सीईओ ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी में बदलाव लाने का

0: अपना विजन किया। ये विजन आने वाले 10 सालों के लिए ही है। लिंक्डइन पर उन्होंने एमोरस के लिए 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रेटजीज की जानकारियां दी। मकसद आमदनियों को बढ़ाना, मंदियों पर दोबारा एक्सेस पाना और भविष्य की वृद्धि का समर्थन करना। विदेश में भारत में नई दिल्ली में बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हुआ। जगह जगह लोगों को इसे बर्दाश्त करने के तरीके तलाशे हुए देखे जा रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही मौसम का हाल।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह सवेरे कुछ बारिश होगी और बाद में मौसम अच्छा रहेगा। दोपहर बाद कुछ बादल घिराएंगे उत्तर और पश्चिम में और रह रहकर बारिश भी होगी। आज रात के दौरान ऊंचे इलाकों में वर्षा होगी और दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दिन के दौरान समुद्र की हालत बेहतर होगी लेकिन आज सुबह दूर समुद्र में ना जाने की सलाह है। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 24 से 26, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:33 पर, सूर्यास्त 5:39 पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2.
2: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Masti.
2: दिल के कलम से बिल्कुल हम नया इतिहास लिखेंगे और इतिहास रचने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज अपनी कहानी को आपको थोड़ा सा अलग लिखना होगा. ऑफ कोर्स इट्स टाइम टू राइज एंड शाइन और इट्स टाइम कि आप दुनिया को नहीं बल्कि खुद को दिखाना है कि आप क्या कुछ करने के लिए कैपेबल है. 6:09 हो चुके हैं. वंस अगेन लवली लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मॉर्निंग आउटसाइड. विंटर सीजन ऑलरेडी दस्तक दे चुका है. नाइक कैन फील ऑलरेडी कि सेंट्रल प्लेटो में और जो लोग ऊंचे इलाकों में रहते हैं वहाँ पर कैसा मौसम हो रहा होगा. सुबह उठने में आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी रादर दैन दोज़ स्टेइंग इन द ईस्ट एंड द नॉर्थ रीजन. लेकिन आपको बहुत बहुत सारा प्यार हम भेज रहे हैं. लोड्स एंड लोड्स ऑफ करेज फॉर दिस चिल्ड मॉर्निंग आउटसाइड. अपनी तरफ से अपना प्रिकॉशन ज़रूर लेते रहना और सुबह डोंट फॉरगेट आप उठे तो एक ग्लास गरम पानी ज़रूर पिएगा और आपकी सेहत बनी रहेगी. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और चलिए कहते हैं ना कि डू नॉट लेट एनी वन होल्ड द पेन फॉर यू वाइल राइटिंग योर स्टोरी. और कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ जो भी होता है हम उसको बाकी की ज़िंदगी के साथ दूसरों की ज़िंदगी के साथ कंपेयर करते हैं विच इज़ रियली नॉट गुड. क्योंकि कभी कभी आपकी शुरुआत दूसरों का क्लाइमैक्स होता है. सो जस्ट नो कि एवरीथिंग नीड्स टू बी ओके एट द एंड ऑफ द टाइम. अगर आपको लगता है कि अभी के लिए बिल्कुल कुछ सही नहीं है तो इसका मतलब है ये सिर्फ शुरुआत है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. वेल फ्रेंड्स इट्स अ वंडरफुल वेंसडे मॉर्निंग. 20 मई 2026 ये महीने के कुछ दिन भी बच चुके हैं और इसके बाद विल बी वेलकमिंग द मंथ ऑफ जून. लेकिन अभी के लिए सब लोग दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट मदर्स डे वेरी सून. और शायद आपकी शॉपिंग तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी होगी. तो चलिए हमेशा हम अपनी माओ को याद करेंगे प्यार से क्योंकि माँ का जो ड्यूटी होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है. एंड ऑफ कोर्स वी आर सेंडिंग ईच एंड एवरी वन लोड्स ऑफ लव जो ऑलरेडी निकल चुके हैं काम पर जाने के लिए या फिर आप अभी तैयार हो रहे होंगे और मे बी अभी अंगड़ाइयाँ लेते लेते उठ रही होंगी और सोच रही हैं काम पर जाना है कि नहीं जाना है. इतनी ठंड है बाहर लेकिन कोई बात नहीं. मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है. आगे चलकर आपको ये फल ज़रूर मिलेगा. तो बस मेहनत करते जाइए और रेडियो मस्ती का साथ देते जाइए. कुछ ही देर में हम लेकर आ रहे हैं आपके कुछ और मैसेजेस ऑन 5499 1294.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वेल कुछ ही देर में हम बढ़ने जा रहे हैं समाचार बुलेटिन की ओर, लेकिन इससे पहले चलिए फटाफट आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती टीम। आज बॉम्बू से आपका पोता तहान का बर्थडे है, 17 साल का हो गया है। तहान को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से भी, और हैप्पी बर्थडे फ्रॉम नाना धनेश्वर, नानी सुनीता, पापा ऋषि, मामा मीना, हंसवी एंड फ्रॉम ऑल देवदोस एंड सनीचर फैमिली। गुड मॉर्निंग हेमा जी। नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर स्वीट परुषि, परिधि, प्रीतमी, प्रिया, निशिका, नितिन, विशाल और यनेश के लिए। आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, प्लीज डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना फॉर मिस्टर आनंद प्रयाग। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, आज आप 60 साल के हो गए हैं, दैट्स अ वेरी स्पेशल एज, और उम्मीद करते हैं कि यू विल बी हैविंग अ ग्रेट ग्रेट बर्थडे अहेड। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ऑल्सो बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम प्रयाग। सनी चारुआ, चेदी भाई राव एंड वी हैव नोबीन बक्टोवा फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। सो चलिए यहाँ पर अगला गाना गुज आउट स्पेशली फॉर चुगालाल फैमिली ऑफ गुड लेंस। हाय दिव्या, गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस सॉन्ग सिलेक्शन। एंड चलिए नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर प्रेमिला जी ऑफ प्लेंदी पपाई एंड आपके पूरे परिवार के लिए। एंड नेक्स्ट गाना गुज आउट ऑल्सो फॉर इंदिरा, रेशमा, विमल, अंजू, कृषा, मायशा, केशव, नील, तानिया, आप हैं मोदाई ब्लॉश से, ज्योति जी शातो बिरागर से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट वन गुज आउट फॉर आशनी, रेखा, सुरेखा एंड मदब फैमिली। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर। वक्त नहीं इजाजत दी तो एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी, वरना वेदिता नेक्स्ट लेकर आएगी आप लोगों के लिए मॉर्निंग बीट।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: अपना बिजनेस शुरू करना है या अपने करंट बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो याद रखिए SBM SME बैंकिंग सिर्फ बैंक नहीं, आपका ग्रोथ पार्टनर है। अब खर्चों को अपनी तरक्की में रुकावट ना बनने दे, अपने लोन्स को रीफाइनेंस कीजिए और अपने खर्चों पर बेटर कंट्रोल पाइए, या फिर अपने स्टार्टअप ड्रीम को आज ही एक्शन में बदलिए। चाहे इक्विपमेंट फाइनेंसिंग हो, कैश फ्लो सपोर्ट हो या एक्सपेंशन प्लान्स, हमारे कस्टमाइज सॉल्यूशंस और एक्सपर्ट सपोर्ट के साथ आपका बिजनेस उड़ान भरेगा। आज ही कॉल कीजिए ऑन 2070111 या विजिट कीजिए sbmgroup.mu। SBM SME बैंकिंग, साथ है तो ग्रोथ है। ये ऑफर कुछ शर्तों के साथ आता है। SBM बैंक ऑफ मॉरिशस के लाइसेंस के तहत ऑपरेट करता है।
3: पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। मॉरिशस में बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट। सन 2015 में ये आंकड़ा 7.9% और पिछले साल 5.7% दर्ज हुआ। कल स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने रिपोर्ट आम की। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमजोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरे तथ्यों की वजह से इतनी बढ़ी। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश किए गए, जो 48 बिलियन रुपए थे। कल राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस पर ये जानकारियां दी। 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रैटेजीज, या मॉरिशस के CEO ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी में बदलाव लाने का अपना विजन आम किया। मकसद आमदनियों को बढ़ाना, मंडियों पर दोबारा एक्सेस पाना और भविष्य की वृद्धि का समर्थन करना। और भारत में नई दिल्ली में बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हुआ। नमस्कार और आदाब। मॉरिशस में बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट नोट की जा रही है। सन 2015 में ये आंकड़ा 7.9% था और पिछले साल 5.7% दर्ज हुआ। कल स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने रिपोर्ट आम की। आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक के 17वें संस्करण में ये जाहिर हुआ कि एक तरफ 16 से 24 साल की उम्र वाले नौजवान बेरोजगारी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक साल में मॉरिशस में अतिरिक्त

0: अतिरिक्त 6,700 मुर्शिदों को काम मिला है। अंजलि से रतन फुलचन, यचना मिश्रा।
1: मॉरिशस में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9,92,500 लोग हैं। इनमें से 5,87,200 लोग आर्थिक रूप से सक्रिय हैं, यानी श्रम बल भागीदारी दर 59.2% है। देश में 33,500 बेरोजगार दर्ज किए गए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है, 19,400 महिलाएं और 14,100 पुरुष। 16 से 24 वर्ष के आयु अकेले 11,700 बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, खासकर उद्योग और निर्माण क्षेत्र के कर्मचारी सबसे अधिक काम करते हैं, औसतन 41.3 घंटे प्रति सप्ताह। तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर, विशेष रूप से होलसेल और रिटेल व्यापार, रेस्टोरेंट और परिवहन सबसे अधिक आय वाला क्षेत्र है, जहां औसत मासिक आय 38,400 रुपये है। वेतन के संदर्भ में औसत मासिक आय 37,200 रुपये है, पुरुषों की औसत आय 40,600 रुपये है, जबकि महिलाओं की 33,100 रुपये।
0: राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस के संदर्भ में कुछ जानकारियां दी। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमजोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरी वजहों से इतनी बढ़ी है। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश किए गए, जो 48 बिलियन रुपए दर्ज हुए थे। लुवीना सूफी की रिपोर्ट पर ये विवरण।
1: 2024 में मॉरिशस में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI निराशाजनक रहा, जो 33 बिलियन रुपए तक पहुंचा और 2023 की तुलना में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि 2025 में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई, जिसे मुख्य रूप से ब्रिटिश बैंक एक्सिस द्वारा अफ्रेशा बैंक में बड़ी हिस्सेदारी लेने से बढ़ावा मिला। सरकार अब कुछ दो में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और निवेश आकर्षित करने के लिए नए गोल्डन वीजा ढांचे पर दाव लगा रही है। दूसरी ओर 2014 से 2024 के बीच 4 स्थानीय बैंकों, सिल्वर बैंक, SBM, डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस और मोबैंक की बैलेंस शीट से लगभग 25 बिलियन रुपए गायब होने की बात सामने आई है। ये स्थिति गैर निष्पादित ऋण यानी NPLs, बकाया वसूली न होने वाले कर्ज और बट्टे खाते में डाले गए ऋण के कारण बनी है। मोबैंक के मामले में विशेष रूप से लगभग 3 बिलियन रुपए की नकारात्मक इक्विटी दर्ज की गई। प्रधानमंत्री ने इस पर बैंक ऑफ मॉरिशस की निगरानी भूमिका में गंभीर विफलता की ओर इशारा किया है, जिसे अत्यधिक ढीला माना गया, जिससे बैंकों ने जोखिमपूर्ण और संभवतः धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों में प्रवेश किया। सरकार ने इसके जवाब में बैंक ऑफ मॉरिशस अधिनियम और बैंकिंग कानून में व्यापक सुधार की घोषणा की है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के एक विशेषज्ञ को सुपरविजन विभाग को मजबूत करने और पिछली खामियों की जांच के लिए शामिल किया जाएगा।
0: कई हफ्तों से मॉरिशस के CEO ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी में बदलाव लाने का अपना विजन आम किया। ये विजन आने वाले 10 सालों के लिए है। लिंक्डइन पर उन्होंने मॉरिशस के लिए 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रैटेजीज की जानकारियां दी। मकसद आमदनियों को बढ़ाना, मंदियों पर दोबारा एक्सेस करना पाना और भविष्य की वृद्धि का समर्थन करना। शैली नियपन, यचना मिश्रा।
1: कई संभावित उपायों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें फ्लीट का आधुनिकीकरण, हवाई नेटवर्क का पूर्ण पुनर्गठन, सेवा में सुधार, लागत में कमी और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना शामिल हैं। अपनी प्रकाशित टिप्पणियों में आंद्री विल्जन ने कंपनी के भीतर मौजूद आंतरिक चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कई वर्षों की अस्थिरता, कई नेतृत्व परिवर्तन और COVID-19 महामारी के दौरान प्रशासनिक अवधि के बाद कंपनी के भीतर अविश्वास और प्रेरणा की कमी की संस्कृति की बात की। CEO ने यह भी कहा कि वे नेतृत्व, मेरिटोक्रेसी और जिम्मेदारी पर आधारित एक गहरा सांस्कृतिक

परिवर्तन शुरू करना चाहती हैं। संचालन स्तर पर एयरमॉर्शस कुछ छोटे विमान जैसे एयरबस A321LR या बोइंग 737 मैक्स को शामिल करने पर विचार कर रही हैं, ताकि जोहान्सबर्ग, मुंबई और क्वालालंपुर जैसे क्षेत्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाई जा सके। कंपनी वर्तमान में सीबरी APG कंसल्टिंग फर्म के साथ मिलकर

0: मॉरिशस के पास फिलहाल 11 विमान हैं और दिसंबर 2026 से 3 नए एयरबस A350 के आगमन की योजना है। योजना में अंतर्राष्ट्रीय कोचेयर साझेदारियों को भी मजबूत करना शामिल है। कंपनी के पास वर्तमान में 14 कोचेयर समझौते हैं और वह वैश्विक कनेक्टिविटी सुधारने के लिए इन्हें और बढ़ाना चाहती है। ये रणनीति अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई है। कई घोषणाओं को अभी बोर्ड और संबंधित प्राधिकरणों की आधिकारिक मौजूदगी मिलना बाकी है।
1: नेशनल वेयरहाउस की स्थानांतरण परियोजना के तहत देश के मुख्तलिफ इलाकों में भंडार केंद्रों को कायम किया जाएगा। वितरण प्रणाली के पुनः आयोजन के सिलसिले में ये कदम उठाया जा रहा है। नए संगठन का मकसद संबद्ध संस्थाओं में सप्लाई को आसान बनाना है। इस परियोजना पर सबकी अलग अलग राय है। निर्मा नारायण रेड्डी की ये रिपोर्ट।
0: खेतीहरों के प्रतिनिधि अमरजीत बिगू के अनुसार इस निर्णय से पहले उनके प्रतिनिधियों से कोई परामर्श नहीं किया गया। उनका मानना है कि यह नया उपाय कई किसानों पर वित्तीय प्रभाव डाल सकता है और इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होने की आशंका भी है। वे बताते हैं, उधर सुरक्षा नहीं, हम अपना सामान वहां भेजने में हिचकिचा रहे हैं। जब भी कोई नई बिक्री स्थल खुलता है तो दाम कम हो जाती हैं, खेतीहरों को नुकसान होता है। इसका संबंध खेतीहरों और विक्रेताओं से भी है। नीलामीकर्ताओं की प्रतिनिधि शमिदा इमरत के अनुसार हालांकि पहले से कोई परामर्श नहीं किया गया था, फिर भी नीलामीकर्ताओं ने इस नए उपाय के संबंध में अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के कुछ फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन यह किसानों के लिए कुछ लाभ भी ला सकता है। वे बताती हैं, ये निर्णय हमारी सलाह के बगैर लिया गया, लेकिन हम सरकार का सहयोग देंगे। दोनों के फायदे और नुकसान हैं। अभी के लिए एक ही जगह है जहां होलसेल है। अगर अन्य जगहें होंगी तो दामों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। वाहनों को लेकर, आवाजाही को लेकर उन्हें फायदा होगा। अपने इलाके में भी उन्हें नेशनल होलसेल मार्केट का ही दाम मिलेगा। अब ये देखना बाकी है कि आने वाले हफ्तों में इस नए उपाय को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाएगा।
1: पुरानी जेंडर इक्वालिटी मंत्री कल्पना कुंजुशा ने अपने वकील के जरिए कौफूर रिश्ते में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग पर एतराज जताया जो पुलिस ने प्राप्त की। कल पोम्पलमुस जिला अदालत में उन्होंने सुनवाई के बाद ये बात कही। कल्पना कुंजुशा पर चोरी का इल्जाम है और वो अपनी बेगुनाही का दावा करती हैं। पुलिस आईटी यूनिट से कांस्टेबल बेग से मांग की गई कि वो पिछले 19 सितंबर को घटी इस घटना की तस्वीरें अदालत में पेश करें। प्रतिरक्षा वकील आइवन कोलेंडावेल्यू ने इसे पेश करने से मना किया, ये कहकर कि पहले ये पता करना चाहिए कि वीडियो असली हैं। मामले को अगले 11 अगस्त के लिए स्थगित किया गया। पूर्व मंत्री पर 2000 रुपए लागत कॉस्मेटिक पैदावारों की चोरी करने का आरोप दर्ज है। सऊदी अरब में हज अदा करने गए करीब 50 मुर्शिदों को अजीजिया में होटल से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके लिए नए होटल का बंदोबस्त किया गया। इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर मोहम्मद शामाद अयूब साहब ने बताया कि उन्होंने खुद हज मिशन के साथ हाजियों के लिए नया होटल ढूंढा और हमारे हमवतन इत्मीनान से वहां रह रहे हैं और जियारत कर पा रहे हैं। सऊदी अरब में मौजूद हमारी टीम शहजाद गोहन ने उनसे बात की। अयूब साहब को सुनते हैं।
2: Alors au niveau du ICC, nous ce qui nous fait, nous sommes intransigeants, nous pas fin compromettre, nous fin exiger qui sans l'hôtel. Nous pas fin d'accord qui manjemouni voyager, nous venir maintenant, astia qui pour l'attendre, pour nettoyer l'hôtel, pour l'autre, nous exiger qui l'opérateur licence l'hôtel. Et pour nous faire ça, ce qu'il nous fait, nous faire travail un petit peu qui en déo nous ambite, c'est-à-dire nos juridictions, c'est nous allons ensemble, nous prenons un représentant de

0: paradis, nous prend un service provider, émanement MyCC, nous fait les tours de Azizia, nous la visite au moins 7 à 8 hôtels pendant toute une journée. Là, moi, j'ai l'information qui tout, il rentre dans l'ordre et nous fait droit qui s'amène à là, qui tout ce qui passait comme qu'ils ne sont pas certains, l'idée est à eux et qu'ils viennent dans meilleure disposition pour votre contenu, votre Hajj, pour votre focus, le côté spirituel.
1: पर्यावरण पुलिस कचरों के फेंके जाने के संदर्भ में सख्त रवैया जारी रख रही है। गुडलैंड्स में फेंके कूड़ों में से मिली एक रसीद से पता चला कि हरकत के पीछे कौन है। इसी तरह पुलिस एक एक बात पर ध्यान दे रही है। गए दिनों में कई कार्रवाइयां चलाई गई और लोगों को कंट्रावेंशन भी दिया गया। संतना पोस्नो, यचना मिश्रा।
2: पर्यावरण मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अब अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कभी कभी संयोग भी सबूत बन जाता है। अक्सर अवैध कचरा फेंकने से प्रभावित क्षेत्र हैं। निर्माण मलबे के बीचों बीच मिला एक साधारण रसीद पर्चा पर्यावरण पुलिस को एक संदिग्ध प्रदूषक तक पहुंचाने में मददगार साबित हुआ। ये घटना गुरुवार 14 मई की है। निगरानी अभियान के दौरान अधिकारियों ने ताज़ा फेंका गया निर्माण कचरा पाया। जांच के दौरान उन्हें मलबे के बीचों बीच एक रसीद मिली। इसी सुराग के आधार पर जांचकर्ता रिजर्वर रोड के एक निवास तक पहुंचे। पूछताछ में उसने कथित तौर पर अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसे 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और निर्धारित समय के भीतर क्षेत्र की सफाई करने का आदेश दिया गया। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार इस कड़ी निगरानी का कारण अवैध कचरा फेंकने से जुड़े खतरे हैं, जो चिकुनगुनिया और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियों के फैलाव को बढ़ावा देते हैं, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाते हैं। कार्रवाई अभी भी जारी है। तयाहूश में एक ट्रक मालिक की पहचान एक स्थानीय निवासी की शिकायत के बाद की गई, जिसने इलाके में अवैध कचरा फेंके जाने की सूचना दी थी। वहीं बहादो में एक चालक को जंगल वाले क्षेत्र में हरा कचरा फेंकते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तीनों मामले में आरोपियों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और संबंधित स्थानों की सफाई करने का उन्हें आदेश भी दिया गया।
1: भारत में नई दिल्ली में बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हुआ। जगह जगह लोगों को इसे बर्दाश्त करने के तरीके तलाशे हुए देखे जा रहे हैं। बहुत सी जगहों में इस गर्मी की वजह से लोग बेहोश भी हुए हैं। इसराइल ने लेबनान के दक्षिण में हवाई हमले किए। कम अज कम 19 लोगों की मौत हुई, उनमें बच्चे और महिलाएं शामिल। ये हमला एक घर पर किया गया। थाईलैंड ने वीज़ा को लेकर कुछ मुल्कों के लिए नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। सन 2024 से 93 देशों से आने वाले पर्यटकों को 60 दिनों के ठहराव के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ताकि थाईलैंड की अर्थनीति में मज़ीद योगदान हो। लेकिन अब कुछ देशों को 30 से ज़्यादा दिनों के ठहराव के लिए वीज़ा की अर्ज़ी भेजनी पड़ेगी। उनमें ग्रेट ब्रिटेन शामिल है। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह सवेरे बारिश होगी और कुछ जगहों में मौसम अच्छा रहेगा। दोपहर बाद उत्तर पश्चिम उत्तर में बादल घिराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। आज रात ऊंचे इलाकों में बारिश होगी और दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समंदर खराब रहेगा। 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाली लगूनों में। दिन के दौरान समुंदर की हालत में सुधार आएगा, लेकिन आज सुबह दूर समुंदर में न जाने की दरख्वास्त है। तापमान, सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 24 से 26, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज शाम 5:39 पर सूरज ढल जाएगा।

0: 2015 में ये आंकड़ा 7.9% था और पिछले साल 5.7% दर्ज हुआ, कल स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने रिपोर्ट आम की। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमजोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरी वजहों से इतनी बढ़ी। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश किए गए जो 48 बिलियन रुपए दर्ज थे। कल राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस पर ये जानकारियां दी। 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रैटेजीज, या मॉरिशस के सीईओ ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी में बदलाव का विजन आम किया। मकसद आमदनियों को बढ़ाना, मंडियों पर दोबारा एक्सेस पाना और भविष्य की वृद्धि का समर्थन करना। और भारत में नई दिल्ली में बहुत गर्मी महसूस की जा रही है, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हुआ। तो ये थी अब तक की खबरें। आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी कादिया कुदादीन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, शोक समाचार सुनिए। शिवाला रोड मोगू में 47 साल की 47 years old श्रीमती शर्मिला रामा नाइक, श्रीमती शर्मिला रामा नाइक पैदाइशी नाम रागू जो काजल के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके पति विक्रम रामा नाइक के घर शिवाला रोड मोगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोगू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 2 PM। काली माई रोड होशनुआ में 86 साल के 86 years old श्री देवदत्त गुलजौ की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज एक बजे इनके बेटे अजय गुलजौ के घर काली माई रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए होशनुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। प्रूडम रोड रिविया डी जोंगी में 66 साल की 66 years old श्रीमती नंदरानी आराके, श्रीमती नंदरानी आराके पैदाइशी नाम पुरनू जो रानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थे आज 11 बजे इनके घर खुदम रोड रिविया डी जोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। एवेन्यू सैन लुई प्लेजेंस रोजिल में 70 साल की 70 years old श्रीमती मांती तोमा पैदाइशी नाम बंसरूपन जो रुमिला बंसरूपन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज डेढ़ बजे इनके घर एवेन्यू सैन लुई प्लेजेंस रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लुवियो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। एवेन्यू बुगेनविलिए तमाहे में 71 साल के 71 years old श्री लाल देव जगन्नाथ जो पोतना के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई है। और मुसलमान VOS कस्कावल के रहने वाले थे। अर्थी कल डेढ़ बजे इनकी बेटी करुणा जगन्नाथ रंजीव के घर एवेन्यू बुगेनविलिए तमाहे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। रॉयल रोड ब्रह्मस्थान में 49 साल के 49 years old श्री विशाल गुलुआ जो विशाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पुलिस सर्जन थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे इनकी पत्नी नीरू नंदरम के घर रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रेशमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रेजिडेंस रामदोनी बासन कतरबोन में 75 साल की 75 years old श्रीमती वमला देवी आपादू पैदाइशी नाम वेंकैया जो वमला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थे आज दो बजे इनके घर रेजिडेंस रामदोनी बासन कतरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.

Well, friends, 6:53 already, and चलिए इसी के साथ it's a time for me to say goodbye to all of you. हमारी बात वेदिता all set है आपको entertain करने के लिए morning beat. दिव्या को दीजिए इजाजत. Take care, keep smiling and bye bye.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: Wiggy Wiggy Rise and Shine. Good morning. सुबह के 7:04 हुए हैं. Hello. मई महीने में देखो आज 20 दिन भी निकल गए और हम गिनते रह गए कि भाई अभी नया नया साल शुरू हुआ. काहे का नया साल, आज 20 मई है भाई. और वेडनेसडे की इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में मैं विदिता आप सबों का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ. पहले ये बताओ कैसे हो, आज का मूड कैसा है? आज का मूड रोमांटिक होगा क्योंकि आज मौसम थोड़ा, पता नहीं, मुझे लग रहा है ज़रूर नहीं कि सबको वही लगे, सबका अपना अपना मूड होता है. हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये लगे कि आज मूड रोमांटिक है क्योंकि जब बारिश होती है हल्की हल्की है, भारी बारिश तो नहीं, मुझे नहीं पता, आपको मुझे बताना होगा 5491294 पर, नहीं तो हम अगले आवर में जान लेंगे आज पूरा दिन मौसम कैसे रहेगा. वैसे मॉर्निंग में जब आप उठते हो सबसे पहले क्या करते हो? यही सोचते हो ना कि अरे बापरे देर हो जाएगी, अरे बापरे बस छूट जाएगी, अरे बापरे ये हो जाएगा, आज पता नहीं बॉस क्या करेगा. तो ये सारी चीज़ें छोड़ना बंद करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचना शुरू कर दो. लाइक मॉर्निंग में जब आप उठो तो पहली चीज़ तो यही बोलो कि मैं हेल्दी हूँ, आज बहुत अच्छा दिन जाएगा मेरा, आज बहुत मस्ती होने वाली है. फिर मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मॉर्निंग में उठकर अपने ब्रेन को अच्छी अच्छी चीज़ें फीड किया करो. वैसे तो हम खाने के लिए अपने शरीर में खाना डालते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, तो हमारा जो ब्रेन होता है ना इसको भी अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए. गलत चीज़ें डालोगे इसमें तो बेचारा परेशान हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा. इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें अपने दिमाग को फीड किया करो मॉर्निंग में उठने से सबसे पहले, इसको फीड किया करो और फिर उसके बाद देखना पूरा दिन कैसे मस्त होता है. 7:05 वेदिता का साथ है आपके मॉर्निंग बीच में ऑन रेडियो
0: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musty in the mix.

रहता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात, सब मूड में आ गए हैं। सुबह के 7:15, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, स्वागत करते हैं आपका अभी के प्रोग्राम में जो कि है मॉर्निंग बीट।
1: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2.
2: Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: सुबह के 7:25 हुए हैं, टाइम हो गया है कि आप मुझे उनका नाम भेजिए जिनका आज बर्थडे है, या फिर अगर आज आपका ही बर्थडे है तो आप खुद का नाम भेज दीजिए कि बोलो भाई सुनो मेरा नाम है ये, मेरा नाम सुनीता है, अनीता है, कोई भी आपका नाम हो, सुनील हो, अनिल हो, अगर आपका बर्थडे है तो आप अपना मैसेज भेजो 5491294 पर और हम लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से आपको देंगे एक वाउचर। जी हाँ, और ये वाउचर आपको या तो फिर आज या तो फिर कल आकर MBC लेने आना होगा। एंड मैं आपको बताऊँ, इस वाउचर के पीछे दो लोग अभी भी खड़े हुए हैं, वो कह रहे हमें क्यों नहीं मिलता, जब आप लोगों का बर्थडे होगा दीपशिका नितुषा तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि लोलो हाइपरमार्केट जो है वो हर रोज़ किसी न किसी का बर्थडे जो है स्पेशल बनाते हैं, तो उनको एक वाउचर मिलता है यहाँ पर हमारे साथ एवरी मॉर्निंग। 5491294 नंबर है, भूलिएगा नहीं, आपको उनका नाम और साथ में उनका फोन नंबर जरूर भेजना है।
1: RM2 Radio Musti
0: Hit Music Only
3: Radio Musti Feels a Musti

0: अनिल जी, मैं हूँ वेदिता रेडियो मस्ती से, और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। ज्यादा डरा
1: दी, थैंक यू वेरी वेरी मच।
0: अच्छा, सच में गाड़ी भेज रहे हो क्या?
1: नहीं नहीं नहीं।
0: चलो कोई बात नहीं, दीपशिका को आपकी गाड़ी में एक राइड लगा देंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड। सो सुनिए, अभी लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से आपके लिए सरप्राइज रखा गया था, एंड आपकी बेटी ने आपको सरप्राइज करने के लिए हमें मैसेज भेजा था, एंड आप आज 60 इयर्स के हो गए हैं। सो इट्स अ वेरी स्पेशल बर्थडे आई गेस, एंड हर किसी का 60 इयर्स बर्थडे बहुत स्पेशल होता है। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे, एंड लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से आपको एक वाउचर भी मिल रहा है, जो आपको आज नहीं तो कल एमबीसी आके कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है?
1: मैं समझा नहीं।
0: आपको लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से एक वाउचर मिल रहा है, जो आपको एमबीसी आके कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आईडी कार्ड के साथ आना पड़ेगा, और वो आईडी कार्ड के साथ वो आपका वाउचर आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, आपके पास 2 दिन है। ठीक है?
1: ठीक है, ओके
0: ओके जी, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। गाड़ी मत भेजना, मुझसे ही भेजना। बाय बाय
1: बाय बाय बाय।
2: मॉर्निंग बीट चेंज RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: स्पीकर ने तो बोल दिया, लेकिन हमारा स्पीकर तो कुछ और ही बोल रहा है। हमारे स्पोर्ट्स गुरु किधर गए?
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स,
3: स्पोर्ट्स न्यूज,
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: एंड यह समय हो गया है अरविंद से मिलने का। हेलो, गुड मॉर्निंग अरविंद।
5: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, फाइनली दे आर द चैंपियन, द गनर्स प्रीमियर लीग टाइटल जीत गए। आर्सेनल प्रीमियर लीग चैंपियन, 22 सालों का लंबा कारावास पूरा हुआ। फर्स्ट प्रीमियर लीग टाइटल इन 22 ईयर्स। मैनचेस्टर सिटी के ड्रॉ मैच से आर्सेनल चैंपियन बना। बोर्नमुथ 1 मैनचेस्टर सिटी 1। फर्स्ट हाफ में बोर्नमुथ के लिए एल जूनियर क्रूपी का गोल अर्लिंग अलॉन ने इंजुरी टाइम में इक्वलाइज किया। मतलब सिटी का चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर। बोर्नमुथ पहली बार के लिए यूरोप में खेलेगा। बोर्नमुथ का ड्रॉ मैच आर्सेनल को टाइटल और लिवरपूल को मोस्ट प्रोबेबली चैंपियंस लीग फुटबॉल दिलाता है। बोर्नमुथ लिवरपूल से केवल 3 अंक पीछे हैं, पर लिवरपूल का गोल डिफरेंस है +10, बोर्नमुथ का +4। बोर्नमुथ के लिए यूरोपियन फुटबॉल मुबारक हो, पर चैंपियंस लीग या यूरोपियन लीग में होगा ये, इसके लिए इंतजार करना होगा। आखिरी मैच नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ है। अगर जीत हुई और लिवरपूल की हार ब्रैडफोर्ड के खिलाफ, वो भी 6 गोल के गोल डिफरेंस से, तब चैंपियंस लीग फुटबॉल। दूसरा रास्ता है, अगर आज एस्टन विला यूरोपा लीग जीत जाए और प्रीमियर लीग में 5वें पोजीशन पर आए, मतलब एस्टन विला की हार आखिरी मैच में और लिवरपूल की जीत, तब जाकर द चेरीज चैंपियंस लीग का स्वाद चखेंगे। बधाई आर्सेनल को, बधाई बोर्नमुथ को। एक 22 साल बाद प्रीमियर लीग चैंपियन, दूसरा 127 साल बाद क्लब हिस्ट्री में पहली बार यूरोप में। लंदन की एक टीम प्रीमियर लीग चैंपियन तो दूसरी टीम खतरे में। टोटनहम हॉटस्पर के लिए रिलेगेशन का खतरा अभी बरकरार है, क्योंकि लंदन की ही टीम चेल्सी ने उसे 2-1 से हराया। एक अंक चाहिए था, एक ड्रॉ काफी था द स्पर्स के लिए, पर चेल्सी भी यूरोपियन फुटबॉल चाहता है अपने आने वाले नए मैनेजर अलोंजो के साथ। फर्स्ट हाफ में चेल्सी 1-0 से आगे था, एंजो फर्नांडेस का गोल। सेकंड हाफ में आंद्रे सांतोस का गोल, चेल्सी 2-0 से आगे। फिर रिचार्लिसन ने एक गोल कम किया। फाइनल स्कोर चेल्सी 2 टोटनहम हॉटस्पर 1। अब टोटनहम हॉटस्पर का आखिरी मैच अपने होम मैदान में होगा एवर्टन के खिलाफ। प्रीमियर लीग सर्वाइवल, रिलेगेशन से बचने के लिए चाहिए कम से कम 1 ड्रॉ 1 अंक। टोटनहम हॉटस्पर की हार से वेस्ट हैम यूनाइटेड के बचने के चांस हैं, लाइफलाइन है। वेस्ट हैम का आखिरी मैच अपटन पार्क में लीड्स के खिलाफ होगा। प्रीमियर लीग टाइटल सस्पेंस तो पूरा हुआ। चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग में जाने के लिए और रिलेगेशन से बचने के लिए सस्पेंस अंतिम दिन, अंतिम घड़ी, आखिरी मिनट तक का। सो ब्राइटन का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड से है। ब्राइटन के लिए यूरोप की संभावना अभी तक है। बर्नले वुल्व्स दोनों रिलेगेट हैं। क्रिस्टल पैलेस आर्सेनल, आर्सेनल को उसी दिन ट्रॉफी दी जाएगी। फुलहम न्यूकासल यूनाइटेड, लिवरपूल ब्रैडफोर्ड। चैंपियंस लीग लिवरपूल के लिए लगभग तय है और ब्रैडफोर्ड भी यूरोप में खेलने का उम्मीदवार है। मैनचेस्टर सिटी एस्टन विला, फिर नॉटिंघम फॉरेस्ट, बोर्नमुथ, सन्डरलैंड, चेल्सी, टोटनहम हॉटस्पर, एवर्टन, वेस्ट हैम यूनाइटेड, लीड्स। याद दिला दें, यूरोपा लीग का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। फाइनल फ्रीबर्ग और एस्टन विला के बीच। मैच इस्तांबुल के टूप्रास स्टेडियम बेसिक्टास पार्क में खेला जाएगा। एस्टन विला तो पहले से ही चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई है। अगर फ्रीबर्ग की जीत हुई तो हिस्टोरिक फर्स्ट टाइम चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। यूरोपा लीग स्पेशलिस्ट उनई एमरी 4 बार से टूर्नामेंट जीत चुका है, अब 5वां टाइटल है उनई एमरी के लिए, ये संभावना है, उसकी तलाश में है। कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल 27 मई को खेला जाएगा, क्रिस्टल पैलेस रायो वालेकानो के बीच। और द बिग वन खेला जाएगा चैंपियंस लीग का फुटबॉल 30 मई को

0: ये होगा आर्सेनल और पारी सैं जर्मेन के बीच। साउथम्पटन को प्ले ऑफ फाइनल से निकाल दिया गया, एक्सपेल्ड फॉर स्पाइंग। साउथम्पटन का जासूस मिडल्सब्रो के ट्रेनिंग ग्राउंड में फोटो लेते हुए शूटिंग करते हुए देखा गया, स्पाई गेट का मामला था। साउथम्पटन वालों ने स्वीकार किया कि ऐसा हुआ था और ऐसे में साउथम्पटन आउट, मतलब फाइनल हल और मिडल्सब्रो के बीच होगा, पर साउथम्पटन ने अपील की है। टेनिस, कार्लोस अल्काराज इंजुरी के कारण फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन में नहीं खेल पाएगा। अल्काराज ने कहा रिकवरी ठीक चल रही है पर वो खेलने के लिए फिट नहीं है, अभी फ्रेंच ओपन क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं। क्रिकेट में आईपीएल में युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी का जलवा जारी है। कल वैभव 93 रन बना पाया केवल 28 गेंदों में, 93 रन्स, 7 चौके, 10 छक्के, कमाल का बैट्समैन है सूर्यवंशी 15 साल का केवल। उसकी धुआंधार बैटिंग के बल पर राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्लेऑफ में जाने के लिए चांसेस अभी तक बरकरार हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हैं। एक आखिरी स्थान अभी खाली है, राजस्थान रॉयल्स के पास है 14, पंजाब किंग्स के पास 13 और चेन्नई सुपर किंग्स के पास 12 अंक। राजस्थान रॉयल्स का आखिरी मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, दे आर द चैंपियन, द गनर्स आर द प्रीमियर लीग चैंपियन। मैनचेस्टर सिटी के ड्रॉ मैच के साथ आर्सेनल चैंपियन बन गया। बधाई हो 22 साल बाद, आफ्टर 22 ईयर्स, टाइटल जश्न मनाते रहो। हैव ए वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती।
1: Thank you, Arvind. Thank you so much.
2: Quality Déco, puis annonce sous Mega Sales pour 2 semaines seulement. Mob à portier 25 roupies. Granit à portier 2000 roupies. Sanitaire à portier 3500 roupies. Porc et laminé et SPC. Avec la pause gratuite, s'il vous plaît. Et beaucoup des autres super offres pour toute la case. Quality Déco, et n'a tout pour décoration intérieure et extérieure. Rosset pavé décoratif, quartz, robinetterie, la lumière, meubles salle de bain et beaucoup des autres encore. Visite-nous tous showroom à travers l'île. Fast step de paiement disponible. Plus renseignements.
3: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
4: Morning Beat.
5: RM2, Radio Musty in the mix.
1: Well, it's a well-deserved title after 22 years. So, ye gaana especially Arsenal ke sabhi fans ke naam. Congratulations!

0: ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग टू मॉर्निंग बीट विदिता के साथ आपके अपने रेडियो मस्ती पर। थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की ओर, मिलते हैं उस पार कुछ और सरप्राइजेस के साथ।
1: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2.
2: Radio Musty.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: आवाज़ समाचार सुना जा। मुर्शिद में बेरोजगारी के दर में लगातार गिरावट नोट करल जात बाते। सन 2015 में ये आंकड़ा 7.9% रहेला और गत बरिस 5.7% दर्ज हुएला। काल स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस एगो रिपोर्ट आम कर लेबा। आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक के हई 17वें संस्करण में जाहिर होता कि एक तरफ 16 से 24 साल के उम्र वाले नौजवान बेरोजगारी से ज़्यादा प्रभावित रहेला, लेकिन दूसर तरफ एगो साल में मॉरिशस में अतिरिक्त 6,700 मुर्शन के काम मिलेला। कल राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री बैंक ऑफ मॉरिशस के संदर्भ में कुछ जानकारियां देवे रहल बाते। गत सरकार के तहत केंद्रीय बैंक के निगरानी उतना कमज़ोर रहेला के करीब 4 स्थानीय बैंक में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कमती पर गल। ई रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसर तथ्यों के वजह से इतनी बढ़ेला। पिछली गत बरिस इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश करल कर रहल जोन 48 बिलियन रुपया बाते। ए मॉरिशस के सीईओ राष्ट्रीय विमानन कंपनी में बदलाव लाए के अपन विजन आम करेला। ई विजन आवत 10 बरिस खातिर बा। लिंक्डइन पर उ ए मॉरिशस के लिए 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रेटजीज के जानकारी दे लेबा। मकसद आमदनी के बढ़ाए के है, मंदियों में एक्सेस और भविष्य के वृद्धि के समर्थन करे के है। विदेश में भारत में नई दिल्ली में बहुत गर्मी महसूस करल बाते। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के दर्ज हुआ था। जगह जगह लोग एकर बर्दाश्त करे के तरीका तलाशे हुए देखलन जा। तय रहर समाचार। नमस्ते और सलाम।
0: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
6: Quatrième saison débat climat peut continuer. Ban participants pour continuer débattre sur les questions climatiques qui concernent nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: डांस और एक्सरसाइज कमाल का कॉम्बिनेशन है, जिनको एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता डांस कर लो, इसमें क्या डिफिकल्ट है। चलो तो यहाँ पर हमारे साथ गाड़ी में भी काफ़ी सारे लोग जुम्बा कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू राखी, नीना एंड सुहासिनी। ये लोग जब भी रेडियो सुनते हैं, जब भी कोई गाना ऐसे चलता है तो डांस करना शुरू हो जाता है इनका। सो विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड सुबह के 8:08 हो रहे हैं, एक बार फिर से हमारे सेकेंड आवर ऑफ मॉर्निंग बीट में आपका हम वेलकम करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आज

0: दिन भर मौसम कैसा रहेगा, मिलते हैं सुमेरा से।
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: आम हालत तक हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह सवेरे कुछ बारिश होगी और बाद में मौसम अच्छा रहेगा। दोपहर बाद कुछ बादल घिराएंगे उत्तर और पश्चिम में और रह रहकर बारिश भी होगी। आज रात के दौरान ऊंचे इलाकों में वर्षा होगी और दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगुनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दिन के दौरान समुद्र की हालत बेहतर होगी, लेकिन आज सुबह दूर समुद्र में न जाने की सलाह है। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 24 से 26, साहिरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्यास्त 5:39 पर।
1: योर वेदर फोरकास्ट ऑन RM2
2: रेडियो मस्ती।
4: Béala, Wednesday Bazaar, la Gekot Winners! Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners!
5: Et promotion, bidoune balle! 500 grammes aubergine pour 29,95 €! 500 grammes giromont pour 14,95 €! And bucket 500 grammes raisin crimson pour 99,95 €! 500 grammes blanc cuisse avec aile de poulet frit pour 104,95 €!
4: Pan prix là! Bazaar, Maudirou! Rendez-vous Got Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar!
6: On est tous winners!
7: A good beat for your morning show. Come on. Morning Beat, RM2.
2: Radio.

0: Avant ton défi, ton long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, कोई किसी का हमेशा नहीं होता। वक्त, पैसा, पावर सब टेम्पररी है, इसलिए घमंड कभी मत करना। आज जो तुम्हारे पास है कल किसी और का होगा, हो सकता है ना। हाँ, बस इंसानियत और अच्छा व्यवहार ही हमेशा याद रहता है। हमारे मरने के बाद लोग जब हमारी बारे में बात करते हैं तो या तो फिर हम गलत होते हैं या तो फिर हम सही होते हैं। अच्छा इंसान बनोगे तो अच्छी अच्छी बातें होंगी, आपके मरने के बाद भी आपको याद किया जाएगा, वरना हमेशा बुरा एग्जाम्पल दिया जाएगा कि भाई ये तो ऐसा था, इसके साथ तो ऐसा हो गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं सुनने को ज़िंदगी में। लोग रिश्तों की जो सिचुएशंस होती हैं, स्टेटस और सक्सेस सब बदलते रहते हैं। जो आदमी आज अपने ईगो और घमंड में रहता है, वक्त उसे भी नीचे ला सकता है, इसलिए हम्बल रहना ज़रूरी है। रियलिटी ये है कि पैसा रहता नहीं, सुंदरता रहती नहीं, पावर रहती नहीं, लोग भी हमेशा साथ नहीं रहते, पर एक चीज़ हमेशा याद रहती है, आपका नेचर और आपका दिल।
0: Avant ton défi, ton long shift, ton premier pas qui capable sens toujours dit, il y a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Il n'y a pas une simple tasse, il y a un nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, ton long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2.
3: Radio Musty. Feels a Musty.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2
1: Radio Musti.
2: सुबह के 8:20 हो गए हैं। आज है 20th of May।
3: 20 तारीख हो गई।
2: हाँ,
3: तूने बताया भी नहीं।
2: महीना नहीं बताया।
3: नहीं बताया।
2: ओ सॉरी।
3: और तूने 20 कर दिया, मतलब 8:20 क्योंकि अभी अभी 21 हुआ ना।
2: हाँ ओके।
3: हाँ यही बात।
2: I missed it.
3: It's okay.
2: No, you missed it.
3: May God bless and may.
2: Okay.
3: Ladies and gentlemen, स्वागत आप सभी का। देखिए ऐसा है कि हम आपको ले जा रहे हैं एक हेलीकॉप्टर राइड पर, चलना चाहेंगे? ठंड का समय, आप सोचिए आप धुंध के ऊपर, बादलों के ऊपर निकलते हुए, चीरते हुए खूबसूरती देख रहे हैं मॉरिशस की। ऐसा चांस आपको मिल सकता है, बस करना क्या है, आप जान ही रहे हैं, आप प्रोमो सुन ही रहे हैं, जहां पर आपको डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0, पुराना वाला नहीं, क्योंकि वो फेज आउट होगा जून के महीने में। हाँ उसको छोड़ो, नए से नाता जोड़ो। तो ये है एमबीसी प्ले 1.0, और जब आप डाउनलोड करेंगे और रजिस्टर करेंगे तो फिर आपको एक मिलेगा मैसेज एमबीसी OTT, और वही आपको स्क्रीनशॉट करना और भेजना है ऑन 5499-1294, आपका व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, आप शामिल होंगे इन द शॉर्टलिस्ट वाली लाइन, और हो सकता है कि 5:30 बजे के बाद आपका नाम आ जाए, यू माइट बी शॉर्टलिस्टेड आज के दिन, क्या पता। ग्रैंड फाइनल होगा 29th of May के लिए, तो बस लगे रहो, दिल में कोई बात हो तो हमसे कहो,
2: और बाकी डिटेल्स आप फिर से सुनो
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
4: À l'occasion lancement MBC Play, préparez-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir à l'essence des grands gagnants pour un pot d'étiquette Saken pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans Région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et créez un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, restez à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé leur compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la sens, participez donc.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2
2: Radio Musti.
3: सोचो अगर कोई अंग्रेजी गाना गाएगा तो कैसे गाएगा?
4: वो जैसे गाएगा तुम्हें, नहीं तुम्हें क्यों इतनी इंटरेस्ट?
3: ऐसे पता नहीं क्यों नींद चुराए मेरी, कसने उस सारा
4: नींद चुराए, लग रहा है ब्रेड चुराए मेरी। भाई खाने दो उसको, ले ली तो कोई बात नहीं, मैं क्या है? लेकिन नींद किसी की उड़ गई है इसलिए, क्योंकि भाई ऐसा है कि पुर्तगाल ने अनाउंस कर दी अपनी टीम, और उसमें फॉर द

0: sixth time आने वाले रोनाल्डो इज गोना बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड और साथ में ब्रूनो भी होने वाले
1: हैं। I like him.
0: अच्छा वैसे आपको बताएं कि पुर्तगाल एक बहुत कमाल की अटैकिंग टीम है और ऐसे स्क्वाड के साथ एंट्री मारना मतलब अपने आप में रिकॉर्ड तो है ही है, लेकिन बाकी हो जाए सावधान क्योंकि आने का कर दिया है ऐलान।
2: Get ready for the biggest World Cup ever!
3: 2026 FIFA World Cup.
2: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
3: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप.
4: एच के बारे में चर्चा करेंगे। इस ग्रुप में है स्पेन, केप वर्दे, सऊदी अरेबिया और यूरुग्वे। इसमें 15 जून से 26 जून तक ग्रुप स्टेज के मैच खेले जाएंगे। अ यूनिक ब्लेंड ऑफ हैवीवेट फुटबॉल जायंट्स, सीजन टूर्नामेंट रेगुलर्स एंड हाईली एंटिसिपेटेड टूर्नामेंट डेब्यूटेंट। स्पेन की टीम 17वीं बार के लिए 17th वर्ल्ड कप अपीयरेंस ला होगा, फेमसली उनका नाम है। 2010 में उनकी जीत हुई थी और मैसिव मोमेंटम के साथ रेनिंग कॉन्टिनेंटल किंग्स के साथ आ रहे हैं क्योंकि यूईएफए यूरो 2024 स्पेन नहीं जीता है। इस टीम में है 18 साल का बार्सिलोना का फेनोमेनल खिलाड़ी लामिन यमाल, जो इस टूर्नामेंट का एक ब्रेकआउट स्टार होकर रहेगा, और साथ में है मैनचेस्टर सिटी का वर्ल्ड क्लास डिफेंसिव मिडफील्डर रोड्री, जो इस टीम का हार्ट बीट माना जाता है। उधर यूरुग्वे की टीम 15वें टूर्नामेंट में है। ला सेलेस्ते जो पहला वर्ल्ड कप जीत पाया था 1930 में और रिपीट किया था 1950 में, अभी आइकन मार्चेलो बियेल्सा का कोच हैं और फिर से एक एलीट स्टेटस बनाना चाहते हैं। 2022 में ग्रुप स्टेज में ही आउट हो गए थे। इस टीम में है फ्रेडरिको वाल्वेर्दे और सपोर्टेड बाय रोनाल्ड ओरोहो। सऊदी अरब 7वीं बार के लिए 7th पार्टिसिपेशन, बेस्ट फिनिश इनका था राउंड ऑफ 16 1994 में और उन्होंने एक अपसेट भी किया था, ग्रेटेस्ट अपसेट इन फुटबॉल हिस्ट्री 2022 में, जब डिफेंडिंग इवेंचुअल चैंपियन अर्जेंटीना को हराया था, यानी दे डिफीटेड द इवेंचुअल चैंपियन अर्जेंटीना ग्रुप स्टेज में, और सभी को पता है अर्जेंटीना वेंट ऑल द वे टू विन द वर्ल्ड कप। इसमें कुछ खिलाड़ी हैं जैसे सलेम अल दरसारी और एर्वे रेना इस टीम का मैनेजर हैं। केप वर्दे पहली बार के लिए ऑफिशियली फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू और ये कफ ग्रुप डी में ग्रुप विनर बन के आया है। इसमें रायन मेंडेज नाम का 36 साल का वेटरन खिलाड़ी है, देश का ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर। स्ट्राइकर डेलन लिब्रामेंटो भी है इसमें। तो ये ग्रुप, इस ग्रुप में अगर देखा जाए फेवरेट हैं क्वालिफाई होने के लिए स्पेन और यूरुग्वे, पर सऊदी अरब और डेब्यूटेंट केप वर्दे से बच के रहना होगा।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: भाई ये बात तो सही है कि सुबह सुबह में पसीने ही छूट जाते हैं, इतने भागना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आराम भी तो ज़रूरी होता है। तो जितने भी हमारे लेडीज़ हैं घर पे, घर का काम काज बाद में भी हो सकता है, 5 मिनट बैठ जाओ, एक कप चाय ले लो, या तो फिर आप अपना फेवरेट सीरियल ले लो, या तो फिर आपको सुबह सुबह पराठे। हाँ, जो लोग घर का काम काज करते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि बैठ कर सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट करें, है ना। तो चलो आप लोग बैठो, आप ब्रेकफास्ट करो और अपना मोबाइल अपने पास रखना, क्योंकि मैं सवाल करने जा रही हूँ। स्पेशली अभी जो लोग ड्राइव उनके लिए तो मुश्किल होगा, अगर बगल वाले से काम कराना चाहते हो करा सकते हो। करना क्या है, अभी हम खेल रहे हैं रॉजर्स कैपिटल के साथ। यहां पर आपके लिए एक सवाल है, सही जवाब देंगे तो आपको मिल सकता है रॉजर्स कैपिटल के साथ खेलने पर डोमिनोज पिज्जा की ओर से 1000 रुपीज का एक वाउचर। अब आपके लिए सवाल है, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट प्रमोशन एट ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट प्रमोशन एट ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको मुझे सही जवाब देना है 549 1294 पूरे नाम और पते के साथ। एंड रिमेंबर, रॉजर्स कैपिटल होल्सेल लाइसेंस फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन।
1: RM2 रेडियो मस्ती In the mix. Radio

एंड यस, चलो लगता है हमारी जो छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा सुधार आ गया। हम बड़ी खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। वैसे लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती भाई, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मैं भी कल मेरा बीपी हाई हुआ, मैं सोच ही रही थी कि लाइफ में मैं क्या करूँ। कभी कभी सोचते हैं ना कि हम कि बदला कैसे लें। मैंने भी सोचा कि मैं अगले जन्म में, पता है दुनिया में दो खतरनाक चीज़ हैं और ये बेचारे कुछ करते नहीं फिर भी सब इनसे डरते हैं। एक है कॉकरोच और दूसरी है छिपकली। छिपकली जो कि चिपक चिपक के चलती ही है लेकिन फिर भी कुछ करती नहीं है, और दूसरा है उड़ती फिरू, क्या कहते हैं वो गाना था, पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त किचन में। तो कॉकरोच जो है इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं सोच रही थी अगले जन्म में कॉकरोच या तो फिर मैं छिपकली बनूंगी, फिर सारे दुश्मनों से बदला लूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस खड़ी रहूंगी, देखती रहूंगी, वो डरते रहेंगे। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, पर फिर पता चला कि मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक है। अब अगर मैं कोई गाना सुन रही हूँ, गाना सुनने के बाद अगर मेरा ताली बजाने का मन किया तो मैं तो ऊपर से नीचे गिर जाऊंगी अगर छिपकली बनी तो। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, कॉकरोच बन जाते हैं। फिर कॉकरोच से याद आया आंटी की वो चप्पल जिसके साथ वो कॉकरोच के पीछे भागती है। फिर मैंने कहा रहने दो भाई, कुछ नहीं बनना, रहने दो, जैसे हैं वैसे ही हैं। तो लाइफ में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ अपने आप को बदलना चाहते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का साइड इफेक्ट तो होता है भाई। चलो कोई बात नहीं, हमने सोचा स्त्री भी बन जाए, लेकिन स्त्री तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है यार, वो दीवार पर लिख देते हैं वो स्त्री कल आना और वो बेचारी चली जाती हैं, तो इनसे तो कोई काम होगा ही नहीं। तो अभी मैं और विकास बात कर रहे थे तो उसने बोला तू ऐसा कर, तू पायल पहन, घुंघरू पहन और डांस करना शुरू कर दे। तो हमने भी सोचा अकेले क्यों करे भाई, साथ में मिलके करते हैं ना। कुछ याद आया, इससे बेटर डांस क्या हो सकता है। अबरे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, हमारा मजाक तो चलता रहता है, बस कोशिश करते हैं आप थोड़ा सा स्माइल कर दो। किया ना

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: देखो मैं तो ऐसे ही डांस कर रही थी, मेरे साथ नीलमणि भी आ गई डांस करते
3: देखो
2: करते।
3: मैं तो ऐसे ही डांस कर, जब तुम डांस रहे थे हम देख ही रहे थे, मैं और नीलमणि।
2: हाँ
3: आप कह रहे हैं वाह वाह वाह।
2: हाँ तो वही तो वेट कर रही थी, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो ना।

0: हम तो मंत्र मुग्ध हो गए हैं।
1: क्या हो गए?
0: इस समय मंत्र मुग्ध।
1: अच्छा,
0: हाँ होता नहीं जब इंसान कुछ बोल ना पाए, बाकी हमारे लेसन समझ गए हैं कि वो क्या सोच सकते हैं।
1: देखो ये लोग फिर से,
0: फिर देखो वो कैसे देखेंगे। अच्छी बात है कि हम ही देख रहे हैं, हमारे लिए काफी है, बाकी को नहीं देखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे को लग रहा है बेता पतली गली से भागने वाली है और हमारे लिए रास्ता बनाने वाली है।
1: जाओ, मैं बात नहीं करती।
0: नहीं नहीं करोगी, क्योंकि 9 से 12 हम ही करने वाले बात, मैं और निर्मली। तुम ब्रेक लो, तब से बात कर रही हो, थोड़ा ब्रेक लो, कुछ खाओ कुछ पियो। देखो ऐसी बात नहीं, हम सबको
1: भगाने की जरूरत नहीं है, इतना भी बोलने की जरूरत नहीं।
0: ऐसा लगा? ऐसा लगा,
1: दिल पे लगा,
0: जोर का झटका आई तीर से लगा।
1: चलो भाई जाती हूँ, इनको तो बस काम ही है मुझे भगाने का। तो कल मिले सुबह 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर।
2: मॉर्निंग बीट, A good beat for your morning show. James.
3: RM2, Radio Musti in the mix.

0: समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है सुमेरा, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सुमेरा।
1: नमस्कार राधा। मुश्रस में बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट नोट की जा रही है। सन 2015 में ये आंकड़ा 7.9% था और पिछले साल 5.7% दर्ज हुआ। कल स्टैटिस्टिक्स मुश्रस ने रिपोर्ट आम की। आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक के 17वें संस्करण में ये जाहिर हुआ कि एक तरफ 16 से 24 साल की उम्र वाले नौजवान बेरोजगारी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक साल में मॉरिशस में अतिरिक्त 6,700 मॉरिशनों को काम मिला है। अन्य खबरों में कल राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस के संदर्भ में कुछ जानकारियां दी। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमजोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरे तथ्यों की वजह से इतनी बढ़ी है। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश किए गए जो 48 बिलियन रुपए दर्ज थे। कई हफ्तों से एमर्शस के सीईओ ने राष्ट्र विमानन कंपनी में बदलाव लाने का अपना विजन आम किया। ये विजन आने वाले 10 सालों के लिए है। लिंक्डइन पर उन्होंने एमर्शस के लिए 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रैटेजीज की जानकारियां दी। मकसद आमदनियों को बढ़ाना है, मंडियों पर दोबारा एक्सेस पाना है और भविष्य की वृद्धि का समर्थन करना है। पुरानी जेंडर इक्वालिटी मंत्री कल्पना कुंजू शाह ने अपने वकील के जरिए काफू रिश्ते में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग पर एतराज जताया जो पुलिस ने प्राप्त की। कल पोम्पलेमुस जिला अदालत में उन्होंने सुनवाई के बाद ये बात कही। कल्पना कुंजू शाह पर चोरी का इल्जाम है और वो अपनी बेगुनाही का दावा कर रही हैं। पुलिस आईटी यूनिट से कांस्टेबल बेग से मांग की गई कि वो पिछले 19 सितंबर को घटी इस घटना की तस्वीरें अदालत में पेश करें। प्रतिरक्षा वकील आइवान कुलेंडावेलू ने इसे पेश करने से मना किया, ये कहकर कि पहले ये पता करना चाहिए कि वीडियो असली है। मामले को अगले 11 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया है। और विदेश में भारत में नई दिल्ली में बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हुआ। जगह जगह लोगों को इसे बर्दाश्त करने के तरीके तलाशे हुए देखे जा रहे हैं। और इसराइल ने लेबनान के दक्षिण में हवाई हमले किए। कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, उनमें बच्चे और महिलाएं शामिल। ये हमला एक घर पर किया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
4: You're listening to Musty Mornings.
5: Musty Morning Show.
4: Stay tuned, stay musty.
6: Radio...

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग, 9:08 हो चला है ना, अभी आपके नेक्स्ट हो चुके हैं मस्ती मॉर्निंग के साथ विद निर्मनियन विकास।
3: हे गुड मॉर्निंग। आज का दिन भी बहुत ही कमाल का, जहां पर बादल वादल छाए थे, ठंडी फीलिंग, और इट्स ऑल गेटिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि धीरे धीरे चलिए मई का महीना जहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप का फीवर भी चढ़ता जा रहा है। अच्छा, अभी तुमने सुना वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज बैक इन द पोर्चुगल स्क्वाड। ओह माय गॉड, ब्रूनो भी होगा तो बहुत ही कमाल का अटैकिंग
2: होगा।
3: हाँ, इट्स गोना बी फन। इंग्लैंड को देखना पड़ेगा कि वो क्या करें, हमारी इंग्लिश टीम बनकर सामने क्या कमाल करेगी। चलिए, एक्साइटमेंट ऑन है। आर्सेनल को कांग्रेचुलेशंस, फुटबॉल के फैंस बस झूम रहे, नाच रहे, गा रहे हैं। आर्सेनल आफ्टर लॉन्ग टाइम बने चैंपियंस। चलिए, बातें तो चलती रहेंगी बॉलीवुड की भी। आज का दिन, अरे स्पेशल क्या
2: स्पेशल, ये है कि आज है वर्ल्ड बी डे। टाइनी बीज, लेकिन ह्यूज इंपैक्ट।
3: हाँ, ये वाली ना, देखो कहीं स्टिंग ना कर ले। अच्छा, एनीवेज, हम तो चाहते हैं कि उसका डंक नहीं

0: पड़े, लेकिन कभी कभी आप जब गए होंगे फील्ड के अंदर हाँ। तो आपने उनको देखा होगा, आई मीन वो बहुत कमाल की चीज़ है, कैसे पॉलिनेशन करती है, हमें जिंदा रखती है साहब, वो ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए जीना।
1: हाँ, अगर बीज ना हो तो नेचर का बैलेंस भी हिल सकता है।
0: बातें चलती रहेंगी, लेकिन अभी इट्स म्यूजिक टाइम, वापस लौट कर आते हैं म्यूजिक एंड सनशाइन।
2: Welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: Hits, music only.
3: Feels a Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अच्छा देखिए, ऐसा है कि अपनी गाड़ी तो ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है, लेकिन जब ऑटोमेटिक और मैनुअल गाड़ियों की बात करते हैं तो दोनों हैं। वहीं पर अगर हम मैनुअल की बात करें तो स्पीड के हिसाब से गियर चेंज करना पड़ता है। आमतौर पर मैनुअल कार को स्टार्ट करने के बाद पहले गियर में ही आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन कई बार लोगों के मन में आता है कि गाड़ी तो मेरी इतनी पावरफुल है तो मैं सेकेंड में ही डालता हूँ। ऐसा होता है, आप अगर टैक्सीज और जो वैन वाली होती है ना, बड़ी वाली, उनको देखते हैं कि वो खाली फर्स्ट गियर डालते हैं जब काफ़ी एलिवेशन हो तभी। आमतौर पर कार को सीधे सेकंड गियर में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो क्लच प्लेट होती है ना, वो जल्दी घिस जाती है, भारी नुकसान हो सकता है। इसे गाड़ी को हमेशा फर्स्ट गियर में ही आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति भी है जहाँ पर सेकंड गियर का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही माना जाता है। चल इसकी बात हम थोड़ी सी करते हैं। वैसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि अपना काम करते हैं, कहते हैं ढलान पर नीचे उतरते समय जब आपकी गाड़ी किसी ढलान पर खड़ी हो वहाँ सेकंड गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप हैंड ब्रेक हटाते हैं, कार ढलान की वजह से अपने आप नीचे की ओर चलने लगती है तो रफ्तार पकड़ने लगती है। व्हेन यू गोइंग डाउन,
3: तब
2: तुम इमेजिन करी, मैं देख रहा हूँ और तुम हाथ पता नहीं कहाँ पर, वो माउस है, गियर नहीं है। अच्छा फायदा क्या है, जब कार ढलान पर खुद ब खुद थोड़ी स्पीड पकड़ ले तब आप सीधे सेकंड गियर लगाकर क्लच छोड़ सकते हैं। मैनुअल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी पहले से ही स्पीड में होती है, इसे क्लच पर कोई ज़्यादा दबाव या लोड नहीं पड़ता, तो ये बात होती है। वैसे कई लोगों का मानना है कि बर्फ कीचड़ या फिसलन वाली जो सड़कें होती हैं उन पर पहियों को फिसलने से बचाने के लिए सेकेंड गियर में गाड़ी उठानी चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये तरीका भी गलत है। ऐसा करने से क्लच पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और वह जो समय होता है उसमें वो जो क्लच प्लेट होती है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए बहुत कुछ सीखना समझना बाकी है, धीरे धीरे बात होती रहेगी। और भी कुछ है, अब गाड़ी फर्स्ट गियर में तो आ गई, सेकंड गियर डालो।
1: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: अभी टाइम हो गया है स्टार्स की दुनिया में एक चक्कर लगाने का। देखते हैं आज यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा है। लकी कलर्स, नंबर्स और थोड़ा सा कॉस्मिक गाइडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।

0: आज भाई ये कम्युनिकेशन आपकी सुपर पावर है, जो बात दिल में है आपको बोल देना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज नॉक कर रही है, लकी कलर आज आपका है स्कारलेट रेड और नंबर है 8।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: आज आपकी कंसिस्टेंसी आपको रिवॉर्ड करने वाली है। ओवर थिंकिंग कम और एक्शन ज्यादा, सेल्फ केयर भी होता है जरूरी। लकी कलर आपका है क्रीम और नंबर है 6।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: एनर्जी आपकी हाई है, नई आइडियाज आ सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को भी शाइन करने का मौका दीजिए। लकी कलर है सिल्वर और नंबर है 7।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: पेशेंस माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंस रखिए, जो चीजें डिले हो रही है वो सही समय पे ही आएगी। लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर आपका है 2।
1: लियो सिंह राशि,
0: आज भाई स्पॉटलाइट आप पर ही हो सकती है, कॉन्फिडेंस के साथ मूव करिए। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आपकी जो छोटी छोटी विंस है उनको सेलिब्रेट कीजिए, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। लकी कलर आपका है सेज ग्रीन और नंबर है 8।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: बैलेंस ही आपकी स्ट्रेंथ है, आज काम और पर्सनल लाइफ दोनों को इक्वल अटेंशन दीजिए। लकी कलर है स्काई ब्लू और नंबर है 5।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, गुड फीलिंग को कतई इग्नोर ना करें। लकी कलर आपका है डीप बर्गंडी और नंबर है 9।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज तो इस साल का एडवेंचर मूड ऑन हो चुका है, नए आइडियाज या नए कनेक्शन से आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: डिसिप्लिन आज मैजिक क्रिएट करेगा, फोकस रखिए और डिस्ट्रैक्शंस को बाय बाय बोलिए। लकी कलर आपका है ग्रे और नंबर है 4।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: क्रिएटिव आइडियाज धीरे धीरे आ रहे हैं, अपने यूनिक थॉट्स को एक्सप्रेस करना सीखिए। लकी कलर आपका है इलेक्ट्रिक ब्लू और नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: फैमिली और इमोशंस आज प्रायोरिटी रहेंगे, दिल की बात बोलने का परफेक्ट दिन है। लकी कलर आपका है समुद्री हरा और नंबर आपका है 7।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: And yes, it's your Musty Morning and party का तो पता नहीं, लेकिन अभी movie buzz और trailers के बारे में आपको बताने वाली हूँ।
3: हाँ, कहीं दिलजीत दोसांझ की तो नहीं बात करने वाली?
2: या
3: वो ही। अरे हाँ। क्या बात है। अच्छा, काफी टाइम से वो थोड़े absent भी हैं। लग रहा है कि movie business में मिस्टर इंडिया बनने का उनका ख्वाब पूरा हो रहा है धीरे धीरे। मुकाम वो तो खुश होगा ही।
2: होगा हाँ। एक्चुअली वो मैं वापस आऊंगा ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है।
3: मैं वापस आऊंगा, तुम्हें गाना बताइए।
2: हाँ,
3: कौन सा?
2: बॉर्डर का गाना।
3: बॉर्डर का, हाँ। तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ गए। हाँ, पहुंच गए वहां पर एक ट्रेलर लॉन्च पर। एंड मूवी देखने में लग रही है कि कुछ लव स्टोरी स्टाइल में है ना। मैं वापस आऊंगा, सो यू कैन फील रोमांस फिल्म है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं, क्योंकि उनको हमेशा देखा है कुछ बहुत ही लार्ज एक्टर के रूप में आते हैं, जहां पर उनके परफॉर्मेंसेस चाहे नेशनल इंटरनेशनल बहुत ही कमाल की। अपने आप को ऐसे रोल में ढालना, यू हैव टू रियली कंट्रोल, जैसे उनकी एनर्जी है। देखते हैं, गाने ठीक ठाक आए अभी तक, लेकिन जो ट्रेलर है वो थोड़ी बस क्रिएट कर रहा है, राइट?
2: एंड एक्चुअली उसमें वेदांग रैना और शर्वारी ऑफिशियली आउट हो चुके हैं, लेकिन को स्टार दिलजीत दोसांझ उस लॉन्च इवेंट में जा नहीं पाया, और उसने एक मैसेज वीडियो भेजा उसके एब्सेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। एनीवेज, उसके बारे में बातें होती रहेगी, अभी गाना सुन लेते हैं दिलजीत दोसांझ का ही, डू यू नो।
1: Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: मस्त समा है, ऊपर से मस्ती मॉर्निंग का सिलसिला जारी है। वैसे आपको पैम्पर करने के लिए आरएम2 रेडियो मस्ती हमेशा होता है रेडी, एंड ऐसे ही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अभी टू विन ए हेलीकॉप्टर राइड फॉर टू पीपल। आपको डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0 को, नया वर्जन है, क्रिएट करना है एक अकाउंट, और जब आपने साइन इन कर लिया तो आपको अपने एमबीसी प्ले अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट भेजना है 5499124 पर, फिर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। एंड अगर आपका नाम है लिस्ट पर आपको कॉल करेंगे ना अभी, डू ट्राई योर लक। एंड अभी डाइव करते हैं राइट बैक इनटू द गुड म्यूजिक आपके ही आरएम2 रेडियो मस्ती पर।
1: रेडियो मस्ती
0: हिट म्यूजिक ओनली
1: फील्स अ मस्ती। रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: सुन मेरे यार, वे जो आपने सोचा है करने को वो करके ही रहना। अगर खुद पे भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, हम आप पर बिलीव करते हैं। कभी कभी लाइफ में ना बस चीज़ें कर लेनी चाहिए, तो ज़्यादा सोचो मत और निकल पड़ो अपने ही जर्नी में। गानों के साथ नमनी यही पर है आपके ही मस्ती मॉर्निंग में।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
2: RM2.
0: Radio Musti.
2: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
3: सुबह के 10 बजे है।

0: चलिए अभी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार रादाब। कल राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस के संदर्भ में कुछ जानकारियां दी। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमजोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरे तथ्यों की वजह से इतनी बढ़ी है। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तौर विदेशी निवेश किए गए जो 48 बिलियन रुपए थे। कई हफ्तों से मॉरिशस के सीईओ ने राष्ट्र विमानन कंपनी में बदलाव लाने का अपना विजन नाम किया। ये विजन आने वाले 10 सालों के लिए है। लिंक्डइन पर उन्होंने एयर मॉरिशस के लिए 10 फ्यूचर फिट गेम चेंजर स्ट्रैटेजीज की जानकारियां दी। मकसद आमदनियों को बढ़ाना, मंदियों पर दोबारा एक्सेस पाना और भविष्य की वृद्धि का समर्थन करना। पर्यावरण पुलिस कचरों के फेंके जाने के संदर्भ में सख्त रवैया जारी रख रही है। गुडलैंड्स में फेंके कूड़ों में से मिली एक रसीद से पता चला कि हरकत के पीछे कौन है। पुलिस एक एक बात पर ध्यान दे रही है। गए दिनों में कई कार्रवाइयां चलाई गई, 3 लोगों को कंट्रावेंशन दिया गया है। नेशनल वेयरहाउस की स्थानांतरण परियोजना के तहत देश के मुख्तलिफ इलाकों में भंडार केंद्रों को कायम किया जाएगा। वितरण प्रणाली के पुनः आयोजन के सिलसिले में ये कदम उठाया जा रहा है। नए संगठन का मकसद संबद्ध संस्थाओं में सप्लाई को आसान बनाना है। इस परियोजना पर सबकी अलग अलग राय है। विदेश में इसराइल ने लेबनान के दक्षिण में हवाई हमले किए। कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, उनमें बच्चे और महिलाएं शामिल। ये हमला एक घर पर किया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। ओल्ड ट्राफोर्ड लेन लेस्पेरांस कोटे मिलिटिया में 69 साल के 69 years old श्री अंबिकादत्त सुखलाल जो सुगान के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज 3:30 बजे के घर ओल्ड ट्राफोर्ड लेन लेस्पेरांस कोटे मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरांस कोटे मिलिटिया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। एवेन्यू कॉर्डिनल नंबर 5 पाई पोर्ट लुई में 72 साल की 72 years old बीबी जहाइमुन जिनाली जो मिस कानाऊ के नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 11 बजे इनके घर एवेन्यू कॉर्डिनल पाई से उठाकर दफनाने के लिए पाए का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टू डेट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: RM2 Radio Musti.
3: Hit music only.
4: Radio Musti feels a musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:10 हो चला है, डू मेक विश, पहुंच गए हैं हम 20 मई तक, तो लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। जो भी काम पेंडिंग है आज उसे कंप्लीट करते हैं। एंड आपको बता दें कि सावो में होने वाला है बी टाउन न्यूज, लाइफस्टाइल एंड फैशन टिप्स भी, तो यही पर वाइब करते हैं आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ।
1: Welcome to RM2 Radio Musty.
3: Radio Musty.
0: Hits, music only.
3: Feels a musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:20 हो चला है, चलिए ले चलते हैं आपको बॉलीवुड की दुनिया में। वैसे बॉलीवुड में सीक्वल्स का सीजन फुल ऑन हो चुका है। अब खबर आ रही है कि कॉकटेल 2 रिलीज होने वाली है 19 जून को। एंड हां जी, आइकॉनिक वाइब्स, फ्रेश स्टोरी और न्यू कास्ट के साथ मेकर्स फिर से मैजिक क्रिएट करने की तैयारी में है। फैंस पहले से ही एक्साइटेड है देखने के लिए कि ये सीक्वल भी ओरिजिनल की तरह हाथ से जीत पाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है इस मूवी के बारे में कि इट शिफ्ट्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल लव ट्रायंगल। एंड यस, देखा जाता है कीर्ति सैनन और रश्मिका कपल है, और शायद उनके बड़ी साउंड ट्रैक्स की बात करें तो वो भी काफ़ी कमाल है, प्रीतम जी ने जो कंपोज किया है। तो चलिए वेट करते हैं, इन द मीन टाइम एंजॉय करते हैं कॉकटेल पहले पार्ट का एक गाना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। एंजॉय ऑन योर RM2 रेडियो मस्ती।
1: Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: वेंसडे आ गया है, वीक का वो पॉइंट जहाँ पर कंफर्ट और स्टाइल दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। तो आज का टिप है लाइट लेयर्स ट्राई करो। मॉरिशस का वेदर तो अनप्रिडिक्टेबल होता रहता है, तो एक लाइट जैकेट या फिर श्रग स्टाइलिश भी लगेगा और प्रैक्टिकल भी। टिप नंबर दो है कि मिड वीक मूड को अपलिफ्ट करना है तो ब्राइट कलर्स पहनो। मस्टर्ड येलो, स्काई ब्लू या फिर सॉफ्ट पिंक एनर्जी आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। टिप नंबर थ्री होता है कंफर्ट फर्स्ट। स्टाइलिश स्नीकर्स या फिर कम्फी फ्लैट्स ऑफिस, कॉलेज या फिर अपने डेली रूटीन के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। एंड बोनस का टिप, एक्सेसरीज भी मैटर करता है। एक सिंपल घड़ी, सिंपल हुप्स या फिर ग्लासी सनग्लासेस पूरे लुक को एलिवेट करता है। एंड स्टाइल रूल ऑफ द डे है कि वेयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि इट नेवर गोज आउट ऑफ फैशन।
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: बजकर 50 मिनट हो चला है, चलिए मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। आज है आपकी भाभी नीतू का बर्थडे और आप है मालिनी जी, विश कर रहे हैं उनको लॉट्स ऑफ लव्स एंड हग्स। और आप है लविशा जी, आप बोल रहे हैं कि इट्स पोरिंग हेविली, आप होशनुमा के रहने वाले हैं। एंड वी हैव यालेश हमारे बड़ी जो कनेक्टेड है सुबह से एंजॉय कर रहे हैं गाना। वी हैव ललिता जी, दाविचिन जी एंड वी हैव हंस जो पोर्टलिस से हमें सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं गानों को। तो ऐसे ही एंजॉय करते रहिए क्योंकि आपके लिए लॉट्स ऑफ अमेजिंग गाने ऑन द वे है। तो यही आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहिए।

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: सुबह के 11 बजे हैं। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे सुमेरा नमस्कार।
4: नमस्कार राधा। पर्यावरण पुलिस कचरों के फेंके जाने के सिलसिले में सख्त रवैया जारी रख रही हैं। गुडलैंड्स में फेंके कूड़ों में से एक रसीद मिली, जिससे पता चला कि हरकत के पीछे कौन है। पुलिस

0: एक बात पर ध्यान दे रही है। गए दिनों में कई कार्रवाइयां चलाई गई, 3 लोगों को कंट्रावेंशन दिया गया है। सऊदी अरब में हज अदा करने गए करीब 50 मुर्शिदों को अल अजीजिया में होटल से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके लिए नए होटल का बंदोबस्त किया गया। इस्लामी सकाफती सेंटर के सदर शामाद अयूब साहब ने बताया कि उन्होंने खुद हज मिशन के साथ हाजियों के लिए नया होटल ढूंढा और हमारे हमवतन इत्मीनान से रह रहे हैं और जियारत कर रहे हैं। पुरानी जेंडर इक्वालिटी मंत्री कल्पना कुंजुशा ने अपने वकील के जरिए कौफो रिश्ते में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग पर एतराज जताया है जो पुलिस ने प्राप्त की। कल पोम्पलेमु जिला अदालत में उन्होंने सुनवाई के बाद ये बात कही। कल्पना कुंजुशा पर चोरी का इल्ज़ाम है और वो अपनी बेगुनाही का दावा करती हैं। पुलिस आईटी यूनिट से कांस्टेबल बेग से मांग की गई कि वो पिछले 19 सितंबर को घटी इस घटना की तस्वीरें अदालत में पेश करें। प्रतिरक्षा वकील आइवान कुरेंदाविलु ने इसे पेश करने से मना किया, ये कहकर कि पहले ये पता करना चाहिए कि वीडियो असली हैं। मामले को अगले 11 अगस्त के लिए स्थगित किया गया। पूर्व मंत्री पर 2,000 रुपये लागत कॉस्मेटिक पैदावारों की चोरी करने का इल्ज़ाम है। विदेश में थाईलैंड ने वीज़ा को लेकर कुछ मुल्कों के लिए नई पाबंदियां लागू की हैं। सन 2024 से 93 देशों से आने वाले पर्यटकों को 60 दिनों के ठहराव के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है ताकि थाईलैंड की अर्थनीति में मज़ीद योगदान हो, लेकिन अब कुछ देशों को 30 से ज़्यादा दिनों के ठहराव के लिए वीज़ा की अर्जी भेजनी पड़ेगी, उनमें ग्रेट ब्रिटेन शामिल है। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। एवेन्यू कॉर्डिनल नंबर 5 पाई में 72 साल की 72 years old बीबी जहाइमुन जिनाली जो मिस कानाउआ के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा 11 बजे इनके घर एवेन्यू कॉर्डिनल पाई से उठाकर दफनाने के लिए पाई का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। फ्यूनरल टुडे 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
3: You're listening to Musty Mornings.
4: Musty Morning Show.
3: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: आप और हम जब साथ में होते हैं तो मैजिकल वाइब्स खुद ब खुद इंक्रीज हो जाती है। लास्ट आवर में हमने एंट्री मार लिया है क्या खबर है वर्ल्ड बीज डे के अलावा। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड प्रोडक्ट डे, यानी कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी और नई आइडियाज़ को सेलिब्रेट करने का दिन है। सिंपल आइडिया से लेकर अमेजिंग प्रोडक्ट्स तक जो हमारी लाइफ को ईजियर बनाती हैं। आज इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल, तो साथ में रहकर उसे बनाते हैं मीनिंगफुल लाइफ के ही मस्टी मॉर्निंग में टिल 12 PM।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
3: In it, Sri Charso Bisa. DJ Sakifa spinning out.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अभी बी टाउन की गलियों में फिर से वापस जाते हैं। बॉलीवुड में सिर्फ एक्शन और रोमांस ही नहीं बल्कि नोस्टाल्जिया का फुल पावर चल रहा है अभी। एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड का सीक्वल फीवर अभी भी ऑन है और ऑडियंस को ओल्ड फेवरेट्स के फ्रेश वर्शंस देखने के मूड में है। पति पत्नी और वो दो के मूवी में ही देयर इज लॉट्स ऑफ रीमेक्स, लेकिन क्या फैंस उनको इन्जॉय कर पाएंगे उन रिफ्रेश्ड वर्शंस को, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए एक और रिप्रीज्ड वर्शन को इन्जॉय करते हैं आपके ही RM2 रेडियो मस्ती पर। You can find me in the
1: club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: दिल का तो पता नहीं, लेकिन अगर इस वेंसडे को लकी डे में कन्वर्ट करना है तो ध्यान से सुनो। आप जीत सकते हो 2 टिकट्स फॉर ए हेलीकॉप्टर राइड। आपको क्या करना है, आपको बस डाउनलोड करना है MBC Play 1.0।

0: वाली वर्जन को एंड अपने अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट लेना है, भेजना है हमें 5499-1294 पर। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा एंड 28 मई तक का वक्त है, मगर कहते हैं द अर्लियर द बेटर, सो डू ट्राई योर लक एंड ऐसे ही कीप वाइबिंग विद योर आरएमजू रेडियो मस्ती।
1: Radio Musti in the mix. Radio Musti feels a musti in the mix.

0: Actu
1: Radio Musty.
2: Ok Maurice, ce mois-ci, on voit les choses en grand chez McDonald's. C'est Grand May. Tout le mois de mai, profitez d'offres incroyables en restaurant, sur notre application et même en livraison. Du 8 au 31 mai, 5 généreux morceaux de crispy chicken à 460 roupies au lieu de 570 roupies. Plus de valeur, plus de goût et ça change tout. Grand May chez McDonald's, un mois à partager et à savourer.
0: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba, I'm loving it. RM2
1: Radio Musty.
3: ये गाना एक स्पेशल डेडिकेशन है जा रहा है आरिसन के लिए फ्रॉम प्राशील जो विश कर रहे हैं अपनी बड़ी को लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस सक्सेस एंड ढेर सारी स्माइल्स हैप्पी बर्थडे और अब एंजॉय कीजिए ये स्पेशल सॉन्ग सिर्फ आपके लिए

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हमरा तो हम आपके हमेशा रहेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है वमी निर्मनी साइन ऑफ। होप यू हैड अ फन मॉर्निंग। नेक्स्ट आने वाला है आपका रेट्रो रिदम शो, तो यहीं पर जुड़े रहिए और आपको विश करते हैं लवली वंस डे। टेक केयर, बाय बाय।
3: रेडियो मस्ती, हिट म्यूजिक ओनली।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check, 12 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
6: नमस्कार और आदाब. कल स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने अपनी रिपोर्ट आम की और कहा कि मॉरिशस में बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट नोट की जा रही है. सन 2015 में ये आंकड़ा 7.9

0: 9% था और पिछले साल 5.7% दर्ज हुआ। आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक के इस 17वें संस्करण में ये जाहिर हुआ कि एक तरफ 16 से 24 साल की उम्र वाले नौजवान बेरोजगारी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक साल में मॉरिशस में अतिरिक्त 6,700 मॉरिशनों को काम मिला है। प्रधानमंत्री ने बैंक ऑफ मॉरिशस के संदर्भ में कुछ जानकारियां दी हैं। पिछली सरकार के तहत केंद्रीय बैंक की निगरानी इतनी कमजोर रही कि करीब 4 स्थानीय बैंकों में तकरीबन 25 बिलियन रुपए कम पड़ गए। ये रकम टॉक्सिक लोन्स, राइट ऑफ और दूसरे तथ्यों की वजह से इतनी बढ़ी है। पिछले साल इस सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश किए गए जो 48 बिलियन रुपए थे। पर्यावरण पुलिस कचरों के फेंके जाने के संदर्भ में सख्त रवैया जारी रख रही है। गुडलैंड्स में फेंके कूड़ों में मिली एक रसीद से पता चला कि हरकत के पीछे कौन है। पुलिस एक एक बात पर ध्यान दे रही है। गए दिनों में कई कार्रवाइयां चलाई गई, 3 लोगों को कंट्रावेंशन दिया गया है। सऊदी अरब में हज अदा करने गए करीब 50 मोशनों को अलजीजिया में होटल से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके लिए नए होटल का बंदोबस्त किया गया इस्लामी सकाफती सेंटर और वहाँ पर हमारे सुल्तनत ने बताया कि उन्होंने खुद हज मिशन के साथ हाजियों के लिए नया होटल ढूंढा और हमारे हमवतन इत्मीनान से रह रहे हैं और ज़ियारत कर पा रहे हैं। विदेश में थाईलैंड ने वीज़ा को लेकर कुछ मुल्कों के लिए नई पाबंदियां लागू की। सन 2024 से 93 देशों से आने वाले पर्यटकों को 60 दिनों के ठहराव के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है ताकि थाईलैंड की अर्थनीति में मज़ीद योगदान हो, लेकिन अब कुछ देशों को 30 से ज़्यादा दिनों के ठहराव के लिए वीज़ा की अर्जी भेजनी पड़ेगी। उनमें ग्रेट ब्रिटेन शामिल है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। एक्स रेलवे रोड पदागोची में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री धनेश्वर समुज जो पुजीवन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके घर एक्स रेलवे रोड पदागोचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टॉन्स सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM ओल्ड ट्राफोर्ड लेन लेस्पेरेंस कोचिया मिलितिया में 69 ईयर्स ओल्ड श्री अंबिकादत्त सुखलाल जो सुगान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े तीन बजे इनके घर ओल्ड ट्राफोर्ड लेन लेस्पेरेंस कोचिया मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरेंस कोचिया मिलितिया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musty. Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम। वेल फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून हमारे सभी लिसनर्स को जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। 12:09 वेनसडे आफ्टरनून, प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। लंच ब्रेक हो या फिर ऑफिस का काम या फिर घर की हल्की सी आफ्टरनून लेजीनेस, जैसे भी आपने हमारे साथ ट्यून इन किया है, हम तो आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। आपकी इस वंडरफुल आफ्टरनून में हम घोलने वाले हैं प्यार का रंग। सो वेल, आपका फेवरेट प्रोग्राम, इट्स टाइम फॉर योर रेट्रो रिदम। अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मैं परी आपके साथ और लेकर चलेंगे आपको उन हसीन गानों की दुनिया में जहां मेलोडीज थी दिल से, लिरिक्स थे रूह से और हर गाना एक कहानी बयां करता था। कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स के साथ आपके म्यूजिकल हमसफर राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती साथ दे रहे हैं आप भी। तो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।
0: सो वेल फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए, मेमोरीज का वॉल्यूम अप करिए और यहाँ पर शुरू हो चुका है ये म्यूजिकल कारवां जहाँ पर लेकर चलेंगे आपको यादों की हसीन दुनिया में। अभी के लिए किशोर कुमार।

0: Daniel Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: रेट्रो रिदम।
1: एंड वेल, हम तो कहेंगे गाने पसंद के मुश्किल से मिलते हैं और मिल गए आपको राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, क्योंकि 12 से लेकर 2 बजे तक कोशिश यही रहती है कि इन पुरानी गलियों से आपके लिए वो खास यादें हम चुनकर लाएं जिनके साथ आपका एक स्पेशल कनेक्शन है। सो चलिए दोस्तों, 12:22 और मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स योर रेट्रो रिदम ऑन रेडियो मस्ती। साथ देते हुए हमारे सभी लिसनर्स, क्या बात है, धड़ाधड़ मैसेजेस 5499124 पर बन गया है दिल का कनेक्शन। आई नो ये जो गाने हैं वो सीधा, वो कहते हैं ना, एकदम राइट नोट को छेड़ते हैं। और अभी के लिए कोशिश यही है कि इन गानों के साथ आपके दिल को हम बहलाए रखें। ज्योति जी साथ दे रही हैं आप शाह तो बनारस से, गाना फॉर अंशनी, रेखा, सुरेखा, सभी मदद परिवार और हमारे नाम भी, थैंक यू सो मच। गाना आपके लिए भी एंड विशिंग यू अ लवली आफ्टरनून, लवली टाइम रेडियो मस्ती के साथ। और चलिए यहाँ पर कहते हैं हेलो रेडियो मस्ती, हम तो सुन रहे हैं आपको राइट नाउ और ओल्ड इज अ गोल्ड, हर एक गाना है खास, हर एक गाना स्पेशल, हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ पर आपका जो मैसेज है आधा अधूरा आया है, सो अगर आप चाहें यू कैन सेंड मी योर मैसेज ऑन व्हाट्सएप पर सेम नंबर 5499124, सो आपके जितने भी नाम हैं हम इनमें शामिल कर पाएं। साथ ही कहते हैं गानों को एंजॉय कर रही हूँ, फ्लक से आपका साथ निभा रही हूँ एंड वी नो आप कौन है, हमारी प्यारी सी झाना जी हमेशा साथ देती है काम करते हुए या फिर घर पर रिलैक्स करते हुए, साथ तो आप निभाती है ऑन रेडियो मस्ती। सो अभी के लिए जो अगला गाना है इसे डेडिकेट करेंगे आपके पूरे परिवार के नाम, बेटियाँ हैं रीमा, जनिता, श्रेष्ठा, अंशनी, सिल्विया और साथ में है यूवी, कृषि, शिव सरन परिवार फ्रॉम फ्लक। सो हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून, हैव अ वंडरफुल टाइम। भगवत विदेशी जी तायाक से साथ दे रहे हैं आप और कहते हैं रोमांटिक गाना हो जाए अनुषा खेतर मोतबास के साथ दे रही हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल होगा एक स्वीट सा गाना फॉर यू एंड फॉर योर स्पेशल समवन। साथ ही यहाँ पर साधना जी साथ दे रही हैं रिवेदा क्रियोल से और डेडिकेटिंग गाना फॉर ऑल अजीबन फैमिली और कहते हैं अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, ख्याल रखूंगी मैं, आप भी अपना ख्याल रखिए और रेडियो मस्ती पर साथ निभाते रहिए। सो वेल, यहाँ पर यलेश, हमारे स्वीट से यलेश साथ दे रहे हैं आप सूर्य नाम से एंड गुडी गुड विशेज हमारी पूरी एमबीसी टीम के नाम, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू यलेश, हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून सभी शाम परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। सो अगला गाना आपके नाम शाम देवीचरण, आप पेरीबे से साथ दे रहे हैं एंड लिसनिंग टू द प्रोग्राम राइट नाउ, फुल वॉल्यूम पर लगाया हुआ है हमारा प्यारा सा रेडियो स्टेशन। सो अभी के लिए नेक्स्ट ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम, नॉट टू फॉरगेट, रहेगा आपका इंतजार 5499124 पर परी का साथ ऑन रेडियो मस्ती टिल 2 PM।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.
2: And well, ladies and gentlemen, 70s, 80s and 90s का खूबसूरत म्यूजिकल गुलदस्ता आपके नाम. Best of the best right here on RM2 Radio Masti. It's time for your retro rhythm. अभी के लिए आपके दिल को धड़काने एक और खूबसूरत सा ट्रैक. फिल्म तो आपको याद ही होगी, yes, दिल फिल्म का ये गाना, माधुरी दीक्षित, आमिर खान, आवाजें उदित नारायण, साधना सरगम की. For everyone who's connected हमारे साथ, this one goes out for you.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

सो वेल फ्रेंड्स, कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके नाम एंड दिस इज अ स्पेशल वन. मन्ना डे साहब की आवाज के बाद इट्स टाइम आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज ही आप तक हम पहुंचाए विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. हजाई फिल्म का ये गाना कविता दासुंते जी हमारा साथ दे रही हैं दिफ्रे से, और ये गाना डेडिकेट करना चाहती हैं आपके सभी अपनों के नाम. मोहन, रेखा, अंबिका, प्रमिला, मालिनी और पति है श्याम और बेटी पूजा, रिया और बेटा आयुष, सभी के लिए प्यार एंड स्पेशल विशेस. सो वी हैव दिस गाना उनके नाम. कविता जी हमारा साथ दे रही हैं, आप कहते हैं दैट ये जो गाने हैं वो बस दिल को और भी हैप्पी फील करवाते हैं. सो कोशिश यही है कि इन गानों के साथ आपके मूड को हम सेट रखें. थैंक यू सो मच कविता जी, साथ रहेगा आपका हमारा ऑन रेडियो मस्ती और ऐसे ही प्यारे गाने आपके नाम. लंच टाइम में गानों को एंजॉय कर रही हैं ललिता जीतन जी. सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आपके नाम. हैव अ वंडरफुल टाइम एंड एंजॉय योर मील. तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ और साथ रहेगा आपका और मेरा ऑन रेडियो मस्ती. यही पुराने गाने जो दिल के हमेशा करीब रहते हैं. गाने भले ही पुराने हो जाए, एहसास हमेशा वही स्पेशल खास वाला. सो एवरीवन हूज कनेक्टेड हमारे साथ, आपकी इस आफ्टरनून को खास और स्पेशल बना रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती. एंजॉय दिस वन.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपका अपना रेट्रो रिदम. मैं हूँ परी आपके साथ और इन प्यारे गानों को आप तक पहुँचा रहे हैं और साथ में आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस. कहते हैं कि जाने क्या मुझसे जमाना चाहता है, मेरा दिल तोड़कर मुझे हंसाना चाहता है. जाने क्या बात झलकती है मेरे चेहरे से, हर शख्स मुझे आजमाना चाहता है. कमिंग फ्रॉम आकाश चेतन मनसुख, बॉम्बे से हमारा साथ दे रहे हैं. विशिंग अ लवली आफ्टरनून टू एवरीवन, डेडिकेटेड टू फॉर ऑल मनसुख परिवार. एंड थैंक यू सो मच आकाश, दैट वाज अ ब्यूटीफुल वन. लेकिन हमारी कोशिश तो यही है कि हम आपको आजमाएं नहीं और आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ऐसे ही बनाए रखें. विद दिस ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. उसके बाद रेट्रो रिदम कंटिन्यूज ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती. साथ रहेगा आपका और मेरा और खूबसूरत गाने कर रहे हैं आपका इंतजार. सो कहीं मत जाइए, स्टे वेल कनेक्टेड, स्टे वेल ट्यून्ड. फ्रॉम द फिल्म पुराना मंदिर, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, हमारे सभी लिसनर्स के नाम स्पेशल डेडिकेशन आप सभी के लिए.

0: टाइम चेक 1 PM देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 2022 में 48 मिलियन रुपए लागत के लिक्विफाइड सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार संदिग्ध महिला का कहना है कि उसे जाल में फंसाया गया है। इस महिला का नाम मारिया पेरेसुल्किना है, जो यूक्रेन से मॉरिशस पहुंची थी। उसने दावा किया कि जॉन माइक मोटेंगाल नामक व्यक्ति ने उसे बहलाकर जाल में फंसाया। सोमवार को अदालत में दिए गए बयान में उसने इन बातों का खुलासा किया। उसने यह भी बताया कि उसकी मुलाकात मोटेंगाल से बेल्जियम में हुई, जहां वो अपने देश से भागकर पनाह लेने गई हुई थी। जॉन माइक मोटेंगाल ने

0: उसे वाइन और जिन की बोतल का दावा करके उसे लिक्विफाइड ड्रग्स थमाया था। पर्यावरण पुलिस द्वारा देश के कोने कोने में अभियान तेज किए जा रहे हैं। अवैध तरीके से पर्यावरण में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। गुडलैंड्स में कचरे के ढेर में एक रिसीट से गुनहगार का पता लगाया जा सका। अन्य जगहों में भी लोगों को पकड़ा गया और 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ साथ उन्हें स्थल की सफाई करने का भी आदेश दिया गया है। विदेशी खबरों में थाईलैंड में वीजा के बगैर छुट्टियां मनाने की अवधि कम कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम उन दर्जनों देशों में शामिल हैं जिनके निवासियों को 30 दिनों से ज्यादा समय के लिए थाईलैंड में छुट्टियां बिताने के वास्ते वीजा की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए अर्जी देनी होगी। जुलाई 2024 से दुनिया के 93 देशों के पर्यटक ज्यादा से ज्यादा 60 दिनों की अवधि के लिए बिना वीजा ही वहां जा पा रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में ये अवधि कम कर दी जाएगी। इसका कारण सुरक्षा और वीजा स्कीम को लेकर मतभेद बताया जा रहा है। और लिबनान में हुए इसराइली हवाई हमलों में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 3 बच्चे शामिल हैं। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं जो एक ही इमारत में रहते थे। ईरान के प्रमुख के मारे जाने के बाद जवाबी हमलों के तौर पर ये मिसाइल दागे जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तय युद्ध विराम के बावजूद भी हिजबुल्ला और इसराइल के बीच हमले जारी रखे जा रहे हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रुई सुफ्लर मेबर्ग में इक्यासी साल की 81 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी मरियम अपिया जो भतू के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज सुपहर 3 बजे उनके बेटे राजकुमार बतू के मकान हुई सुफ्लर मेबर्ग से उठाकर दफनाने के लिए रिव्यादिक खयोल का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musty. Radio.

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती मस्ती।
2: सो वेल फ्रेंड्स, बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए। इट्स टाइम फॉर योर रेट्रो रिदम। 70s, 80s, 90s के कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके नाम। मैं हूँ परी आपके साथ 2 PM इस खूबसूरत कारवां को यहाँ पर हम आपके लिए सजा रहे हैं, आप भी साथ दे रहे हैं। तो आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

रेट्रो रिदम। सो वेल फ्रेंड्स, ये है आपका अपना रेट्रो रिदम 1:25। क्या बात है, ये जो स्लॉट है ना, ये ऐसा स्लॉट है जिसे हर कोई पसंद करता है, क्योंकि ये गाने ऐसे हैं जिन्हें हमने हमेशा से सुना है। बीट आर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, या फिर वो दौर जहां पर हम बड़े हो रहे थे और ये गाने हमेशा खास एंड स्पेशल रहे। सो एवरीवन हुज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल आफ्टरनून। विश्वानी दो मन साथ दे रही हैं आप वाकवा से और कहती हैं प्यारे प्यारे गाने हैं जो दिल को छू रहे हैं। साथ ही याद कर रही हैं बहन इंदिरा, शारदा और नीला, साथ में है प्रतिभा, शोभा और गीता, सभी के नाम एक स्वीट सा डेडिकेशन। एंड कहते हैं सिलेक्शन लाजवाब, मौसम गुड, लेकिन 10 डिग्री से 15 डिग्री पर पहुंचे हैं और आप है बेल्जियम में। प्रकाश वेती जी, दैट्स रियली नाइस। अभी के लिए तो आप विंटर्स एंजॉय कर रही हैं, और जैसे हमने कहा कि मॉरिशस में भी अब धीरे धीरे सर्दियों का एहसास शुरू हो चुका है। सो विशिंग यू अ गुड टाइम एंड थैंक यू सो मच, इतने प्यार से आप हमारा साथ दे रही हैं। अगला गाना आपके नाम, और साथ ही कहते हैं दैट हमेशा की तरह बारिश हो रही है, बरसाती मौसम में हमारे साथ कनेक्टेड है हमारी प्यारी सी अनीता जी, और कहती हैं बहन शोभा है, अनुराधा, लक्ष्मी, प्लीज उनके नाम एक स्वीट सा गाना, और सभी रेडियो मस्ती टीम के नाम, इट्स रियली स्वीट, थैंक यू जी, आपने इतने प्यार से याद किया है। सो गाना आपके नाम जरूर चलाएंगे, और कहते हैं वंडरफुल ट्रैक्स, दिल का आलम, कुछ खास याद आ गया था। वैसे कहते हैं ना कि गानों के साथ यादें तो बेशुमार होती है। सो रोशनी जी, यहाँ पर कोशिश यही है दैट ये जो गाने हैं आपकी स्वीट मेमोरीज को एक बार फिर ताज़ा कर दें।

0: और वेल कहते हैं दैट लेटे लेटे गानों को सुन रही हूँ और ऐसे ही गाने एंजॉय कर रही हूँ. दैट्स रियली स्वीट. सो थैंक यू सो मच जाना जी, आप भी साथ देते रहिए. मैसेजेस डेडिकेशंस 5499 1294.
1: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती.
2: Radio Musty.
3: Hits music only.
2: Feels a musty.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Behind every piece at Fab India, there's a pair of skilled hands. Artisans who weave, dye, print, and craft with passion, keeping centuries of tradition alive. Today, that craftsmanship is here for you to discover. Explore Fab India's handcrafted clothing and beautiful home pieces at Centerpoint Mall, Triano. Fab India, a celebration of craftsmanship.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: मेरे हीरो,
4: ये क्या करती?
3: मेरे जानो,
4: मुझे डर लगती है।
3: मेरे बालम,
4: तेरा भाई हमको मारती।
3: तुझे सलाम, मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम।
4: अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम।
3: तूने क्यों मुझे बचाया?
4: बस अपना फर्ज निभाया।
3: क्या तू कुछ भी कर जाता?
4: कर जाती।
3: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
4: अच्छा अच्छा, कर जाता।
3: मेरे लिए मर जाता?
4: हाँ मर जाता।
3: ओह माय गॉड,

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
1: Retro rhythm. तो चलिए अभी के लिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने हमारे स्वीट लिसनर्स के नाम जो हमेशा हमारा साथ देते हैं मॉर्निंग से लेकर रात तक. कोशिश यही रहती है कि इन गानों के साथ आपके दिल को हम बहलाए रखें. बीट ओल्ड सॉन्ग्स, बीट न्यू सॉन्ग्स, सब कुछ आपके लिए हम लेकर आते हैं बिकॉज ये है बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन RM2 रेडियो मस्ती. सो वेल, मैं हूं परी आपके साथ. इट्स 1:45 एंड कहते हैं ग्लूमी वेदर लेकिन मेस्मराइजिंग सॉन्ग्स ऑन ए एंजॉइंग दिस प्रोग्राम एंड एंजॉइंग द सॉन्ग्स. ये है फ्रॉम दारिन, श्वेता, रविश, प्रीशा, लवशाना पाडू परिवार रोशनवा से हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू जी, हैव अ वंडरफुल टाइम. एंड अगला गाना होगा आपके नाम. और चलिए यहाँ पर गीता जी हमारा साथ दे रही हैं. आप भी इट्स रियली नाइस, गानों को आप पसंद कर रही हैं, अच्छा लगा जानकर. अगला गाना होगा आपके नाम. एंड यहाँ पर पूर्णिमा जी साथ दे रही हैं, कहती हैं बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंजॉयिंग द शो, लवली सिलेक्शंस, दिल खुश हो गया गानों को सुनकर. और बस कोशिश यही है कि दिल की जो खुशी है वो हमेशा हम बनाए रखें. थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, फ्लोरियाल से साथ दे रही हैं. एंड आई डिड मिस यू, तो बस साथ निभाते रहिएगा, मैसेज भेजते रहिएगा. सो हैव अ ग्रेट टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. साथ रहेगा आपका और मेरा. और कुछ प्यारे गाने अभी भी कर रहे हैं आपका इंतजार. सो कहीं मत जाइए, स्टे वेल कनेक्टेड. ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: यस फ्रेंड्स, वन हिट आफ्टर अनदर, बिकॉज ये है आपका अपना रेडियो मस्ती। 153 इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर, जहां पर लेकर आएंगे कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स एंड बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स। टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। मैं हूं परी आपके साथ राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती। साथ रहेगा आपका और मेरा हर दिन के 4 बजे तक। सो कहीं मत जाइए, साथ निभाते रहिए। एंड अ ब्यूटिफुल ट्रैक गोज आउट आप सभी के नाम।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पड़ी, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मधुमक्खियां प्रकृति और कृषि दोनों में एक अहम भूमिका निभाती हैं। आज 20 मई को मनाए जा रहे विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने परागण करने वाली जीवों की सुरक्षा पर जोर दिया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें मधुमक्खी पालक, कृषि तकनीशियन और स्थानीय उत्पादक शामिल रहे। शहद उत्पादन, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के बीच मधुमक्खियों की भूमिका मौसस के लिए आज भी बहुत रणनीतिक बनी हुई है। देश के परिवर्तन के साथ कदम मिलाने के लिए ज्ञान पर ध्यान देना, ये उद्देश्य है नेशनल हायर एजुकेशन स्ट्रेटेजी 2025-2035 का, जिसकी लॉन्चिंग आज बालाक्लावा के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में की गई। जहां ये रणनीति 5 प्रमुख पहलुओं पर आधारित है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर शोध और नवाचार, जीवन भर सीखने, साथ ही वैज्ञानिक कूटनीति और डिजिटलाइजेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। मॉरिशस में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु की लगभग 9,92,500 लोग हैं। इनमें से 5,87,200 लोग आर्थिक रूप से सक्रिय है, यानी श्रम बल भागीदारी दर 59.2% है। देश में 33,000

0: 500 बेरोजगार दर्ज किए गए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है, 19,400 महिलाएं और 14,100 पुरुष। 16 से 24 वर्ष के युवा अकेले 11,700 बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि सेकेंडरी सेक्टर, खासकर उद्योग और निर्माण क्षेत्र के कर्मचारी सबसे अधिक काम करते हैं और 41.3 घंटे प्रति सप्ताह। विदेश में लबनान में हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 19 लोगों की जानें गई हैं, कई लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। और ईरान के प्रमुख के मारे जाने के बाद जवाबी हमलों के तौर पर ये मिसाइल दागे जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तय युद्ध विराम के बावजूद भी हेजबुला और इसराइल के बीच हमले जारी है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में शोक समाचार। रुसुफ्लर मेबग में 81 साल की 81 years old बीबी मरियम अपिया जिन्हें लोग भत्तू नाम से ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज सुपहर के तीन बजे इनके बेटे राजकुमार भत्तू के मकान रुसुफ्लर मेबग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दे क्रोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: More music in the mix.
3: आज आजादी है।
4: बॉम्बे टॉकीज़, रेडियो मस्ती,
5: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: So well, with this beautiful track का वेलकम हमारे सभी दोस्तों का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. म्यूजिक का अंदाज बदलता हुआ लेकिन आपके लिए प्यार तो वही एकदम बेशुमार वाला. तो जी हाँ दोस्तों, 2:08 हो रहे हैं. वेनसडे आफ्टरनून हमारे साथ कनेक्टेड है आप. सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूँ परी आपके साथ दिन के 4 तक आपका और मेरा साथ ऑन रेडियो मस्ती. साथ दे रहे हैं आप भी मैसेजेस डेडिकेशंस 5499 1294 पर.

0: बॉम्बे टॉकीज रेडियो मस्ती,
1: रेडियो मस्ती।
2: वेल दोस्तों, बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बात करते हैं एक्टर कार्तिक आर्यन, जो आज बॉलीवुड के उभरते सुपरस्टार में गिने जाते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर दंपति का बेटा होने के बावजूद और अपनी पीढ़ी के सबसे पॉपुलर सितारों में से एक बनने से पहले कार्तिक आर्यन की जिंदगी मुंबई में काफी संघर्षों से भरी रही। जी हाँ, शोहरत, सफलता और मजबूत बॉक्स ऑफिस पहचान से बहुत पहले एक्टर कथित तौर पर एक छोटे से शेयर किए गए अपार्टमेंट में कई अन्य स्ट्रगलर्स के साथ रहा करते थे और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश करा करते थे। गौरतलब है कि फिल्मी बैकग्राउंड या इंडस्ट्री कनेक्शन ना रखने वाले परिवार से आने वाले कार्तिक आर्यन मुंबई में कॉलेज के दिनों के दौरान ही चुपके चुपके ऑडिशन देने जाते थे। वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए शहर भर में ऑडिशन के लिए सफ़र करते थे और उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन करने के बाद ही अपने माता पिता को अपने एक्टिंग करियर के सपने के बारे में बताया। संघर्ष के दिनों में अपने माता पिता से पैसे लेने के बजाय अपना खर्च खुद संभालते थे और कार्तिक आर्यन ने एक सिंपल सा अपार्टमेंट लिया जिसमें कई स्ट्रगलिंग एक्टर्स उनके साथ ही अपार्टमेंट शेयर करते थे, जहां रूममेट्स रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां बांटते थे और कार्तिक अक्सर सबके लिए खाना बनाया करते थे। और दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड में सफलता मिलने के सालों बाद कार्तिक आर्यन ने उसी अपार्टमेंट को खरीद लिया जहाँ पर वो स्ट्रगलिंग डेज में रहा करते थे। सो ये तो है भाई शोहरत का सफर, जहाँ पर स्ट्रगलिंग से दिनों की शुरुआत हुई और स्ट्रगलिंग के

0: कहते हैं ना कि मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है, और इसके बावजूद ना कोई गॉडफादर ना कोई इंडस्ट्री कनेक्शन, इसके बावजूद जो नाम उन्होंने बॉलीवुड में बनाया है, सो हैट्स ऑफ कार्तिक आर्यन और उनके सभी फैंस। ये खबर थी आपके नाम और साथ ही यहाँ पर बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स भी आप तक पहुँचा रहे हैं। दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज, खबरें तो होती रहेंगी और साथ में होंगे कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स, कहीं मत जाइए, एंजॉय दिस वन।
1: RMT Radio Mastery.

0: Bombay Talkies Radio Musti
1: Radio Musti
2: मीका सिंह अजीज कौर की आवाजें टेकन फ्रॉम द फिल्म है जवानी तो इश्क होना है अपकमिंग फिल्म ऑफ वरुण धवन और उसी फिल्म का था ये गाना। चलिए दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं रेडियो मस्ती आपके लिए खास एंड स्पेशल हमेशा कुछ होता रहता है और काफी दिन से हम एक बात कर रहे हैं दैट आप जीत सकते हैं अ हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल। सो एमबीसी प्ले एंड मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड इज गिविंग लिसनर्स अ चांस टू विन अ हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल और इसके लिए आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपको बस डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0। ध्यान से सुनिए एमबीसी प्ले नहीं उसके बाद एमबीसी प्ले 1.0 क्योंकि जो पुराना वर्जन है वो बहुत ही जल्द फेज आउट होने वाला है इन जून। सो आपको डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0 और जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको एक रजिस्टर मैसेज मिलेगा ओटीटी मैसेज मिलेगा और रजिस्टर करने के बाद जब ये मैसेज आप तक पहुंचता है इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है और हमें भेज देना है ऑन 5499 1294 मंडे टू फ्राइडे। ये मैसेजेस आप हम तक पहुंचा सकते हैं ये स्क्रीनशॉट्स आप हम तक पहुंचा सकते हैं एंड एवरी डे हम एक लकी ड्रॉ करेंगे जहां पर विनर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द ग्रैंड लकी ड्रॉ जो होगा ऑन 29th ऑफ मे। सो इट्स वेरी सिंपल एमबीसी प्ले 1.0 आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट आएगा ओटीटी एमबीसी से आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है यानी कि जो मैसेज आप तक पहुंचता है उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें भेज दीजिए ऑन 5499 1294। आपका इंतजार रहेगा। वेल दोस्तों यहां पर आपको एक खास मौका मिल रहा है एक हेलीकॉप्टर राइड जीतने का और वो भी फॉर अ कपल। सो मेक इट स्पेशल फॉर यू एंड फॉर योर लव्ड वंस। बस सिंपल सा काम करना है एमबीसी प्ले 1.0 डाउनलोड कीजिए रजिस्टर कीजिए मैसेज आने के बाद स्क्रीनशॉट हम तक पहुंचाइए 5499 1294 पर। ऑल द बेस्ट
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: RM2 Radio Musti.
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
1: RM2
0: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
5: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
7: Time check, exactly 3 p.m. स्टूडियो में आगे पूजा उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार.
8: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार. समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं. मधुमक्खियां प्रकृति और कृषि दोनों में एक अहम भूमिका निभाती हैं. आज 20 मई को मनाए जा रहे विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने परागण करने वाली जीवों की सुरक्षा पर जोर दिया. इस अवसर पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें मधुमक्खी पालक, कृषि तकनीशियन और स्थानीय उत्पादक शामिल रहे. शहद उत्पादन, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के बीच मधुमक्खियों की भूमिका मॉरिशस के लिए आज भी बेहद रणनीतिक बनी हुई है. अफ्रीका के पास अपने पेंशन फंड और संस्थागत निवेशकों के माध्यम से बिलियन रुपये निवेश किए जाते हैं, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल महाद्वीप के विकास के लिए कैसे किया जाए, साथ ही कर्मचारियों की बचत की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए. सातवें अफ्रीका पेंशन फंड एंड रिटायरमेंट समिट में उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से ये एक था. बुनियादी ढांचे में निवेश, शासन और सार्वजनिक विश्वास के बीच ये भी उजागर किया गया कि मॉरिशस इलाकाई वित्तीय प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्रकार भूमिका निभा सकता है. देश के परिवर्तन के साथ कदम मिलाने के लिए ज्ञान पर ध्यान देना, ये उद्देश्य रहा नेशनल हायर एजुकेशन स्ट्रेटेजी 2025-2035 का, जिसकी लॉन्चिंग आज बालाक्रावा के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में लॉन्च की गई. ये रणनीति 5 प्रमुख पहलुओं पर आधारित है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर शोध और नवाचार, साथ ही वैज्ञानिक कूटनीति और डिजिटलाइजेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है. विदेश में भारत के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी और बदलते मौसम का असर लगातार देखने को मिल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय में शोक समाचार.
9: रुसुफ्लर में बग में 81 साल की, 81 years old, बीबी मरियम उपिया जिन्हें लोग भत्तू नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज सुपहर के तीन बजे इनके बेटे राजकुमार भत्तू के मकान रू सुफ्लर में बर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दे खोल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रोमेशन टूडे 3 PM. Avenue Bougainville, Tamaremé, 71 साल के, 71 years old, शिलालदेव जगरनोत जिन्हें लोग पार्टनर नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है. वे मोसलमोवियोस कास्कावेल के रहने वाले थे. इनकी अर्थी कल गुरुवार को दिन के 1:30 बजे इनकी बेटी करुणा जगरनोत रंजीब के मकान एवेन्यू बुगेनविल ये तमाहें से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। रॉयल रोड बोबासे में 70 साल की यशमती जसमती बिकारू पैदाशी नाम नरसिंह और जिन्हें लोग बालिका नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे एलियंसन रॉयल रोड बोबासन से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। नंबर 14 बी डाउविन एवेन्यू कैटरबोन में 92 साल की श्रीमती कामुशालाई रामंजुलू पैदाशी नाम हमसामी और जिन्हें लोग सरोजिनी नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके दामाद पीले मौदे विनेश के मकान नंबर 14 बी डाउविन एवेन्यू कैटरबोन से उठाकर सहमौते मोहोश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी फ्यूनरल टुमोरो 11 AM। और एक्स रेलवे रोड पेडागोचिया में 80 साल के श्री धनेश्वर सामुज जिन्हें लोग पोदीवन नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल सुबह 9:30 बजे इनके मकान एक्स रेलवे रोड अपदागुचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंस्ता सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो 9:30 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
10: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti. भैया इस 3 बजते ही बॉलीवुड की स्पॉटलाइट ऑन हो जाती है और फिल्मी दुनिया मशहूर हो जाती है। गर्मा गर्म खबरें लेकर मैं बिल्कुल सेट हूँ आपके लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए। हेलो, गुड आफ्टरनून। भाई कहीं किसी की मूवी ब्लॉकबस्टर बन जाती है, रेडी हो जाती है, तो कहीं किसी सेलिब्रिटी की लव स्टोरी वायरल हो जाती है। गॉसिप से होने वाले ग्लैमर भी होगा और म्यूजिक का लगाएगा तड़का ये लड़का। राइट, ट्रैफिक हो या ऑफिस का स्ट्रेस, इस एक घंटे में मूड हो जाएगा आपका बिल्कुल रिफ्रेश। तो बस तैयार हो जाएगी क्योंकि 3 से 4 के बीच में खबरें होंगी, वहीं पर एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा मसाला, लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला।
3: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
0: आज आजादी है बॉम्बे टॉकीज़,
1: रेडियो मस्ती।
2: रेडियो मस्ती।

0: नहीं भैया, ये जो लास्ट में क्या वो फिर से करना। आहा आहा, क्या करा है?
1: बॉम्बे टॉकीज, रेडियो मस्ती,
2: रेडियो मस्ती।
0: वैसे बहुत सारी एक्साइटिंग मूवीज आ रही हैं, और अभी बात करते हैं अबाउट ये कहानी है जवानी तो इश्क होना है, राइट? ये है पूजा हेगड़े और साथ में है वरुण धवन और साथ में मृणाल ठाकुर, नॉट टू फॉरगेट। भाई ऐसा कि लखनऊ पहुंच गए और अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, और वहां पर इतने सारे लोग आ गए, उन्होंने कहा कि भाई कब से खड़े हैं, कितने घंटे हो गए, लेकिन वरुण धवन पहुंचे खाली 5 मिनट के लिए। इन 5 मिनट की कीमत तुम क्या जानो राजेश बाबू? हाँ, लेकिन ये सच बात है कि 5 मिनट रुके और लोगों ने कहा कि हम तो 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, ये सही नहीं है, लेकिन करें तो क्या करें। पुलिस वालों ने कहा भाई ऐसा है कि काफ़ी क्राउड हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, आप जाइए। वरुण धवन ने कहा सॉरी मुझे जाना पड़ा, पुलिस ने मुझे बताया कि जाना ही बिल्कुल सही डिसीजन होगा। अब बताएं आपको है जवानी तो इश्क होना है, डायरेक्टेड बाय डेविड धवन, ऑल सेट टू इन द सिनेमा घर के अंदर 5 जून। फिल्म में एक बहुत ही एक्साइटिंग कोलैबोरेशन है और वो है डेविड धवन और वरुण की, यानी फोर्थ प्रोजेक्ट। मैं तेरा हीरो जुड़वा 2 कुली नंबर 1। अब देखते हैं एक्साइटमेंट में नंबर कितना पैसा ऐड करते हैं, और जितने सिनेगोर्स हैं वो अपनी तरफ से कमेंट्स क्या ऐड करते हैं। वी गोना कीप यू अपडेटेड।
3: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
1: आज आजादी है बॉम्बे टॉकीज़, रेडियो मस्ती,
2: रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

सो वेल फ्रेंड्स, जन कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ और आफ्टरनून टाइम। वैसे मौसम बाहर काफी बरसाती हो गया है, एकदम से मौसम में चेंज। वैसे सर्दी तो अब धीरे धीरे फील होने लगी है, लेकिन अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लाउड्स छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश कुछ जगहों पर हो रही है। आपके वहाँ मौसम का क्या हाल है? डू लेट मी नो 5499-1294 पर। सो वेल फ्रेंड्स, हरियाणवी डांसर सपना चौधरी अपनी पर्सनल लाइफ और को लेकर काफी चर्चाओं में रहती है। वैसे तो अपनी पर्सनल लाइफ वो बहुत ज्यादा प्राइवेट रखने में मानती है। सपना ने सिंगर वीर साहू संग 24 जनवरी 2020 में शादी की थी और उनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी और सपना ने इसके कुछ समय तक इसे छुपाकर रखा था। जब वो पहले बेटे की मां बनी तब उनकी शादी की खबरें सामने आई और अब सपना ने अपनी शादी को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि वीर संग उनकी शादी कैसे चल रही है। सपना ने बताया कि प्यार जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हम पति पत्नी अच्छे हैं। और ये हम जानते हैं कि जो हरियाणवी सॉन्ग्स गाए हैं सपना चौधरी ने, वो बॉलीवुड में भी काफ़ी फेमस रहे और बहुत सारी फिल्मों में हमने उनके गानों के वर्जन्स देखे हैं। सो बता दें आपको दैट एक इंटरव्यू के दौरान कर्ली टेल्स के साथ बातचीत के दौरान सपना चौधरी ने बताया कि मैं पत्नी और वो एक पति है, मैं बहुत अच्छे से रिश्ता निभा रही हूँ और वो भी बहुत अच्छे से अपना रिश्ता निभाते हैं। लेकिन आप इसमें ये पूछेंगे कि प्यार फील हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हम दोनों अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और आज तक वो प्यार कहाँ छुपा हुआ है ये मुझे पता नहीं चला। यानी कि प्यार जैसी फीलिंग तो नहीं है, लेकिन येस, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ वी आर वेरी गुड। लेकिन ये कहना क्या चाहती थी, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि रिश्ते में प्यार नहीं है, लेकिन अच्छे हस्बैंड वाइफ है। सो आई गेस कि जो रिश्ता निभाने का तरीका है सबका अपना अपना होता है। सो यहाँ पर ये कहना था सपना चौधरी का। लेकिन दोस्तों, आपके साथ हमारा रिश्ता हम बहुत प्यार से निभाते हैं और कोशिश यही रहती है कि नए हो या फिर पुराने, गाने कुछ ऐसे चलाएं जो आपका मूड हमेशा सेट रखे। सो वेल, सपना चौधरी की बात हुई और ये गाना भी हुआ था वेरी पॉपुलर, बॉलीवुड में नजर आया, लेकिन जहां पर उनकी आवाज नहीं, आशीष कौर की आवाज नजर आई। लेकिन यस, अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, हरियाणवी सॉन्ग जो हमने सुना इन बॉलीवुड मूवी एंड ऑल्सो काफी सारे इंडी पॉप में इसके वर्जन हमने सुने हैं। चलिए अभी के लिए ये गाना आप सभी के नाम जो साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम पूजा के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको पूजा।
1: नमस्कार रिया, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अफ्रीका के पास अपने पेंशन फंड और संस्थागत निवेशकों के माध्यम से बिलियन रुपए निवेश किए जाते हैं, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल महाद्वीप के विकास के लिए कैसे किया जाए, साथ ही कर्मचारियों की बचत की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। सातवें अफ्रीका पेंशन फंड एंड्रिटायरमेंट समिट में उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से ये एक रहा। बुनियादी ढांचे में निवेश, शासन और सार्वजनिक विश्वास के बीच ये भी उजागर किया गया कि मॉरिशस इलाकाई वित्तीय प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्रकार भूमिका निभा सकता है। मधुमक्खियां प्रकृति और कृषि दोनों में एक अहम भूमिका निभाती हैं। आज मनाए जा रहे विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने जीवों की सुरक्षा पर जोर दिया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें मधुमक्खी पालक, कृषि तकनीशियन शामिल रहे। शहद उत्पादन, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के बीच मधुमक्खियों की भूमिका मॉरिशस के लिए आज भी बहुत रणनीतिक बनी हुई है। पुलिस एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण पुलिस द्वारा देश के कोने कोने में अभियान तेज किए जा रहे हैं। अवैध तरीके से पर्यावरण में कचरा फेंकना या फिर गुडलैंड्स में कचरे के ढेर में एक रिसिप्ट से ही गुनहगार का पता लगाया जा सकता है। अन्य जगहों में भी लोगों को पकड़ा गया और 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ उन्हें स्थल की सफाई करने का भी आदेश दिया गया। विदेश में उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में तापमान लगातार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हालात और गंभीर होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और में गर्म रातों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

गुड आफ्टरनून सभी को। शाम के 4:07 हो चुके हैं और वेंसडे की शाम लेकर आ गया है रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती। कहीं ऑफिस के लाइट्स अभी ऑन है, जी हाँ, यानी कि आप ऑफिस से निकले नहीं है। कोई लास्ट मेल सेंड कर रहा है, कोई बॉस को जस्ट 5 मिनट्स बोल रहा है और कुछ लकी लोग ऑलरेडी गाड़ी में बैठ कर घर की तरफ निकल चुके हैं। सो चाहे आप स्टीयरिंग पकड़े हुए हो, बस की विंडो से बाहर देख रहे हो या अभी भी डेडलाइंस को हैंडल कर रहे हो, रेडियो मस्ती आपके साथ है 24/7। आज की शाम बहुत ही सिंपल है, नो स्ट्रेस नो टेंशन, सिर्फ एनर्जेटिक बीट्स, फील गुड मेलोडीज और नॉन स्टॉप म्यूजिक थेरेपी जो हम हमेशा लेकर ही आते हैं आपके नाम।

0: सो आपसे हम कहेंगे कि वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, वेंसडे को बना देते हैं वंडरफुल वेंसडे। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। वैसे हमने शुरुआत कर दी है अंबर सरिया गाने के साथ और इसे हम कैरी ऑन करेंगे बहुत ही खूबसूरत गानों के साथ। दिस इज योर अफ्तार वाइब्स रिया के साथ है। एंड यस, आपके डेडिकेशन, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
1: Radio Masti.

0: आई एम श्योर कि कभी तो आपने नोटिस तो जरूर किया होगा कि 4 बजे के बाद का जो समय है सबसे इंटरेस्टिंग होता है। माइंड ऑलरेडी घर पहुंच चुका होता है लेकिन बॉडी अब भी ऑफिस में होती है। कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे प्लानिंग चल रही होती है कि आज डिनर में क्या हम बनाएंगे, ट्रैफिक का कितना होगा और घर पहुंचते ही चाय मिलेगी या नहीं। अगर आप भी मेंटली लॉग आउट कर चुके हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप ऑफिशियली रफ्तार वाइब्स मोड में एंटर कर चुके हो और अब काम सिर्फ एक ही है कि म्यूजिक आप सुनो, स्ट्रेस को स्लो डाउन करो और स्माइल को फास्ट फॉरवर्ड करो। अगला गाना बहुत ही खास है और हम अक्सर ये गाना चलाते हैं टू ऑल आवर लिसनर्स डेडिकेटेड। हमें पता है आपको बहुत ही पसंद है ये गाना, तो हम ज़रूर ये हमारे सभी लिसनर्स के नाम चलाएंगे एंड ये सबके डेडिकेशंस मैसेजेस ये हम ज़रूर वापस लेकर आएंगे थोड़ी ही देर में। एंजॉय दिस वन।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2,
1: रेडियो मस्ती।

0: Sports news, latest updates.
1: Sports news.
2: Radio Musty in the mix.
3: साढ़े चार बज रहे और इस टट्टी की खराबी की ओर के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और चलिए अभी हम स्पोर्ट्स जगत में हो गया रहा है ये सब सुनते हैं। अरविंद आ चुके हैं स्टूडियो में, तो उनका हम स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून आपको अरविंद।
4: गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून आरएम टू लिसनर्स। आर्सेनल के फैंस जश्न मना रहे हैं और खिलाड़ी फैंस एमिरेट्स में सुबह 5 बजे तक मौज मस्ती करते रहे। क्यों ना करें, उनकी टीम 22 साल बाद आफ्टर 22 इयर्स चैंपियन बनी, और वो भी जब मैनचेस्टर सिटी ने बोर्नमुथ के खिलाफ अपना मैच ड्रॉ किया। 22 साल का इंतजार समाप्त। अब कहते हैं ना कि द वेट इज वर्थ इट। अब क्यों नहीं, अभी 23 मई को चैंपियंस लीग फाइनल है पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ। ये जीत गए तो सोने पे सुहागा, इस पर चर्चा करेंगे। और अभी स्थानीय तौर पर आज युवा एवं खेल मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इसमें स्पोर्ट्स को लेकर कहा गया कि नेशनल इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन आयोजित की जाएगी और साथ साथ में नेशनल कॉम्बैट स्पोर्ट्स गेम्स, रीओपनिंग ऑफ स्विमिंग स्कूल्स, फिर नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जो फीफा वर्ल्ड कप थीम के अंतर्गत होगा। और ये भी कहा गया कि स्पोर्ट्स बिल फाइनलाइज हो गया है, बहुत जल्द उसे पार्लियामेंट में लाया जाएगा। बैक टू फुटबॉल, यूईएफए यूरोपा कप का फाइनल आज खेला जाएगा। ये है फ्रीबर्ग और अस्तुन विला के बीच। ये मैच खेला जा रहा है टर्की में, और जो जीतेगा वो तो चैंपियंस लीग में जाएगा ही। अस्तुन विला तो पहले से ही चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई है, जबकि फ्रीबर्ग क्वालिफाई हो सकता है अपने इतिहास पर पहली बार के लिए ये यूरोपा लीग में जाकर। वैसे बता दें कि अस्तुन विला ग्रुप स्टेज में दूसरी पोजिशन पर आया था, जबकि फ्रीबर्ग की टीम नीचे से काफ़ी नीचे से ऊपर आया और दे वेंट ऑल द वे टू द फाइनल। फ्रीबर्ग जो 7वें स्थान पर आया था ग्रुप स्टेज में। सेमीफाइनल में आपको याद होगा अस्तुन विला ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 4-1 से हराया था ऑन एग्रीगेट, जबकि फ्रीबर्ग ने ब्रागा को हराया था 4-3, 3-1 वाला मैच जीतकर ऑन एग्रीगेट 4-3। सो आज अस्तुन विला वर्सेस फ्रीबर्ग।

0: ये है यूरोपा लीग का फाइनल, इसके बाद कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल होगा 27 को, और 30 मई को द बिग वन ला कूप ओ ग्रैंड ओरेल, ये है यूरोपियन चैंपियंस लीग का फाइनल, ये होगा आर्सेनल और पेरी सेंट जर्मेन के बीच। आपको याद होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले मैच में एक विवादास्पद गोल आया था, मार्कस कुन्हा का गोल, ब्रायन एम्बुमो के हाथ से लगकर ये गोल बना था। रेफरी माइकल सालिसबरी ने गोल को जायज समझा था, यानी उसको इनकार नहीं किया, डिसअलाउ नहीं किया था। अब इसको लेकर प्रोफेशनल गेम मैच ऑफिशियल्स लिमिटेड PGMOL ने कहा कि उसे डिसअलाउ करना चाहिए था। इन बात को देखते हुए अब सालिसबरी, जो 13 प्रीमियर लीग मैच ऑफिशिएट कर चुका है इस सीजन, संडे को जो 10 मैच होंगे उसमें नहीं होगा, और जेम्स बेल को चुना गया है वा फुलहम वाला मैच जो होगा न्यूकासल यूनाइटेड के लिए, भले ही उस पर क्रिटिसिज्म था पर नहीं बच पाया सालिसबरी, जो इस सप्ताह के मैचों में आराम करेगा। क्रिकेट की बात करें, चारों तरफ वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया जा रहा है कल के मैच के प्रदर्शन के बाद। वैभव सूर्यवंशी अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ के द्वार पर ले आया है, लेकिन अभी तक ये टीम क्वालिफाई नहीं हुई है। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। आपको याद दिला दें कि 4 टीमें क्वालिफाई होंगी प्लेऑफ के लिए। अभी राजस्थान रॉयल्स की टीम चौथे पोजीशन पर है, पर पंजाब किंग्स 13 अंक के साथ 1 अंक पीछे और चेन्नई सुपर किंग्स 2 अंक पीछे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद, ये सब टीमें क्वालिफाई हो गई हैं फॉर द प्ले ऑफ। सो दीज आर द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। भूलिएगा नहीं, विल बी बैक विद द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप ग्रुप प्रेजेंटेशन।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: मेगा प्रोमो कोड क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपीए सेल्स लो ग्रानिट एंड क्वार्ट्ज, प्री कासे लो लावो ला लिनियर मॉडर्न प्री सोक लो डोज अबान प्री की पुफे ओ मेम गाय पा को डेकोरेशन पुर ला काज ऑन डन ऑन डेओ सैनिटेयर लेविए गाजन आर्टिफिशियल एनफिन इट्स टू पुर प्लीस रेंसेनमेंट चेक पेज फेसबुक क्वालिटी देखो।
3: You're listening to RM2, a Radio Masti.
4: Get ready for the biggest World Cup ever!
5: 2026 FIFA World Cup.
4: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. Radio Masti की टीम के साथ चलिए United States, Canada और Mexico.
0: स्पेन, केप वर्दे, सऊदी अरेबिया और यूरुग्वे। इसमें 15 जून से 26 जून तक ग्रुप स्टेज के मैच खेले जाएंगे। अ यूनिक ब्लेंड ऑफ हैवीवेट फुटबॉल जायंट्स, सीजन टूर्नामेंट रेगुलर्स एंड हाईली एंटिसिपेटेड टूर्नामेंट डेब्यूटेंट। स्पेन की टीम 17वीं बार के लिए 17th वर्ल्ड कप अपीयरेंस, ला रोका फेमसली उनका नाम है। 2010 में उनकी जीत हुई थी और मैसिव मोमेंटम के साथ रेनिंग कॉन्टिनेंटल किंग्स के साथ आ रहे हैं, क्योंकि यूईएफए यूरो 2024 स्पेन ने ही जीता है। इस टीम में है 18 साल का बार्सिलोना का फेनोमिनल खिलाड़ी लामिन यमाल, जो इस टूर्नामेंट का एक ब्रेकआउट स्टार होकर रहेगा, और साथ में है मैनचेस्टर सिटी का वर्ल्ड क्लास डिफेंसिव मिडफील्डर रोड्री, जो इस टीम का हार्ट बीट माना जाता है। उधर यूरुग्वे की टीम 15वें टूर्नामेंट में है। ला सेलेस्टे, जो पहला वर्ल्ड कप जीत पाया था 1930 में और रिपीट किया था 1950 में, अभी आइकन मार्चेलो बियेलसा का कोच हैं और फिर से एक एलीट स्टेटस बनाना चाहते हैं। 2022 में ग्रुप स्टेज में ही आउट हो गए थे। इस टीम में है फ्रेडेरिको वाल्वेर्दे और सपोर्टेड बाय रोनाल्ड ओरोहो। सऊदी अरब 7वीं बार के लिए 7th पार्टिसिपेशन, बेस्ट फिनिश इनका था राउंड ऑफ 16 1994 में, और उन्होंने एक अपसेट भी किया था, ग्रेटेस्ट अपसेट्स इन फुटबॉल हिस्ट्री 2022 में, जब डिफेंडिंग

0: eventual champion Argentina को हराया था, यानी they defeated the eventual champion Argentina group stage में. और सभी को पता है Argentina went all the way to win the World Cup. इसमें कुछ खिलाड़ी हैं जैसे सलेम अल दरसारी और एर्वे रेना इस टीम का मैनेजर हैं. केप वर्दे पहली बार के लिए ऑफिशियली फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू, और ये कफ ग्रुप डी में ग्रुप विनर बन के आया है. इसमें रायन मेंडेज नाम का 36 साल का वेटरन खिलाड़ी हैं, देश का ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर. स्ट्राइकर डेलन लिब्रामेंटो भी हैं इसमें. तो ये ग्रुप, इस ग्रुप में अगर देखा जाए फेवरेट हैं क्वालिफाई होने के लिए स्पेन और यूरुग्वे, पर सऊदी अरब और डेब्यूटेंट के वर्दे से बच के रहना होगा.
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: राइट, घर मिलाते चलिए पौने पाँच बज रहे हैं और आप सुन रहे हैं रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती। वेल, आपको तो पता ही है कि हम गानों के साथ साथ हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर ही आते हैं आप सभी के नाम। एंड दिस टाइम इट्स अ वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो लेकर आए हैं MBC प्ले और मर्शस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। So you can win a helicopter ride for a couple. Socho Mauritius ka stunning aerial view, clouds pe upar romantic experience, so wo bhi absolutely free. Aur honestly aapko batau that subah se hame bahut sare screenshots mil rahe hain. Listeners already participate kar rahe hain, to aap bhi piche mat hatiye. चलिए हम आपको बता देते हैं स्टेप्स फिर से। स्टेप वन, आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है न्यू MBC प्ले 1.0 ऐप। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप MBC प्ले 1.0 ही डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जो ओल्ड वर्जन है ये बहुत ही जल्द फेज आउट हो जाएगा। और स्टेप टू, आप इस ऐप को ओपन करके रजिस्टर करिए। एंड देन स्टेप थ्री, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको MBC OTT की तरफ से एक मैसेज मिलेगा, उस मैसेज में आपका नाम होगा। एंड स्टेप फोर, उस मैसेज का स्क्रीनशॉट आप लीजिए और व्हाट्सएप कीजिए हमें ऑन 5499-1294 व्हाट्सएप पर, ऑन 5499-1294। बस ये ही आपको करना है और एंट्री कंप्लीट। तो बस आप इतना सा कर दीजिए। एंड लेट मी टेल यू वन सेकंड दैट सुबह से इतने लोगों के स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी गाइस। तो फोन आप उठाइए और डाउनलोड कीजिए MBC प्ले 1.0। ये भी आपको हम बता देते हैं दैट 5:30 के बाद हम आपको बताएंगे हु आर द शॉर्टेस्टेड वंस फॉर टुडे। सो स्टे राइट ट्यून्ड।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
1: Radio Musti.

शाम की 5:10 हो चुके हैं और रफ्तार वाइब्स का सेकंड आवर शुरू हो रहा है यहाँ रेडियो मस्ती पर। वैसे आज का मौसम भी कुछ अलग सा फील दे रहा है, थोड़ी सी ठंडी हवा, हल्का सा ग्लूमी स्काई है, जैसे नेचर खुद वॉल्यूम लो करके स्लो म्यूजिक सुनना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसे मौसम में फास्ट बीट्स नहीं बल्कि सॉफ्ट मेलोडीज बिल्कुल ज्यादा टच करती है। ऑफिस से घर का सफर हो, विंडो के बाहर गिरती हल्की सी रोशनी हो और बैकग्राउंड में सूदिंग गाने, बस वही वाइब लेकर आ रही है इस आवर में आपके लिए। तो आपसे हम कहेंगे टू रिलैक्स, अभी स्पीड आप थोड़ी स्लो कर दीजिए। आई थिंक अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो स्पीड स्लो ही होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकंड आवर जहाँ पर सॉफ्ट सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स का ब्यूटीफुल सफर शुरू होने वाला है। ये है रफ्तार वाइब्स रिया के साथ और अगला गाना बहुत ही खूबसूरत है, परफेक्ट फॉर दिस मौसम।

0: l'occasion lancement MBC Play, prépare-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir la chance des grands gagnants pour un pot d'étiquette de chacun pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et créez un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voyer un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la sens, participez dans grand final le 29 mai. MBC Play, avec vous, partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
1: राइट 5:33 और अब समय आ गया है आज के शॉर्ट लिस्टेड विनर्स का. लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन व्हाट इट्स ऑल अबाउट. सो इट्स अ गिव अवे ब्रॉट टू यू बाय MBC Play एंड मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड. सो बेसिकली हम सवेरे से आपको बता रहे हैं दैट आपको क्या करना है. आपको डाउनलोड करना है न्यू MBC Play 1.0 ऐप और इसके बाद आप आपको ओपन करके रजिस्टर करिए और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको MBC OTT की तरफ से एक मैसेज मिलेगा. उस मैसेज में आपका नाम होगा. फिर उस मैसेज का स्क्रीनशॉट आप लीजिए और व्हाट्सएप पर हमें भेज सकते हैं 5499-1294.

0: सो यस, हम बता रहे थे आपको कि हम सवेरे से ये सब आपको बता रहे थे और बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी मिले हमें. और जैसे कि हमने आपको बताया था अर्लियर दैट आज के ड्रो में दो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे लिसनर ने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया, इसलिए आज हमारे पास सिर्फ एक शॉर्टलिस्टेड पार्टिसिपेंट है जो अभी हमारे साथ लाइन पर है. और फाइनल तक पहुंचने के लिए सिर्फ कॉल रिसीव करना ही काफ़ी नहीं है, फाइनल ड्रॉ में एंट्री के लिए आपको एक सवाल का सही जवाब भी देना होगा. तो चलिए बिना डिले के मिलते हैं हमारे आज के एक शॉर्टलिस्टेड विनर से. एंड नाम है आपका मिसेस सुविधा गंगाराम जी. हेलो जी, नमस्ते आपको.
1: नमस्ते,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ.
0: चलिए सुविधा जी, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेशंस कह लेते हैं दैट आपने पार्टिसिपेट किया, स्क्रीनशॉट भेजी व्हाट्सएप पर, और इसके चलते आप शॉर्टलिस्टेड नेम आज के लिए बन सकती है. सो इससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और सवाल बहुत ही आसान है, सो आप ध्यान से सुनिए. नेम वन प्लेटफॉर्म वेयर एमबीसी प्ले कैन बी डाउनलोडेड. ऐप स्टोर. आप प्ले स्टोर, बहुत ही सही जवाब आपने दिया है. सो कंग्रेचुलेशंस आपको. Thank और you. अभी तो हम आपको बता देते हैं दैट आप ऑफिशियली बन चुकी हैं हमारी आज का शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट. एंड कंग्रेचुलेशंस, आप सीधा क्वालिफाई हो चुकी है फॉर द ग्रैंड फाइनल ड्रॉ के लिए, जहां डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा वो अमेजिंग हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल ब्रॉट टू यू बाय एमबीसी प्ले और मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड. लेकिन अगर आज आपका नाम नहीं आया, हमारे बाकी लिसनर्स से कह रहे हैं, तो टेंशन आप बिल्कुल ना ले, क्योंकि आज तो हमारी लकी विनर नहीं बट शॉर्टलिस्टेड नेम बन गई है सुविधा जी. एंड शायद कल आपकी बारी भी हो सकती है. सो कीप पार्टिसिपेटिंग. इसके लिए डाउनलोड करना ना भूले एमबीसी प्ले 1.0. रजिस्टर कीजिए, एमबीसी ओटीटी से आने वाले मैसेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कीजिए हमें ऑन 5499-1294. हर स्क्रीनशॉट एक चांस है और हर चांस आपको ले जा सकता है स्काई के ऊपर. रेडियो मस्ती के साथ पार्टिसिपेट करते रहिए, क्योंकि अगला शॉर्टलिस्टेड नाम आपका भी हो सकता है.
2: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
3: RM2,
2: रेडियो मस्ती.

0: fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: राइट, अब समय हो गया है आज का फैशन टिप ब्रॉट यू बाय अलकोरी फैशन, जहां मिलता है स्टाइल, कंफर्ट और लेटेस्ट ट्रेंड्स एक ही जगह है। सो आज का फैशन टिप स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहते रहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल कपड़े नहीं हैं, एंड शायद आपके पास कपड़े हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आउटफिट आइडिया आपको नहीं मिलता है। सिंपल रूल आप याद रखिए कि लेयरिंग इज द सीक्रेट ऑफ स्मार्ट ड्रेसिंग। वेदर थोड़ा ग्लूमी हो, थोड़ी ठंड फील हो रही हो जैसे आज का मौसम, तो हैवी स्वेटर ज़रूरी नहीं है। इंस्टेड आप ट्राई कर सकते हैं लाइटर लेयरिंग। लेडीज़ के लिए एक सिंपल कुर्ती या टॉप के साथ लाइट श्रग, लॉन्ग जैकेट या सॉफ्ट स्टॉल आप ऐड कर सकते हैं। इंस्टेंटली आउटफिट स्टाइलिश भी लगेगा और कम्फर्टेबल भी रहेगा। और हमारे जो जेंट्स हैं, इनके लिए प्लेन शर्ट प्लस स्मार्ट जैकेट या लाइट वेट ब्लेजर, इवन बेसिक जीन्स आउटफिट भी क्लासी इवनिंग लुक बन जाता है। और एक बोनस टिप यहाँ पर कि न्यूट्रल कलर्स जैसे बेज, ब्लैक, नेवी या पेस्टल शेड्स इजीली मिक्स एंड मैच हो जाते हैं, मतलब कम कपड़ों से ज़्यादा लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। वेल, फैशन का मतलब एक्सपेंसिव होना नहीं, फैशन का मतलब है स्मार्ट स्टाइलिंग। तो नेक्स्ट टाइम वॉर्डरोब ओपन करें, सिर्फ कपड़े मत देखिए, कॉम्बिनेशंस इमेजिन कीजिए। ये था आज का फैशन टिप ब्रॉट टू यू बाय अलकोरी फैशन, योर डेस्टिनेशन फॉर स्टाइलिश एवरीडे वेयर और स्पेशल ओकेजन आउटफिट्स। अब चलिए स्टाइल और म्यूजिक दोनों कंटिन्यू करते हैं रेडियो मस्ती पर।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय अलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

वेडनेसडे की शाम धीरे धीरे बहुत ही रंगीन हो रही है, और रंगीन कैसे ये हम आपको बताएंगे इन गानों के जरिए। वी हैव गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स यहाँ पर डेडिकेटेड टू यू पीपल जो हमारे साथ है, कनेक्टेड है सिंस लॉन्ग, और यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं यहाँ पर, तो चलिए हम एक दो देख ही लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दारन, स्वीटा, रवीश, प्रीशा, लवीशा एंड अबाडू परिवार जो रोशनवा से है, हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इतना सारा प्यार। ज्योति जी शादो बनारस से है आप, और नेक्स्ट गाना आप डेडिकेट करती है वो आशनी, रेखा, सुरेखा एंड द होल माधव परिवार, साथ ही हमारे लिए भी। थैंक यू सो मच ज्योति जी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, और ज़रूर हम नेक्स्ट गाना आपके नाम और आपके पूरे परिवार के नाम ज़रूर डेडिकेट करेंगे। भावना सितल हमारे साथ जुड़ी हुई है और डेडिकेटिंग रोमांटिक सॉन्ग फॉर हबी अरविंद, और बेटी है जसवीर और तुस्यवीर, बहुत ही प्यारा नाम है, और उनको कहना चाहते हैं दैट दे आर योर होल वर्ल्ड, और उनसे आप बहुत बहुत प्यार करती है। ये प्यार भरा मैसेज आई होप कि उन तक पहुंच गया हो, और एक खूबसूरत गाना उनके नाम ज़रूर चलाएंगे। प्रवीण हमारे साथ है जुड़े हुए हैं, और आपकी लवली वाइफ काजल के नाम नेक्स्ट ट्रैक जाता है। चलिए करिश्मा जी के नाम भी हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करेंगे, और बदवाग विदेशी जी हमारे साथ कनेक्टेड है, अनुषा के नाम गाना रिक्वेस्ट कर रही है, राइट चलाएंगे। दैट्स कमिंग ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी जिस्म। आई एम श्योर कि आपने गेस कर ही लिया होगा कि हम किस गाने के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल वन, आपको बहुत ही पसंद आएगा। एंड ऑल्सो हमारे साथ जुड़ी हुई है ललिता जीतन जी जो अभी खाना बना रही है और साथ में रेडियो मस्ती के गाने एंजॉय कर रही है। नेक्स्ट ट्रैक हमारे लिए, थैंक यू सो मच ललिता जी, दैट्स स्वीट। एंड यहाँ पर ऑल्सो एक मैसेज आया है एंड नाम तो आपने लिखा, बट थैंक यू फॉर द अमेजिंग प्ले लिस्ट, थैंक यू सो मच। हमारे साथ ऐसे ही आप हमेशा कनेक्टेड रहिए, वी हैव गॉट ये ब्यूटीफुल ट्रैक्स सिर्फ आप लिसनर्स के नाम ही। एंड हमारे साथ ऑल्सो साधना जी जुड़ी हुई है, आप है अभी ख्याल से, और नेक्स्ट गाना जीवन परिवार के नाम आप रिक्वेस्ट कर रही है, और राइट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी के नाम नेक्स्ट गाना।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's

0: नमस्कार, आप सभी को समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं आज की सुर्खियां। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच मॉरिशस में रिपो रेट यानी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है। बैंक ऑफ मॉरिशस की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने इसमें 0.25% की वृद्धि करते हुए इसे 4.50% से बढ़ाकर 4.75% कर दिया है। मॉरिशस में 2021 से 2025 के बीच 650 से अधिक किशोरों को नशीली पदार्थों से जुड़ी समस्याओं के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती करना पड़ा। राष्ट्रीय सभा में कल मंत्री अविनाश रामतोहल ने कहा कि ये बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय है और इसके लिए अधिक लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। प्रकृति के संतुलन में मधुमक्खियों की भूमिका बेहद अहम। आज विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने रेजी में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया, जहां मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत में भीषण गर्मी, उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सूरज जैसे आग बरसा रहा है। दिल्ली में तापमान 44 डिग्री तक पहुँच गया है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में बढ़ते दबाव के बीच मॉरिशस में ब्याज दरों में बढ़ोतरी लाई गई है। बैंक ऑफ मॉरिशस की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने रिपो रेट में 0.25% की वृद्धि करते हुए इसे 4.50% से बढ़ाकर 4.75% कर दिया है। समिति का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासकर मध्य पूर्व संकट के संभावित आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए मॉरिशस अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। एसामग्ला की आगामी समीक्षा से पहले बालाक्लावा में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। निजी क्षेत्र, सरकारी संस्था और नियामक विभाग ने मिलकर इस बात पर चर्चा की कि कानून सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे बल्कि जमीनी स्तर पर भी उसके ठोस परिणाम दिखाई दे। दासा पलासोमी, यचना मिश्रा।
1: इस अमलाक द्वारा किए जाने वाले पारस्परिक

0: मूल्यांकन के करीब आने के साथ उम्मीदें मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित हैं कि स्थानीय संस्थान मनी लॉन्डरिंग और आतंकवाद की फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ाई में वास्तविक प्रभावशीलता दिखाने में कितने सक्षम हैं। प्रभावशीलता केवल सरकार के प्रयासों से हासिल नहीं की जा सकेगी, बल्कि इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को एक साथ लाना होगा। तैयारी के लिए क्या करना चाहिए ताकि कानून का सही तरीके से पालन किया जाए, जिनसे ठोस परिणाम सामने आएंगे। सभी देशों के लिए परीक्षा कठिन है, क्योंकि इस बार प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा रहा है। क्या प्रणाली प्रभावी तरीके से काम कर रही है या नहीं। पिछले मूल्यांकन के बाद से कई नई अपेक्षाएं जोड़ी गई हैं और 7 देशों पर मूल्यांकन किए जा रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि मॉरिशस को कैसी तैयारी करनी पड़ेगी। इस बैठक में अपेक्षित ठोस परिणामों पर जोर दिया गया, जाँच, सजा, निगरानी और सुशासन। मकसद है ये समझाना कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार क्या कर रही है, नियामक संस्थाओं को कौन सी अपेक्षाएं हैं, 2027 के अगले मूल्यांकन के लिए कौन सी तैयारियां बाकी हैं। अटर्नी जनरल गाविन ग्रोवर के अनुसार यह मूल्यांकन पूरे देश से जुड़ा हुआ है और सरकार के लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है। ये मात्र फैटफ की शर्तों को पूरा करने का सवाल नहीं। चुनौतियां बढ़ रही हैं, रोज बदल रही हैं। वर्चुअल परिसंपत्तियां रोज विकसित हो रही हैं और उनके गलत प्रयोग के खिलाफ संघर्ष इतना आसान नहीं। एक जिम्मेदार देश होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम जनता, संस्थाओं और अर्थनीति को इन नए वित्तीय अपराधों से बचाएं। समय सीमा नजदीक आने के साथ ही तैयारियों और सक्रियता में तेजी आ रही है।
1: और कुछ समय पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में बढ़ते दबाव के बीच मॉरिशस में ब्याज दरों में बढ़ोतरी। बैंक ऑफ मॉरिशस की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने रिपो रेट में 0.25% की वृद्धि लाई है। समिति का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण ऐसा करना पड़ा है।
2: There was consensus within the MPC that raising the key rate by 25 basis points was best aligned with the bank's mandate of price stability and orderly and balanced economic development. The MPC wishes to emphasize that the decision to raise rates is a calibrated response intended to reinforce price stability at a time of elevated external risk while maintaining support for sustainable economic growth over the medium term. The MPC will continue to closely monitor the evolution of the Middle East conflict and its spillovers to global energy markets, supply chains, financial conditions, and domestic price dynamics. Monetary policy decisions will remain data-driven and will continue to be guided by evolving inflation dynamics, domestic economic conditions, financial market developments, and the external environment.
1: खबरों को हम जारी रखते हैं। डिजिटल लेन देन को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सभा में कल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट बिल पर बहस हुई। मंत्री अविनाश राम दोहल ने कहा कि इस संशोधन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से जुड़े कानूनी ढांचे को मजबूत करने के साथ उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल को प्रस्तुत किया। मॉरिशस में 2021 से 2025 के बीच 650 से अधिक किशोरों को नशीले पदार्थों से जुड़ी समस्याओं के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती कराना पड़ा है। राष्ट्रीय सभा में एक प्रश्न के जवाब में मंत्री अविनाश राम दोहल ने कहा कि ये बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है और इसके लिए अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में नादक माध्यमिक स्कूलों के छात्रों में सिंथेटिक ड्रग्स के सेवन पर एक विस्तृत अध्ययन करने की तैयारी कर रहा है।
3: These figures indicate

0: Concerning upward trend in recent years,
1: ये आंकड़े दिखाते हैं कि स्थिति कितनी बिगड़ गई। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल द्वारा प्रिवेलेंस ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स अमंग सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन मॉरिशस विषय पर एक अध्ययन चलाया जाएगा, स्थानीय स्तर पर खतरा, हस्तक्षेप आदि पर। मंत्रालय के पास नौजवान लड़कों के लिए लॉन्ग माउंटेन में एक रिहैबिलिटेशन केंद्र है, एक केंद्र महिला मरीजों के लिए है जिनमें बुबासा की युवतियां शामिल हैं, और एक रिहैबिलिटेशन केंद्र आने वाले हफ्तों में फ्लक में कार्यरत होगा।
0: Currently, the ministry has one residential rehabilitation center for male adolescents at Long Mountain, one for female patients, including adolescents of Bobasa, and there is one additional rehabilitation center which will become operational in the coming weeks at FLAC.
2: 114 मिलियन रुपए से जुड़ी सूद के इस मामले में आज पोंपलेमूस अदालत में एक अहम फैसला सुनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ की उस मांग को अदालत ने खारिज कर दिया जिसमें एफसीसी जांच के संभावित गवाहों के नाम जानने की अनुमति मांगी गई थी। मैजिस्ट्रेट बीमा बोयरू ने कहा कि इस तरह का आदेश देना इस अदालत के अधिकार में नहीं आता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक अनिश्चितता में रखना उचित नहीं है। इस मामले में प्रवीण जगनाथ की ओर से वकील रवि येरिगादू पेश हुए। अगर प्रकृति का संतुलन आज भी कायम है तो उसमें मधुमक्खियों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। फूलों से खेतों तक और शहद से खाद्य सुरक्षा तक, ये छोटी सी जीव कृषि और जैव विविधता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने आज रिजवी में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जहां मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। सागा ओनू की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण याचना मिश्रा के साथ।
1: विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि और पर्यावरण क्षेत्र के कई प्रतिनिधि एक साझा उद्देश्य के साथ एकत्र हुए ताकि मॉरिशनों के दैनिक जीवन में मधुमक्खियों के महत्व को बेहतर ढंग से समझाया जा सके। हम प्रकृति में ही रहते हैं और मधुमक्खियों के साथ रहना सीखना चाहिए। 10 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ। मधुमक्खियों पर कोई कीटनाशक न डालें, उनके बिना जीवन ही नहीं। अगर ये लुप्त हो गई तो 4 साल बाद हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, खाना ही नहीं मिलेगा। कुछ पौधों के धीरे धीरे गायब होने से इस क्षेत्र के पेशेवर चिंतित हैं। ये पौधे मधुमक्खियों को पराग यानी पोलन और रस प्रदान करते हैं। ऐसे पौधे बढ़ाने चाहिए और उन्हें संरक्षित करना चाहिए। निर्माण आदि के कारण मधुमक्खियों की संख्या काफी कम हो गई
3: है।
1: भूमि विकास, कृषि और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया ताकि मधुमक्खियों का अस्तित्व सुरक्षित रहे। विकास जरूरी है लेकिन प्रकृति का संरक्षण भी। हम बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं। खेती वाली कई जमीन हम गंवा चुके हैं लेकिन भूमि और कृषि की ओर वापस जाना मन से होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 75% खाद्य फसलें किसी न किसी रूप से परागण यानी पोलिनाइजेशन पर निर्भर हैं।
2: मॉरिशस में क्वाड बाइक गतिविधियां लगातार लोकप्रिय हो रही हैं और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि अब इसे बेहतर ढंग से संगठित और नियंत्रित किया जाना चाहिए। साथ ही ऑटोमोबाइल सर्किट परियोजना को भी जल्द ही आगे बढ़ाने की मांग उठ रही है। इससे जुड़ी इन अपेक्षाओं और चुनौतियों पर पेश है ये रिपोर्ट कुणाल गोजी के साथ विवरण रचनी बीकर।
4: क्वाड नए बिकते हैं या फिर कुछ सेकंड हैंड भी, न केवल बिक्री करने वालों के यहाँ बल्कि नेट पर भी। कुछ वर्षों से मॉरिशस में क्वाड की संस्कृति सी पैदा हुई है। एक्सकर्शन एजेंसियों के माध्यम से ये उपलब्ध। बिग फुट एडवेंचर के ऑपरेशंस

0: manager Christopher Lam ne kaha.
1: C'est un plaisir comme un autre, c'est un sport comme un autre.
0: ये दूसरे स्पोर्ट्स की ही तरह है, चलाने में आनंद मिलता है। यूट्यूब, इंटरनेट आदि के साथ लोग देखते हैं कि दूसरी जगह पर क्या हो रहा है और ऐसा करने की इच्छा होती है, कोशिश भी करते हैं। कुछ प्रयोगकर्ता मना ही एवं नियंत्रण के बावजूद अक्सर सड़कों पर दिखाई देते हैं। इस दिलचस्पी के चलते क्रिस्टोफर लाम का मानना है कि ऐसे में इसके प्रयोगों को व्यवस्थित करना चाहिए। उन्होंने कहा, एक संगठन कायम होते देखना चाहते हैं जिसे स्पोर्ट्स मंत्रालय और सरकार से मान्यता प्राप्त हो, साथ में स्पोर्ट्स गतिविधि की ही तरह भी इसे मान्यता प्राप्त हो।
1: Du ministère des sports ou du gouvernement et reconnaître l'activité en tant que sport.
0: मॉरिशस में मोटर राइडर संगठन तिवारा बाइकर मॉरिशस की भी यही राय है। तिवारा बाइकर मॉरिशस के अध्यक्ष प्रवीण गणपत ने कहा,
2: क्वाड
0: चलाना अच्छा लगता है, फन है। क्वाड के लिए अगर एक उचित जगह मिले तो बहुत अच्छा है, शिकार वाली जमीन से हटकर अलग जमीन, सीखने के लिए और चलाने के लिए भी। इस बीच परिवहन मंत्रालय याद दिलाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी पाया जाए तो 1,00,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है और 5 साल जेल की सजा भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो निजी इलाकों के बाहर क्वाड चलाते हों।
3: Front militant progressif qui n'est pas le Béranger qu'à Kehnahe qui se barre sur le Karkepas, puis le Verche qui tout le nommé, a dit qu'à Arthek Gunjaïch Maudjoudhe, un honne, Moody's or IMF qui a l'air report au Kahavala dit et houé Kaha qui déche qui vit est hiti, mais soudard des canets comme il rahahe, y bayan un honne à budget se jure, presse Samilen qui d'oran dia. उपभोक्ताओं के हितों और कीमतों पर बेहतर निगरानी के उद्देश्य से सरकार ने प्राइस कंट्रोल कमेटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। आसिम ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा है कि वो 2015 से इस समिति की स्थापना की मांग कर रही थी। इसी दौरान नेशनल होलसेल मार्केट को वुटन से डिसेंट्रलाइज करने की परियोजना पर भी प्रतिक्रिया दी गई। नीतुषा जीहा, याचना मिश्रा।
4: आसिम के महासचिव ने उपभोक्ताओं की बेहतर सुरक्षा के लिए कीमतों पर नियंत्रण रखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित करने के सरकारी फैसले पर प्रतिक्रिया दी। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमें इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा इस समिति के टर्म्स ऑफ रेफरेंस आम होंगे ताकि हम सुझाव दे सकें। जयंत चेलम ने वुटन स्थित नेशनल होलसेल मार्केट की विकेंद्रीकरण परियोजना पर भी अपनी बात रखी। वुटन में 15 रुपए का ककड़ा प्लेन विलियम्स की मंडी में 115 रुपए में बिक रहा है। रीजनल मार्केट दोबारा स्थापित करने की मांग मंत्री बुलेल से की जा चुकी है। आसिम ने बैंकिंग सेवाओं में अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की ताकि विशेष रूप से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों से बचा जा सके।
3: विदेश में भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सूरज जैसे आग बरसा रहा है। दिल्ली में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि उत्तर प्रदेश में तापमान लगातार दूसरे दिन 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण लू, गर्म हवाएं और तपती रातों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने दोबारा हमला किया तो संघर्ष मध्य पूर्व से बाहर भी फैल सकता है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध को बहुत जल्द खत्म करना चाहता है और ईरान समझौते के लिए तैयार दिख रहा है। कोंगो में फैलते इबोला प्रकोप ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक 514 संदिग्ध मामले सामने आ चुके, जबकि 136 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप की तेज रफ्तार और बढ़ते फैलाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। और अपने 5 देश

चूंकि दौरे के अंतिम चरण में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे हैं, जहां भारत और इटली के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। रोम में प्रधानमंत्री श्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात सिर्फ एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि इसमें दिखाई दिया कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास, मजबूत होती साझेदारी और साथ मिलकर आगे बढ़ने का संदेश। और अब आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान रात को तथा कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, वर्षा भी होगी और कुछ इलाकों में कोहरा भी छाया रहेगा। कल शाम को भी बादल घिरे रहेंगे, हवा हल्की रहेगी और दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम तापमान 24 से 26, सारे इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:33 पर होगा।

0: 6:21 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक शिव को धन्यवाद देते हैं, साथ हमें पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। बुआ द्वाजो रोड पुद्रोदो विलाज में 79 साल की 79 years old श्रीमती बेदवंती नेहल, पैदाशी नाम सियाम्बा और जिन्हें लोग बेदाम नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके पति बागरीत नेहल के मकान बुआद्वाजो रोड पुद्रोदो विलाज से उठाकर बेलमो गुडलैंड से कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो 11 AM रॉयल रोड बुबासे में लाशा पेला दौंत इलियनसन। रॉयल रोड बुबासे में 82 years old श्री पूरन दौलत जिन्हें लोग सुरेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे नंबर 23 ग्लैडस्टोन स्ट्रीट रोज हिल के रहने वाले थे। इनकी अर्थी शुक्रवार को दिन के 1 बजे शुक्रवार 22 मई को दिन के 1 बजे ला शापेल औदौंत इलियनसन रॉयल रोड बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन On Friday at 1 PM एक्स रेलवे रोड अपडागुचिया में 80 साल के 80 years old श्री धनेश्वर सामुज जिन्हें लोग दीवान नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके मकान एक्स रेलवे रोड अपडागुचिया से उठाकर सैकोस्तान सैंपिया कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो 9:30 AM एवेन्यू बुगेविलिये तमारे में 71 साल के 71 years old श्री लाल देव जगरनोत जिन्हें लोग पौतना नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे मुसलमान वीओएस कास्कावेल के रहने वाले थे। इनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे इनकी बेटी करुणा जगरनोत रंजीब के मकान अवेन्यू बुगेविलिये तमारे से उठाकर गांधी पालमा किस

0: श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमरो एट 1:30 PM। रायरुद बुबासे में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जसमती बेकारू पैदाशी नाम नरसिंह और जिन्हें लोग बालिका नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे रामनारायण रोड कुतेज के रहने वाले थे। इनकी अर्थी कल सुबह दस बजे एलियनसन रायरुद बुबासे से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमरो 10 AM। नंबर 14 बी डॉविन एवेन्यू कैटरबोन में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कमुशलाई रमन जुलू पैदाशी नाम रामसामी और जिन्हें लोग सरू जीनी नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके दामाद पीले महोदय विनेश के मकान नंबर 14 बी डॉविन एवेन्यू कैटरबोन से उठाकर सहमौते मोहोश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी फ्यूनरल टुमरो 11 AM। होल्डम एवेन्यू एल्विशा सेंपिया में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड श्री जागराजन मौदे जिन्हें लोग दुना मौदे नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी शुक्रवार 22 मई को दिन के 12:30 बजे इनके मकान होल्डम एवेन्यू एल्विशा सेंपिया से उठाकर सैकोस्ता सेंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी फ्यूनरल ऑन फ्राइडे एट 12:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: You're listening to RM2, a Radio Mastiche.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: RM2,
2: रेडियो मस्ती।
3: शाम की 6:33 हो चुके हैं एंड वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। रफ्तार वाइब्स का थर्ड आवर ऑफिशियली शुरू हो चुका है यहाँ रेडियो मस्ती पर। बाहर देखिए अंधेरा थोड़ा जल्दी ही छा गया है, लगता है कि विंटर धीरे धीरे नॉक कर रहा है, दस्तक दे रहा है। दिन छोटी हो रही है और शाम जल्दी उतर आती है और इस खूबसूरत इवनिंग मूड की शुरुआत हमने की बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। यही होता प्यार फ्रॉम द मूवी नमस्ते लंदन, एंड इस मूवी के सभी गाने बहुत ही खूबसूरत हैं। वैसे इस ऐसे मौसम में लाउड म्यूजिक नहीं, दिल को छू जाने वाली सॉफ्ट मेलोडीज ही परफेक्ट लगती है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, घर पहुंचने वाले हैं, या बस इस शाम को क्वाइटली आप ऐसे ही फील कर रहे हैं, स्टे राइट ट्यून्ड क्योंकि ये आवर होगा सूथिंग सॉन्ग्स के नाम। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी ही रिया और ये है आपका रफ्तार वाइब्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती।

जैसे जैसे रात करीब आ रही है, एनर्जी ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाती है, डे का नॉइज धीरे धीरे फेड हो रहा है और जो हमारे इमोशंस हैं ये थोड़े क्लियर फील होने लग जाते हैं। ऐसे मोमेंट्स में म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, म्यूजिक कंपेनियन बन जाता है, जी हाँ हमरा ही बन जाता है। विंटर इवनिंग्स हमें यही सिखाती है कि कभी कभी लाइफ को फास्ट नहीं फील करके जीना चाहिए। तो इस काम और कोजी मूड को एंजॉय कीजिए सॉफ्ट गानों के साथ है, जो यहाँ पर ही आपको मिलेंगे। एंड दैट टू इन योर रफ्तार वाइब्स रेडियो मस्ती पर। वी आर हियर विद द ब्यूटीफुल सूदिंग गाने। एंड अभी तो 6:51 हो रहे हैं। आई जस्ट होप दैट आप घर पर हो एंड यू आर एंजॉयिंग योर डिनर। आप अगर डिनर बना रहे हो तो आपको हम बुको आज कहते हैं, और अगर आप डिनर ले रहे हैं तो शुभ आहार। चलिए दिन भर शायद आप थक गए हैं, बट थोड़ा सा ही टाइम आप खुद के लिए और अपनों के लिए निकालिए, थोड़ी सी बातचीत हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो हैव अ गुड मोमेंट अपनों के साथ, गानों के साथ, और इस दिन को हम अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे। वैसे ये समाप्त तो अभी नहीं होगा क्योंकि मेरे बाद मनीषमा भी लेकर आएगी बहुत ही खूबसूरत गाने इन योर इवनिंग लाउंज। तो वहाँ पर भी आप म्यूज़िक का साथ दीजिए और म्यूज़िक आपका साथ ज़रूर देगा। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट गाना, इट्स अ ब्यूटीफुल वन, और हमें विश्वास है कि आपको ये गाना बहुत ही अच्छा लगेगा।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: राहत फतेह अली खान जी की आवाज में सचमुच राहत पहुंचाने वाली ये गाना और इसी के साथ हम विदा लेंगे। मेरे बाद आपको मिलेगा मनीष्मा का साथ इन योर इवनिंग लाउंज, वहां पर भी खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक यू टेक केयर, बाय बाय, हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। कीप स्माइलिंग ऑलवेज।

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Musti.
3: अजय वेलकम, स्वागत है आप सभी का, बिग धन्यवाद।

साथ रिया, जिन्होंने अमेजिंग शो का साथ निभाया आप सभी के साथ। तो 7:05 हुए हैं, आप जुड़े हैं आर्ट इंटू रेडियो मस्ती के साथ। और गिनीशा तो आज नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी हम आपका साथ निभाने आ चुके हैं 7 से लेकर 9 बजे तक। मनीषमा का साथ रहेगा जी, आप तो जानते हैं कैसा है ये जो मौसम, थोड़ा सा बेईमान और थोड़ा सा शरारती। और यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसे से मस्त गाने आपके रोमांटिक को और भी बरकरार रखने के लिए। फ़ोन नंबर तो है ही आपके पास 5491294 पर, ये है मैसेजेस का नंबर, भेज सकते हो बेशक का। और तो और 402-4935 पर ये है फ़ोन नंबर फॉर यू टू गिव मी अ कॉल। बात करना चाहेंगे, एक डेडिकेशन करना चाहेंगे, हमसे बस लाइव ही कुछ चर्चा करना चाहते हैं प्यार मोहब्बत की, और क्या। अभी तो बता दो कहाँ हो, क्या

0: उज गया है, मौसम थोड़ा सा बेईमान है और यहाँ पर हम थोड़ा सा आपसे बात भी करना चाहते हैं 502-8035। और हमारे साथ है सुनीता जी, जिनसे अभी हम बात करते हैं। हेलो सुनीता जी।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और
1: जी हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए
0: और
1: एक गीत सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है?
1: यानी कि फेवरेट हमारे लिए बहुत, यानी कि पुराने गाने ज्यादा अच्छा लगता है सुनने के लिए।
0: और ये जो जो नया जमाना आया हुआ है, जो जैसे कि हम पुराने गाने को रिमेक करके न्यू वर्जन में भी चला लेते हैं, आपको पसंद भी करते हैं आप?
1: हाँ, दिन में पसंद करती हूँ लेकिन दिन में हमें नहीं मिलती है सुनने के लिए।
0: तो शाम आपके नाम और अगला गीत कौन सा गीत आप मांगने वाले हैं?
1: मैं ब्लैकमेल का गाना मांगना चाहती हूँ लेकिन मालूम नहीं है आपके पास है या नहीं।
0: कौन सा गाना बताइएगा?
1: पल पल
0: दिल
1: के
0: पास। नो नो नो नो, ऐसे नहीं चलाऊंगी मैं, आपको थोड़ा सा गाना पड़ेगा हमारे साथ। 3-2-1 हियर वी गो, लेट्स लिसन टू यू। हम सुनते हैं आपकी आवाज। पल पल दिल
1: के पास
0: क्या
1: तुम रहती हो।
0: आगे आगे जीवन
1: आगे जीवन मीठी प्यास ये कहती हो।
0: अजी वाह, क्या मधुर आवाज है। पल पल दिल के पास आप किसके नाम करना चाहती है?
1: मैं ये गाना आप ही लोगों के लिए मांगना चाहती हूँ पहले, क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे गाने सुनाते
0: हैं।
1: हमें बहुत अच्छा लगता है, एक पास्ता यानी कि एक गीत सुनते हैं, घर में काम भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं, रेडियो सुन सुन कर, टेलीविजन देख देख कर,
0: और दोनों एक बार जा सुन लेते हैं और देख भी लेते हैं। क्या बात है, आप ना बेस्ट हो, टीवी को देख कर रेडियो को सुन लेते हो।
1: हाँ, दोनों दोनों एक साथ देखते हैं। हाँ, और ये गाना आप ही के लिए और आपके टीम के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए मांगना चाहती हूँ।
0: थैंक यू। एक बात, एक काम करती हूँ मैं, ये जो वर्जन है, जैसे कि हमने कहा है कि न्यू वर्जन भी है ऑफ पल पल दिल के पास, अगर मैं ये चला दूँ कि आप पसंद करेंगे?
1: हाँ, बहुत पसंद करूंगी।
0: हाँ, ये एक अनवाइंड वर्जन है, उन्होंने बड़े प्यार से रिमेक किया है इस गाने को। आई होप यू लाइक इट। और आप किसी खास के नाम करना भी चाहते हैं ये गाना? बच्चे हैं, पति है?
1: वहाँ नहीं, पति अभी गुजर गया, लगभग एक साल को होने वाली है। और मेरे दो तीन पोती है, काशाना, पुरवी, तेजवी, और अच्छा। दो बेटे हैं, राहुल, अखिलेश, और दो बहू हैं, उजाला और काजल।
0: इतने और सारे लोगों के साथ आप घिरे रहते हो?
1: हाँ, हम
0: सब साथ में रहते हैं क्या? सब साथ में रहते हैं?
1: सिर्फ एक बेटा गुडलैंड रहते हैं, लेकिन जो है साथ में रहते हैं कि घर में।
0: तो जो पोती और नाती होती हैं तो आपके यहाँ आते हैं खाना खाने, दादी नानी?
1: हाँ, साथ में खाते हैं।
0: अरे वाह।

0: घूमने जाते हैं। हाँ
1: यही तो एक एडवाइस आप देना चाहते हैं सारी जो फैमिलीज लोग होते हैं जो साथ में
0: हाँ
1: खाना खाते, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप?
0: हाँ ये बहुत अच्छी बात है, साथ में बैठकर सभी लोग, सब यानी के घर के परिवार है, साथ में खाते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये गिलगिटॉप है, हमेशा याद करेंगे, जब भी हम एक भोजन बनाते हैं पूरा परिवार साथ में बैठ के खाते हैं तो बरकत होते हैं घर में।
1: और शांति भी और प्यार भी बढ़ जाते हैं ना।
0: हाँ
1: थैंक यू सुनीता जी, आप ना
0: हमेशा हमेशा
1: अमेजिंग हो। यस,
0: हाँ
1: तो आप दादी हो
0: हमेशा
1: ना,
0: पे
1: दादी या फिर नानी?
0: मैं
1: दादी,
0: दादी
1: दादी।
0: हूँ, हाँ तीनों बच्चों के मैं दादी हूँ। हाँ यानी कि ये हमारा जो बचपन का प्यार है हमारे माता पिता दादी दादा से, हम लोगों ने यही सीखा है, जब भी संध्या कर लो, शाम को स्कूल जाओगे संध्या कर लोगे तो साथ में दादा दादी के साथ हम खाना खाते थे। हाँ
1: अरे वाह, क्या बात है, ये सही रिवाज
0: हाँ
1: आपने मेंटेन किया है। आप लगे रहो और जिंदगी
0: हाँ
1: में आपको खुशियां ही खुशियां मिले, और बच्चों और पर बच्चों के ये जो शादियां देखने को मिल जाए और उनके
0: हाँ
1: बच्चों के साथ खेलने का ये जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आपको ये भी तजुर्बा हो जाए जिंदगी में। थैंक यू सो
0: हाँ
1: मच
0: ये
1: फॉर
0: और ये
1: जी।
0: भी होना चाहिए, जब मैं साथ में सब कोई बैठकर खाना खाते हैं
1: हाँ,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: अमेजिंग
0: और जो
1: अमेजिंग।
0: अलग अलग अलग अलग लेकर खा जाते हैं वो मालूम है मुझे भी अच्छा नहीं लगता है
1: या यू नो,
0: कभी।
1: साथ
0: हाँ
1: में बैठकर खाना खाने का जो मजा होता है कि कब मैं जब
0: हाँ
1: मैं
0: ये
1: साथ में
0: दूसरा
1: बात
0: है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं सुनीता जी, जब हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं तो खुद उठने की जरूरत नहीं होती है। जब दादी होती है और
0: हाँ
1: माँ होती है, मम्मा चटनी पास कर लो फिर से
0: हाँ
1: सब कर लो, बैठे रह जाते हो
0: हाँ
1: यार
0: हम साथ में गाड़ी में मरा पोतिया तो इंतजार कर रहे हैं, बोला सुखले दादी सुखले पकाओ,
1: हाँ
0: हम सुखले पका रहे हैं तो साथ में बैठकर खाएंगे।
1: क्या बात है, चटनी अचार के साथ है सब कुछ, पराठे राइस। वेरी
0: हाँ
1: गुड सुनीता जी, आप हमेशा अमेजिंग इस तरह से रहो, हंसमुख रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और साथ निभाते चलो। मैं अभी के
0: हाँ जब
1: लिए
0: आप लोग साथ रहेंगे तो हमेशा हम लोग मुस्कुराते ही रहेंगे, जितने गम है जितने दुख होगा
1: वो सब
0: सब
1: भूल
0: भूल
1: जाओ यार,
0: जाएंगे।
1: सब भूल
0: हाँ
1: जाओ, जिंदगी को
0: हाँ
1: जियो,
0: भूल
1: परखो और देखो कि
0: हाँ
1: हर एक मिनट में प्यार ही बसा है, बस देखना चाहिए।
0: हाँ
1: थैंक यू सो मच सुनीता जी, बाय बाय,
0: आपको भी धन्यवाद, बाय।
1: शुभ रात्रि आपको। चल पड़ा ये
0: आपको
1: गाना
0: भी
1: आपके लिए भी सुनीता जी, और सभी के लिए भी जो इस पल को अपने दिल के पास रखना चाहते हैं। वे गो
2: Evening Lounge,
3: Evening Lounge,
2: RM2,
3: Radio Masti.

0: बस यूं ही गानों के साथ आपके दिल के पास रहना चाहते हैं हम। आ गया ये अगला गाना, प्यार आया। बस साथ निभाते चलिएगा 402-935 पर। लाइव ही आप हमसे बात कर सकते हैं एंड लोग भी आपकी बात सुनेंगे। फटाफट फोन उठाइएगा, डिनर का टाइम है, हम जानते हैं। 7:28 हुए हैं। आप जुड़ रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ विद मनीष मा।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: वैसे देखा जाए हमारे दिल के इतने करीब कोई हो जाता है तो इतना ज्यादा प्यार आ जाता है ना, कभी कभी एहसास भी नहीं होता कि इतना हम प्यार कर सकते हैं किसी को। सोने निगम और अड़काई निगम की जैसी आवाजें जब साथ में होते हैं तो प्यार ज्यादा से ज्यादा हो जाती है।
1: Evening lounge, evening lounge,
2: RM2,
1: radio masti.
0: और हां जी, हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर आपकी खिदमत में, हाजिर है हमारे साथ गिरीश जी, जो कि उनकी आवाज भी बहुत ही अमेजिंग है, तो उनसे हम लाइव बात करेंगे यहाँ पर। बहुत साल हो गए उनसे बात किए लाइव एंड डायरेक्ट। गुड इवनिंग, वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती गिरीश जी।
3: हेलो मनु, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड। दिल से मैं कह रही हूँ, मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर रही हूँ मैं आज। कैसे हो आप?
3: मैं तो ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ। अभी आप क्या कर रहे हो?
3: अभी तो मैं कुछ खा रहे हूँ, कैसे कहते हैं,
0: आपने डिनर कर लिया?
3: नहीं, वो डिनर नहीं, वो गाथो कैसे है,
0: स्वीट,
3: वो हाँ ये मिस्को
0: ये तो चकने है।
3: ये
0: इवनिंग लाउंज में, एक्चुअली इवनिंग लाउंज में जैसे रोमांटिक मैं ना हंस पड़ रही हूँ आप लोगों के साथ, अमेजिंग टाइम में बिता पा रही हूँ आप सभी से। तो आप बताइएगा, एक मैं जानती हूँ कि गिरीश, एवरीबडी नो गिरीश, यू नो गिरीश हरलोल जो परफ्यूमर है, सिंगर है। अभी अगर मैं पूछूँ कि प्यार का मतलब क्या है फॉर गिरीश, क्या आप बता पाएंगे उन्हें?
3: प्यार का मतलब वैसे देखा जाए तो मैं तुमको एक सच्ची बात बताऊं, वैसे मैं तो मेरे हिसाब से मैं जब वैसे देखे मैं सच कहता हूं आपसे कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, तो एक बात है कि अगर किसी से प्यार किया है तो सच सच बता, क्योंकि अगर झूठ बताएंगे तो वो कैसे कहेंगे कि अच्छा नहीं लगा लगेगा, और लड़की को भी अच्छा नहीं लगा।
0: अच्छा, तो अगर प्यार करते हो तो एक दूसरे को बता देनी चाहिए, यही सही बात है।
3: हाँ, यही है, और सच सच को सच सच बताना पड़ेगा कि देखिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुमसे, कि मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि बात करेंगे कुछ, तो दोनों मिलके बातचीत करेंगे।
0: क्या बात है! और गिरीश हरलोर जी, आप तो बस आपकी तो शादी भी नहीं हुई है, आई नो सो मेनी पीपल आर लिसनिंग टू यू राइट नाउ, लेकिन क्या आपको प्यार हुआ है कभी?
3: देखिए मनु जी, ये आपने एक सही प्रश्न पूछा कि मैं वैसे शादी तो करना चाहता हूँ, मिल नहीं पा रहे हैं अभी।
0: कोई तो है जो आपको सुन रहे हैं उन्हें?
3: हाँ, शायद तुम्हारे प्रोग्राम में शायद,
0: यस,
3: क्योंकि आपने एक बहुत ही प्रश्न पूछा है मेरे से आज। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये प्रश्न उठाया है मेरे लिए, क्योंकि जब जैसे क्रियोली में कहते हैं ना,
0: तो आपको इंसान में सच्चाई पसंद है, यही प्यार का मतलब है,
3: यही प्यार का मतलब।
0: क्या बात है गिरीश जी, मैं जानती हूँ आप तो आर्टिस्ट हो, और कोई गाना है मैं जानती हूँ वो गाना जो मेरे दिल में छप गया आपकी आवाज के साथ, वो तड़प तड़प के,
3: यही है।
0: हाँ जी, एक छोटा सा टुकड़ा आप गा सकते हैं उन्हें? छोटा सा,
3: छोटा,
0: हाँ, तड़प तड़प के इस दिल, हाँ थोड़ा सा

0: में
1: वाह
0: रंगी
1: वाह वाह वाह, आपने सच में किसी ना किसी का दिल तो जीत लिया होगा। और
0: हाँ
1: ये
0: तो यही है
1: गाना
0: ना।
1: क्या आप किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं गिरीश जी?
0: वैसे मैं पहले तो मैं आप ही के नाम में जुड़ना चाहता हूँ ये गीत,
1: थैंक यू।
0: और सभी जो जो सुन रहे हैं अभी तो ये शायद क्या पता मेरे को
1: मिल
0: आपके
1: जाए,
0: प्रोग्राम में
1: मिल
0: मिल जाए किसी को शायद,
1: जाएगा।
0: क्योंकि
1: अरे ये
0: जैसे
1: डेटिंग
0: मैं
1: लाउंज
0: कहता
1: हो
0: हूँ ना,
1: जाएगा। आई डोंट नो, सो मेनी
0: जैसे
1: पीपल
0: कि
1: विल
0: मैं
1: कॉल।
0: एक बार फिर से मैं जोड़ना चाहूँ तो कुछ जल्दी जल्दी,
1: जी,
0: जैसे कि कहता है ना कि मोची बाब
1: हाँ,
0: जकूसो,
1: यस
0: झूठ नहीं
1: यस
0: बताना चाहता
1: यस यस
0: चाहेंगे
1: या
0: कुछ सच्चे सच्चे में, कैसे क्या कहें कैसे कहें, अगर आप किसी से प्यार किया तो सच बता।
1: आप मुझसे बात कर रहे हो?
0: नहीं, वैसे मैं जनरली मैं
1: अच्छा, मैं कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बोल सकते हो?
0: नहीं, वैसे मैंने किया, मैंने कहा कि
1: हाँ,
0: जब किसी से प्यार किया है तो
1: यस,
0: सच सच बता उनको,
1: हाँ,
0: तो यही मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ
1: हाँ अच्छा, ओके ओके, मुझे लगा कि
0: इस।
1: आपने मुझसे सवाल किया है। मैं डर गई, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच
0: डरने की क्या बात है यार,
1: गिरीश जी। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या सच भी बोलूंगी तो क्या हो जाएगा, ये रेडियो है ना, मैं ज्यादा सच नहीं बोल सकती।
0: नहीं, अगर
1: लेकिन
0: मैं
1: उस
0: कुछ
1: इंसान
0: जोड़ना
1: से
0: तो
1: मैं
0: मैं कैसे
1: हमेशा
0: नहीं बता।
1: सच कहती हूँ, डोंट यू वरी। ये आपने सही कहा
0: ओके
1: है, क्योंकि जब भी प्यार, प्यार का मतलब ही दोस्ती है और दोस्ती का मतलब सच्चाई है। अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं तो उनके साथ है ना जैसे मिरर वाली फीलिंग हो जाती है, कुछ भी छुप नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच,
0: यही है।
1: आपसे हमारी दोस्ती यूं ही बनी रहेगी। थैंक यू सो मच गिरीश जी,
0: ओके
1: हैव ए
0: थैंक यू,
1: वंडरफुल टाइम, बाय बाय।
0: ओके बाय
1: यू आर
0: बाय।
1: लिसनिंग टू अ रेडियो मस्ती। दिस वन आई जस्ट होप कि आप इसे पसंद करेंगे, यहाँ पर हम चला रहे हैं ये गाना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही।

0: हाय, के की आवाज और गिरीश हरलोर साथ मेरी बातें तो क्या होता। वैसे यहाँ पर हमारे साथ है एक और हमारा जो लिसनर है जो जुर्श के हमारे साथ। हेलो, एम आई टॉकिंग? हेलो हेलो, टेस्ट टेस्ट। हेलो जी।
1: हेलो,
0: यस, मैं किससे बात कर रही हूँ अभी?
1: हेलो
0: जी, आप सुन रहे हैं? आप रेडियो को ना सुनो, रेडियो को
1: हाँ,
0: थोड़ा सा लोअर कर लो। जी राजेश जी, त्रियोली से। वैसे पहले ये तो बताइए, मौसम कैसा है वहाँ पे?
1: मौसम तो
0: हल्की
1: कभी
0: हल्की,
1: ठंडी कभी गर्मी, कभी ठंडी कभी गर्मी,
0: आ ही जाएगी ना सर्दी।
1: देखिए यहाँ पर आप मनीषमा है ना?
0: जी जी जी मैं मनीषमा हूँ।
1: मनीषमा जी,
0: हाँ जी,
1: मैं निशा से बात किया, दिव्या से बात किया, अब मनीषा गया।
0: हाँ जी,
1: ओह माय गॉड, लगता है वहाँ सभी हंसने

0: ट्रिशा है, सभी है वहाँ।
1: यस यस,
0: बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने को।
1: अरे थैंक यू थैंक यू। वैसे आपने एक बात की थी अबाउट गिरीश जी, आप कह रहे थे आप उनकी आवाज को बहुत ही पसंद करते हैं।
0: गिंशा को?
1: नहीं नहीं नहीं, गिरीश गिरीश गिरीश वाज सिंगिंग तरप तरप। हाँ जी,
0: वो उसके आवाज में वो पावर है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ।

0: वो मानते नहीं उसको प्यार हुआ है, लेकिन प्यार हुआ जरूर होगा।
1: प्यार तो होता ही भाई।
0: वैसे आपको प्यार हुआ है? हाँ जी हाँ जी, एक प्यार वाला सॉन्ग और एक प्यार वाला मैसेज दोनों सुन लेते हैं। जी मांगे मांगे। कौन सा?
1: मोहब्बत बड़े काम की चीज है।
0: आ, वो वाला गाना। ओके जी, हम चलाने की कोशिश करेंगे, अभी ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो चलाएंगे।
1: हाँ जी, वो तो मिलेगा, क्योंकि हर बार मैं तो प्यार वाला गीत मांगता हूँ।
0: हाँ ओके ओके, और ये किसके नाम करना चाहते हैं?
1: वो जो अभी रो रहा था चड़प चड़प के, जिसके उसी के लिए,
0: गिरीश के लिए। अच्छा फिर से टाइटल बताइएगा, फिर से टाइटल बताइए, कौन सा गाना है?
1: त्रिशूल का फिल्म है, गाना है मोहब्बत बड़े काम की चीज है,
0: काम की चीज है,
1: छोड़ देना चाहिए।
0: हाँ तड़पना छोड़ देना चाहिए, बस मोहब्बत कर ली।
1: बड़े काम की चीज है। तू इसका रो सकती है भाई, उसे तो रोने का मना कर दिया रोने को।
0: यस यस यस यस यस। वैसे मैं राजेश जी, नो आपका नाम राजेश जी है ना?
1: हाँ,
0: हाँ, तो एक सवाल करूंगी, आपको कभी प्यार हुआ है?
1: बहुत प्यार तो मैं, मेरा रोम रोम में प्यार है। मेरा नाम राजेश प्रेमहंस है।
0: नाम में ही प्यार है।
1: प्यार ही प्यार, मैं तो चाहता हूँ सभी लोग से प्यार करो।
0: हाँ जी,
1: प्यार एक बहुत बड़ा पूजा है, पवित्र चीज है।
0: यस यस, वैसे कहते हैं कि जिस दिल में प्यार कसा होता है, यू नो, जिसके दिल में प्यार बसा होता है, उस दिल में भगवान की मूरत है।
1: आप,
0: क्या बात है, क्या बात है। और ये गिरीश जी के अलावा किसी और के नाम भी करना चाहते हैं प्यार के नाम?
1: प्यार के नाम तो वही जो रो रहा था, उसके लिए मैं बोल सकती, मेरे तो सब चाहने वाले प्यार ही करते हैं।
0: होई होई होई होई।
1: जो गिरीश रो रहा था,
0: हाँ,
1: उसके लिए उसके आंखें खोल दो, मोहब्बत बड़े काम की चीज है। तो प्लीज उसे उसके लिए ये गीत डाल देना।
0: थैंक यू। ओके,
1: नेक्स्ट टाइम उसे बोलना कि मत रोना,
0: मत रोना, प्यार करना।
1: प्यार करना और प्यार
0: Yes, yes. I will surely tell him. मैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो सुन गए। Like, I know he's listening to you.
1: जी, बहुत धन्यवाद, आपकी आवाज सुना मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: अरे मुझे भी, मुझे भी। आप फोन करते रहिएगा और साथ निभाते रहिएगा। बाय बाय, गुड इवनिंग।
1: सब भी टीम के लिए, ओके?
0: जी थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।
2: Evening Lounge. Evening Lounge.
3: RM2.
2: Radio Musti.

0: अरे वाह, अमेजिंग सॉन्ग लता मंगेशकर किशोर कुमार के आवाज में और किशोर कुमार यशुदास के आवाज में, एंड दिस वन स्पेशली फॉर गिरीश जी एंड एवरीबॉडी ट्यूनिंग टू आरएमटी रेडियो मस्ती में। दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ फॉर गिरीश जी, क्योंकि आप तो चार चांद लगा दिया हमारे शो में।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: आरएमटी
1: रेडियो मस्ती।
0: वैसे आपकी आवाज़ की इतनी सारी तारीफ आ रही है, बहुत अच्छी आवाज़ है गिरीश जी की, और ये गाना चल पड़ा स्पेशली फॉर ऑल दोस्ट, जो कि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं फॉर द सॉन्ग फॉर प्यार ज़्यादा और ज़्यादा आया। इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू इंडीड। बहुत अरसे बाद हम चला रहे हैं ये गाना स्पेशली फॉर समारा, स्पेशली फॉर रेनुका जो लंदन से साथ निभा रही है, वंडरफुल शो, स्पेशली द वन प्यारा आया, हैवंट हर्ड इन अ लॉन्ग टाइम, गुड इवनिंग टू यू, हैव अ वंडरफुल टाइम। समारा जी कैसे हो आप तो एंजॉय कर रहे हैं, और ये गाना दो नैना एक कहानी, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये रिप्रीज वर्शन है इन द वॉइस ऑफ पामेला, सो आप साथ में गा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव सेफ।

वैसे आप लोगों ने सच गाया है, वैसे पुराने गानों में उसकी जादू होती है ना, कमाल की होती है। नेक्स्ट सॉन्ग कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में धीमे धीमे गाऊं।

taken from the movie Zubaida for you ladies and gentlemen. थोड़ी देर में नेक्स्ट आवर में हम प्रवेश करेंगे. नंबर तो है ही आपके पास 402-935 पर फोन कीजिएगा जरूर.

0: 8:04 हुए हैं, आप जुड़े हैं आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। वेलकम द सेकंड आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज।
1: Evening lounge.
2: RM2
1: Radio Masti.
0: वैसे हमारा दिल से दिल का नाता होता है RM2 Radio Masti के साथ और उनके सारे चाहने वालों के साथ। यहाँ पर धर्मा जी से हम बात करते हैं, पिचित हाफे से हमेशा साथ निभाती है, आज उनसे बात ही कर लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग,
0: कैसे हो आप जी? नमस्ते, वेलकम।
3: आप कौन है?
0: मैं कौन हूँ? मैं अपने पापा की बेटी हूँ और मम्मी की बेटी भी हूँ और मैं मैं आपकी साथी हूँ और मेरा नाम मनीषमा है।
3: हाँ मनीषमा,
0: ये आप जानते हो उसको?
3: जी जी,
0: हाँ वही हूँ मैं।
3: गिन्नी नहीं आई?
0: गिन्नी नहीं आई, वो आपके दिल में है। ये मैं जानती हूँ। अच्छा जी, धर्मा जी मैं हमेशा सुनती हूँ, आप हमेशा गिनी को फोन करती हो, आप हमेशा गिनी से बात करती हो।
3: जी जी।
0: तो मैं जानती हूँ, वो अभी सुन रही है और कह रही है कि मनीषमा अरे उनका ख्याल रखिएगा। यस, आप भी, आप बताइए।
3: आप बोलती है
0: कहाँ?
3: दिन के,
0: हाँ, चार बजे दिन के नहीं, शाम के शो में।
3: शाम के,
0: हाँ। अच्छा आप बताइए, वहाँ पे मौसम ठंड?
3: मौसम ठीक है,
0: बारिश तो नहीं हो रही है?
3: नहीं नहीं,
0: क्योंकि यहाँ पर धर्मा जी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है हर जगह।
3: हाँ, ना सभी

0: के रहल पानी
1: अभी अच्छा बा
0: हाँ।
1: अच्छा जी
0: एगो गीत मांगत है बहू के उकर जन्मदिन लेंजी के रहल तो मुझे लाइन नहीं मिला
1: लेंदी के बुध के फोन करत हवन सर आले आले बताइए बताइए कौन सा गाना आप मांगे
0: नंबर पिंकी जी बुडन कर दुगो बच्चा बाय गो बेटी बेटा कर पति बा रोशन
1: यानी कि आपका बेटा
0: अभी
1: हमारी जो बॉस होंगे ना वो लोग कहेंगे कि मैं भोजपुरी बतियावता मेरी नानी मुझको सिखाया है मेरी नानी ने मेरी आंटीज मेरे से हिंदी और एक्चुअली भोजपुरी में बात करते हैं ज्यादातर मैं समझ लेती हूँ लेकिन बात उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाती लेकिन जो कुछ मैं कर रही हूँ ना मैं जुगाड़ कर रही हूँ अभी वो लोग मुझको कड़क करेंगे कल मैं वो लोग कहेंगे कि न ऐसे नहीं बतियाई जाला ऐसन बतियावल चाला
0: तो धर्म की देर है नहीं लगती है
1: धर्म घर चले गए अभी शाम हो गई ना तब काम भी खत्म हो गया उसको भी अपने परिवार के साथ टाइम बिताना चाहिए जी तो मैं उनको मैसेज भेज
0: नहीं देवेला
1: नहीं नहीं नहीं
0: भोजपुरी के देवता
1: हर हाँ भोजपुरी के नाम या मैं उनको बता दूंगी अभी वो सुन ही रहे होंगे शायद आपने खाना खा लिया जी
0: नहीं नहीं टेबल पर रखा है
1: अभी नहीं खाना है
0: ना
1: अकेले अकेले खा रही हो
0: हाँ तो अकेले ही रही रहा
1: हाँ तो गरम गरम खा लिया
0: हाँ गर्म में बाह ये पकेली है सुसु भून ली
1: सुसु
0: कच्चू भून ली
1: अकेले अकेले
0: बनान पूरी पकाई जाता ली तो आयु नहीं पकेली तेल तेल
1: नहीं नहीं पूरी नहीं तो कौन सी खा
0: वो पकेली
1: होची
0: हाँ,
1: अच्छा वेरी गुड ये अच्छी बात है लेकिन आप कहाँ अकेली हो मैं तो हूँ यहाँ पर हमेशा गिनी रहती है फिर कोई ना कोई रहता ही है आपका साथ
0: मेरे साथ रहती है
1: अच्छा
0: वो तो बीमार रहती चल नहीं पाती
1: लेकिन बोल तो पाती है ना हाँ साथ तो बस बोलने से ही होता है कभी कभी अच्छे अच्छे बोल अच्छे अच्छे गीत और एक वो प्यार वाला गीत है जो आप पसंद करती हो
0: एक गीत सैयारा के गो
1: क्या रे दादी सैयारा मुझे लगा तो आप तो पुराने गाने
0: सुनते बाऊ में
1: जोली जोली सोते बा ना इमे हां तो कौन से हमारे लकी बा सैयारा टाइटल ट्रैक मैं शिल्पा एक्चुअली श्रेया घोषाल की जो वर्जन है आपको पसंद है श्रेया घोषाल जब सैया गाती है मैं
0: चला दूं
1: आले ओके थैंक यू जी धनवाद जी बाय बाय
2: इवनिंग लाउंज
3: RM2
2: रेडियो मस्ती

वैसे यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच. वैसे सीता फ्रॉम काउंसिबिलिटी दैट की द नेक्स्ट ट्रैक तेरी चुनरिया दिल ले गई टू लीना हु सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे फ्रॉम अब बताती हूँ शिवेश की तरफ से मैसेज आया है, सयेश की तरफ से और शिवेश सनीश एंड सुजीत एंड एवरीबडी ट्यूनिंग टू आई एम टू रेडियो मस्ती उनके नाम भी करना चाहते हैं. अगला गाना है हैप्पी बर्थडे, यहाँ पर बेस्ट प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिल के सॉन्ग्स. वैसे अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग कमिंग अप राइट अवे राइट नाउ फॉर यू इज शायद ही तो प्यार है. हियर वी गो. और यहाँ पर दीपा मंगर सुंदर जनुबल फ्रांस से साथ निभाती है आई लिसन टू प्रोग्राम एवरी डे. प्लीज़ गुड म्यूजिक ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. आई वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर माय हस्बैंड सूरज सुंदर एंड माय बेबी सॉन कृष्णा सुंदर. तुझे सूरज कहूँ या चंदा मेरा नाम करेगा रोशन. गॉड ब्लेस.

0: से टेकन फ्रॉम द मूवी हम हेरा ही प्यार के।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।
0: 8:48 हुए हैं, आप जुड़े हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ। क्या है कि यहाँ पर इस इवनिंग लाउंज में प्यार भरे गाने चल रहे हैं आपके लिए, आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं मनीषमा। बस 10-12 मिनट बाकी हमारा और आपके साथ का, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। साथ ही यूं ही निभाते चलिएगा, यूं ही गानों का लुफ्त उठाते चलिएगा। सोनू निगम के साथ भी आप गा सकते हैं।

सोनू निगम की आवाज के साथ यूं ही बस जाने का समय हो चला है लेडीज एंड जेंटलमैन। हाय राम, ये तूने क्या कर डाला। अभिजीत की आवाज में, पमिला जैन की आवाज में आपको विश करना चाहते हैं वंडरफुल ब्यूटीफुल नाइट अहेड। प्लीज कंटिन्यूस हियर म्यूजिक ऑलवेज 24 आवर्स अ डे। वैसे इब्राहिम ने, हमने उनको एक्चुअली उनसे बात की है, उन्होंने बोला कि ए गुल बदन वाला सॉन्ग चला दीजिएगा, ऑफ कोर्स मोहम्मद रफी की आवाज में, प्रोफेसर मूवी से आएगा इस गाने के बाद।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
4: अ वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का। जितने भी लिसनर्स हमारे साथ दे रहे हैं, चाहे रेडियो के जरिए या इंटरनेट के जरिए, सभी को हेलो म्यूजिक। अरे साहब, आपका हम सफ़र बनकर चलने के लिए बिल्कुल तैयार इस लंबे सफ़र में। और जहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल होता जा रहा है, वहीं पर अब दिन छोटे

होने लगेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद थोड़ा सा रेस्ट और म्यूजिक ऐसा जो आपको दे फीलिंग जिसको कहते हैं बेस्ट। तैयार है 9 से 12 3 घंटे का सफर शुरू, साथ जुड़िए।

RM2. Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: भाई जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि खुशियाँ चीज़ों में नहीं नज़रिए में होती हैं। जो संतुष्ट है, सैटिस्फाइड है, अरे वो ही तो सबसे अमीर है।

0: Radio Mesty
1: in the mix.
0: Radio Mesty feels a Mesty
1: in the mix.

0: RM2 Radio Musty. Pop the lights, go back, boom. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a musty.
2: इंसान कुछ नया करने के लिए निकलता है तो हो सकता है कि शुरू में कोई गलती हो जाए, लेकिन उसे डरे मत, बस उसे अपना टीचर बना लीजिए। हर गलती एक नया सबक देती है जो आपको आगे ही तो बढ़ाती है, क्योंकि बिना गलती के कोई भी महान नहीं बनता। इसलिए जिंदगी के सबक लेते रहो और आगे बढ़ते रहो।

0: क्या खूब चा चा चा ओ ग्रेट
1: डू डू
2: चा चा चा
0: किड़तकी ताम किड़तकी तई ताम की ताम ताम की ताम ताम की ताम ओह गॉड मिस्टर नायडू दिस इज नॉट द भरतनाट्यम दिस इज द चा

क्या खूब चा चा चा ओ ग्रेट चा चा चा यू डूइंग फाइन हे कम ऑन ओवर हियर लेट्स डांस एवरीबॉडी टुगेदर नाउ वहां क्या है ऑल द एक्शंस हियर मैन नजर हमारी तरफ

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: काम रहना, क्वाइट रहना, धैर्य रखना, हाँ आसान तो नहीं है, वक्त भी लगता है, लेकिन जल्दबाजी में सोचिए, कोई भी फैसला लेते हैं उसमें अक्सर गलती होती है। धीरे चलिए पर सही चलिए, मंजिल जरूर मिलेगी।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: कहते हैं कि सोच को ऊंचा रखिए, क्योंकि सोच ही आपकी पहचान बनती है। छोटी सोच आपको ज्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाती, और वहीं पर बड़ी सोच आपको महान बनाती है। इसलिए बड़ा सोचिए और बड़ा

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: चलते

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: हर नया दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल को छोड़ दीजिए, उससे सबक जरूर लीजिए, लेकिन आज में जीना सीख लीजिए और भविष्य को सवारी, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता, बस आगे बढ़ता जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी कर ले तैयारी की, वक्त के साथ साथ ही चलना है।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: लेट नाइट ग्रूज़ RM2 पर, और आप और हम मिल पाते हैं कुछ बातों के साथ साथ ही, गाने जुड़ जाते हैं, बस यही तो सच्चाई है। और सच्चाई तो ये भी है कि अपने सपनों को सच करना है तो मेहनत तो करनी होगी। कोई भी सफलता यूं ही नहीं मिलती, उसके पीछे पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत करता है वही चमकता है।

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: म्यूजिक हमेशा आपके साथ है, इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझिए। वैसे अंदर भी वो ताकत होती है जो खुद का साथ देती है, वो पॉजिटिव सोच, वो एक ऐसी अप्रोच जो आपके मोटिवेशन ही देती है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप में वो आत्मविश्वास है, कुछ करने की प्यास है, तो खुद ही आप अपना सहारा बन सकते हैं। इसलिए कभी अपने आप को अकेला ना समझें।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: कहते हैं कि डर के आगे ही जीत है, इसलिए डर को हराइए। जो डर गया वो रुक गया, और जो लड़ गया वो जीत गया। हिम्मत दिखाइए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से ही धीरे धीरे सही लेकिन मंजिल के करीब और पास जरूर पहुंचेंगे।

0: vagina.
1: It's all day long. Bollywood hits music.
2: Check this out.
1: Radio Musty. Radio Musty. Feel the musty.
3: Nimura, Nimura, Nimura.
4: Check this out.
1: Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
5: जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। शॉर्टकट से सफलता मिल सकती है पर टिकती नहीं। सही रास्ता अपनाएंगे तो सच्चे मन से अपनी मंजिल को पाएंगे।

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: हिट म्यूजिक ओनली
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: हर इंसान में कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। खुद को समझिए और अपनी ताकत को अपनाइए, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं तभी दुनिया आपको जानती है। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, वीकनेस पर कंट्रोल पाइए।

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: भाई कहते हैं कि खुश रहने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, बस जीने का तरीका बदल लीजिए। हर दिन खास लगने लगेगा। मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। जिंदगी खूबसूरत है।

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Welcome to Radio Musty.
1: Check this out.
0: The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musty feels a musty.
3: भाई किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए. हर कोई अपनी जगह खास है. सम्मान दीजिए, सम्मान मिलेगा. क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता.

हम हमेशा सुनते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, सही वक्त पे लगाइए, फालतू चीजों में समय बर्बाद मत कीजिए, जो जरूरी है उस पर ध्यान दीजिए, सफलता खुद आएगी, क्योंकि फोकस ही सफलता की चाबी है।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
5: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
6: चलिए जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन बस अंत में यही याद रखिए कि जिंदगी एक ही है, इसे खोलकर जिए। डर के पीछे मत भागिए, सपनों के पीछे भागिए, क्योंकि जो जीता है दिल से वही असली विजेता है। तो चलिए जाने का वक्त हो रहा है, और ऐसे ही म्यूजिक के रहिए करीब, बहुत ही पास। मैं विकास आपसे मिलने के लिए एक बार फिर से आने वाला हूँ कल सुबह। एक बार फिर से मिलेंगे कुछ ऐसे ही गानों के साथ। ध्यान रखिए, नमस्कार।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hits, music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: हाय हाय,
1: एक बात बताऊं दोस्त?
2: बता बता, जल्दी बता।
1: एक बार वो मुझे मिलने आई।
2: अच्छा?
1: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
0: फिर क्या हुआ?
1: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: अरे भाई एक दिन उसका टेलीफोन आया। हाँ, कहने लगी हेलो
1: हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग।
1: हाँ
0: फिर क्या बोली?
1: बोली मेरे घर में पार्टी है आओ।
0: जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवा कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?

0: RM2 Radio Masti. Feel the Masti.
1: पास रहते

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty.